हम पर बातें करते हैं आपके साथ में लंच बॉक्स में, खासकर आपके वीकेंड के लिए, क्योंकि आप मिड वीक काफ़ी बिजी होते हो, एग्जॉस्टेड होते हो और साथ में काफ़ी स्ट्रेसफुल वीक रहता है। इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वीकेंड पर आप कुछ ना कुछ प्लान बनाएं ताकि आप बाहर निकलकर घूम सके। खासकर इट डजन हैव टू बी टू एक्सपेंसिव एंड टू फार, क्योंकि आप विद इन एन आवर रेंज आप न्यूजीलैंड में किसी भी जगह पर आप ड्राइव करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रिस्टीन ब्यूटी है, जो सीनिक लैंडस्केप से, ये आपको थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही दूर पर मिल जाएगी एक नया कुछ देखने को। तो ये सभी कुछ आपके पास में मौका है ताकि आप अपने आप को रिलैक्स कर सके, साथ में रिजुविनेट कर सके एंड रीसेट कर सके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालें ताकि आप एक्सप्लोर कर सके कि आपके आसपास कौन कौन सी लैंडस्केप्स है जो आपको कुछ ना कुछ नया नेचर के साथ में ऑफर करेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के लिए भी कुछ टाइम समय निकालें।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हाँ.
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना.
2: और कानों में जस...

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर।
1: Hey नेहा, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
0: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz. Swag.

0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
1: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
1: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
2: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
3: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin binning. And you need to know about it.
4: Join the Tribe!
3: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
4: join the Tribe!
5: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
6: Lunchbox with Ketan.
7: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse bade ladka nahi milega tujhe.
6: Hum. Office shout out.
8: हम पर लंच बॉक्स में ऑफिस शाउट आउट में एक प्यारा सा मैसेज आया है केली की ओर से। केली लिखती है, आई ऑलवेज लिसन टू हम इन माय सलून, जबकि एबल ब्यूटी से आपने मैसेज किया है, थैंक यू सो मच इसके लिए, हमारे साथ हम के साथ में जुड़ने के लिए। सो अगला जो तराना है इसमें आपको याद करते हैं, आपके सभी स्टाफ को याद करते हैं, कीप हमिंग।
5: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गेमलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilyservices.nz पर विजिट करें। ये सूचना एशियन फैमिली सर्विसेज की ओर से है।

0: हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि और ये है लंच बॉक्स का कारवा। बस थोड़ी देर में आपके साथ में चटनी शॉट्स में शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक्स, बस इसका भी इंतजार करिएगा।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings.
9: Bunnings Warehouse.
8: Lowest prices are just the beginning.
10: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like New Zealand-grown loose pre-ripened avocados, a fresh deal at just 99 cents each. And Huggies Jumbo Nappies 64 to 108 pack, just $26.89 per pack. T's and C's apply.
11: In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say cero. In New Zealand, zero alcohol Corona cero is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona Cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.
12: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi or Shiv Prasad, Kelston.
13: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
14: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
15: अब हमारा क्या होगा?
16: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
17: तो क्या करें?
18: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: Lunchbox with Ketan.
19: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
4: हम चटनी शॉट्स।
0: आज आपके साथ लंच बॉक्स में चटनी शॉट्स में शेयर करने वाले हैं टूरिज्म को लेकर कुछ बातें, जहां पर ये जो लेटेस्ट अपडेट है ये आई है बी हाइव की ओर से। और लेटेस्ट अपडेट्स में जो टूरिज्म एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए, यहां पर जो स्टेट्स रिलीज किए गए हैं दिखाते हैं कि कुछ 201,000 इंटरनेशनल विजिटर्स अराइव्ड इन न्यूजीलैंड जून 2026 में, जी हाँ, जून 2026 में 201,000 इंटरनेशनल विजिटर्स अराइव हुए। ये नंबर्स कुछ अगर जो आप कंपेयर करेंगे 2025 के साथ में, तो इट्स अप बाय 8.1%। और ये डाटा शो करती है कि कैसे अभी तक जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये स्लोली रिकवर कर रही है कोविड के बाद में, और बस थोड़े ही दिन में इनका फोरकास्ट है कि इट विल बी बैक टू नॉर्मल लेवल्स। और इसके साथ में ये भी बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया रिमेन्स द बिगेस्ट मार्केट, जबकि ऑस्ट्रेलिया से कुछ 108,000 लोग आते हैं और आए हैं जून में यहाँ पर आकर, जो एक ब्रेक है ये लिया है। सो इंटरेस्टिंग नंबर्स जबकि टूरिज्म को लेकर बातें हो रही है।
9: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: The beat of Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: हम पर लंच बॉक्स में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं थ्रोबैक विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 0800 रचना.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज वेदर रिपोर्ट में सनसेट 5:51 PM, साथ में जो टेम्परेचर्स ओवरनाइट रहेंगे 4 डिग्रीज तक हो सकती है, तो काफ़ी ठंड पड़ने वाली है, इसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहेगा। फाइन वेदर जनरली, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि और लंच बॉक्स में ये है लंच के मंच पे और ऐसे में इस आवा पर भी आपका खास स्वागत करता हूँ जबकि इस जस्ट आफ्टर वन तीन तक हमारा और आपका साथ चलता रहेगा। इस आवा की शुरुआत करते हैं कुछ कम्युनिटी न्यूज़ के साथ में जबकि ओकलैंड भक्ति सत्संग आपके लिए लेकर आ रहे हैं ग्रैंड थ्री कोना कीर्तन नाइट जहाँ पर अच्युदन नायर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से साथ में नितिन गाउंडर ओकलैंड के ही कलाकार और इसके अलावा लटोका फिजी से अश्विन कुमार अप्पा परफॉर्म करने वाले हैं फ्राइडे 25 अगस्त यानी इसी शुक्रवार को एट वैदिक सेंटर पापाटोए जहां पर टिकट है $20 और साथ में स्पॉन्सरशिप और इंक्वायरीज के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0210667236 पर या फिर 0215588884 पर। इसके साथ में आपको बता दें न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन इनका जो फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट है ये 22nd और 23rd अगस्त को रहेगा एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल और रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर या फिर NZCA के प्रेसिडेंट पंकज को 0210908506 पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें सिंडी एंड रुजबे ने खुल के बातें की हैं अपने अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में पंकज के साथ में जिन्होंने गेम के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और इसके साथ में काफ़ी रूल्स को भी क्लेरिफाई किया है। तो अगर जो आपने अभी तक कैरम बोर्ड को नहीं खेला इसके बारे में जानना चाहते हैं तो CB लिखकर 5599 पर

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा

0: हम लंच बॉक्स में मैं हूं आपका साथी अभी और थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे रेंट लाइन, जहां पर एक और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे पास में जिसके बारे में आप खुलकर डिस्कस कर सकते हैं। और टॉपिक क्या है, ये है शेयरिंग ऑफ कॉमन स्पेस वाल बोर्डिंग रूम्स, यानी कि किसी घर में आप किसी रूम को बोर्ड करते हो, जब आप ऐसा करते हो तो क्या मुश्किलें आपको आती है इन शेयरिंग कॉमन स्पेस। और इसके बारे में आप लिख सकते हैं 5599 पर, या फिर आपको लगता है कि आप बिल्कुल हैप्पी है या फिर कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, तो 5599 पर आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो याद रहे अभी से ही आप हमारे पास में मैसेज करें, क्योंकि अगली बार जब हम उन्हें आएंगे तो आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे। जी हाँ, क्या प्रॉब्लम्स आपको आती है इन कॉमन स्पेस जब आप रूम्स को बोर्ड करते हो, इसी के बारे में आपको बात करना है। 5599 पर मैसेज करें।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: NZ. Offer ends August 31st.
1: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ओकलैंड।
2: It's McHappy season. Get your McHappy cookies from Macca's. Just $3.50. All proceeds go towards keeping families together at Ronald McDonald House Charities. T's and C's apply.
3: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grohe Basin Mixers 149. American Standard Toilet Suite 349. Luxury Clashish Wall Vanities 399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 p.m. Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jays Fresh and Valley Fresh, Papatoi or Shiv Prasad, Kelston.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
6: अच्छा
5: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: लंच बॉक्स विद केतन।
10: मुझे पसंद है लड़का।
9: हम लंच टाइम रेंट लाइन।
11: हम पर अब समय हुआ, मैं हूँ अभी आपके साथ में और लेकर आऊँ लंच टाइम रेंट लाइन, जहाँ पर टॉपिक हमने आपको दिया था कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इन शेयरिंग अ कॉमन स्पेस वाइल बोर्डिंग रूम्स। तो हमारे पास में अमन ने टेक्स्ट किया है। अमन लिखते हैं और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आई डू बोर्ड अ रूम एंड वी हैव टू शेयर अ कॉमन स्पेस। येस, देयर आर समटाइम्स प्रॉब्लम्स सच एज शेयरिंग ऑफ किचन स्टोव। अदरवाइज इफ़ यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ वेल एंड कोऑर्डिनेट, देन इट कैन a good experience too. Thank you so much Aman, आपके thoughts के लिए आपने share किया हमारे साथ में। इसके अलावा हमारे पास में प्रीति ने भी message किया है। प्रीति लिखती है, and I will read it out for you. प्रीति writes, I too do have to share a boarding room, but the problem occurs when there is parties happening late till night, loud music in common space which disturbs my sleep. I have to start work early in the morning and I have to face a few problems in relation to this. तो हाँ, ये भी एक सिचुएशन है कि जबकि अलग अलग लोग रूम में रहते हैं और कहीं ना कहीं कॉमन स्पेस में आपकी प्राइवेसी को या फिर आपको जब रेस्ट करने की ज़रूरत है तो इसका ये रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हो, आप अगर जो अरेंजमेंट से खुश नहीं है तो प्रोबेबली यू कैन फाइंड अनदर प्लेस जहाँ पर आप और आपके जैसे और लोग रहें जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और आपके स्पेस को भी रिस्पेक्ट किया जाए।
9: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर लंच बॉक्स में अब समय हुआ आपको बताएं हम बोर्डिंग कॉल के बारे में विच इज नाउ ओपन यस योर ड्रीम आइलैंड एस्केप ये सिर्फ हो सकता है एक बोर्डिंग कॉल अवे जबकि आप जीत सकेंगे टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अगर जो आप टाइमिंग्स को देखेंगे जब स्पेशल बोर्डिंग कॉल का क्यू आता है सुबह 8 पर साथ में दिन में 11 बजे और 1 o'clock के आसपास तो अगर जो आप ध्यान से सुनेंगे तो थोड़ी देर में शायद आपको जो स्पेशल बोर्डिंग कॉल का क्यू है ये सुनाई दे और जैसे ही आपको सुनाई दे आपके पास में 1 hour का टाइम है जहां पर आप रोवा पर हेड कर सकते हैं और लिखे बोर्डिंग नाउ और साथ में क्लिक करें सबमिट अगर जो आपको इस कंपटीशन का पेज लिंक चाहिए तो 5599 पर BC लिखकर भेजें बस इतना ही करना है आपको और इसमें पार्ट लेकर आप ड्रो में शामिल हो जाएंगे फॉर एन अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेटअवे डोंट मिस योर फ्लाइट बिकॉज दिस वन कुड टेक यू टू पैराडाइज हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु विजिट flysolmans.com T's and C's do apply

0: हम पर यह हॉट एंड हैपनिंग लंच बॉक्स। और आपको बता दूं कि रक्षाबंधन ओ नया जो कंपटीशन है ये भी जारी है, जबकि सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू आप दे सकेंगे। और आपको सिर्फ क्या करना होगा, जैसे रिस्पेक्टिव शो होस्ट आपको मौका दे लाइव ओ नया आने का, 800-004-866 पर आपको कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर एक सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू आपको देना होगा। यानी कि कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं और कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिससे आप बिल्कुल हैप्पी ना हो, तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं और इतना ही करके अपने आप को ड्रॉ में शामिल कर लोगे, जहां पर 28 अगस्त को दो लकी विनर्स का नाम निकलेगा। इनके हाथ लगेगा $250 का शानदार इनाम। तो 800-004-866 इज़ द नंबर जहाँ पर सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू आपको देना है, जैसे ही हमारे शो होस्ट आपको मौका दे। इतना करके आप अपने नाम को ड्रो में शामिल कर लेंगे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा, Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
7: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco, English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: Weekdays 6 to 10 a.m.

0: Blood and plasma donors are always precious, but in wintertime, with sickness about, NZ Blood needs even more donors to fill the gaps others leave. So, if you're well right now, we'd love you to step up and help us out. When you become a donor, you're giving a priceless gift to someone in need. You could help them get better and make yourself feel good. Just head to nzblood.co.nz and book in a time to donate today. Give blood, give plasma, save lives.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
4: You filled the pinata before I sealed it, right?
5: No, you did.
4: I thought you did.
6: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
7: Owning a rental shouldn't feel stressful. Nesto makes property management simple with proactive support, better communication, and evening and weekend viewings. Visit nesto.co.nz. Nesto Property Management. Comfortably nested.
8: Discover the magic at Go Bananas Child Care, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Child Care is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Child Care Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
11: Lunchbox with Ketan.
12: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
11: इसके पीछे
12: हम।
11: लंच के मंच पे।
13: हम पर यह है लंच बॉक्स और आपको बता दूं इसी सरडे आपके लिए होने जा रहा है भजन जेम्स जहां पर साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और साथ में एनजेड कल्चरल ट्रस्ट ये साथ में मिलकर लेकर आ रहे हैं रवितेश देव को जो परफॉर्म करेंगे लाइव बैंड पर आपके लिए प्रेजेंट करेंगे डिवोशनल म्यूजिक फ्यूजन भजन्स और कीर्तन्स और इसके साथ साथ यहां पर आपके लिए रिफ्रेशमेंट्स और स्नैक्स भी रहेंगे आपको सिर्फ जाना होगा इस सरडे 7 PM वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पपटोए जहां पर टिकट्स है $30 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इनके लिए एंट्री फ्री है और टिकट्स के लिए आप जा सकते हैं eventbrite.com साथ में जेस फ्रेश और वेली फ्रेश पपटोए शिव प्रसाद केल्स्टन तो याद रहे अपने टिकट्स के लिए आप यहां से जाकर ले सकते हैं और एक कमाल की बात यह है कि यहां पर इस इवेंट में जितने भी प्रोसीड्स रहेंगे ये दिए जाएंगे इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी तो एक मौका है जहां पर आप एक नेक कार्य में भी अपना सहयोग दे सकेंगे
11: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: लंच बॉक्स पर 0800 रचना की ओर से अब आपके लिए लेकर आते हैं थ्रोबैक।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। लंच की मंच

0: आवाज गूंजेगी। हम
1: मैं हूँ सुता सा छोरा।
2: You're listening to Avineet.
3: It's just after 2 on Hum, और मैं हूँ आपका साथी अभी 3 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। इस हवा पर भी आपके साथ में ढेर सारी बातें रहेंगी और बीच बीच में आपको मेलोडियस नंबर्स भी सुनवाते रहेंगे। और हाँ, याद रहे, आपके लिए लेकर आएंगे स्किप या रिप्ले, ये सभी कुछ हमारे साथ टिल 3 हम एक दूसरे का साथ निभाते रहेंगे। और 3 बजे के बाद में आपके साथ में हो जाएंगी सैंडी, लेकर आएंगी कॉफी ब्रेक।

0: आज लंच बॉक्स में स्किपिया रिप्ले में एक टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि दोनों गाने अरिजीत सिंह के गाए हुए हैं। पहला तो हरदम हमदम, ये भी काफ़ी लोगों को पसंद है, और इसके साथ में दूसरा जो गाना है अभी लेटेस्ट रिलीज जो एक क्रेज बन चुका है, ये आवारापन का टाइटल ट्रैक। तो 5599 पर जल्दी से अपना जो ऑप्शन है क्या सुनना पसंद करोगे ये भेजिए हमारे पास में, ताकि वही गाना आपके लिए प्ले करें कमिंग अप नेक्स्ट ऑन स्किप या रिप्ले।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
4: ये गलत बोल दिया यार।
3: और पहनता भी नहीं है उसको।
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया
4: अभी ब्रांड हो गया ना
3: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स।

0: क्राइटेरिया फीस टीज एंड सीज अप्लाई.
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी मस्त मलंग जो लंच बॉक्स विद केतन.
3: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
2: इसके पीछे
1: हम
2: स्किप या रिप्ले.
4: ऑलराइट, स्किप या रिप्ले में हमारे पास में तरुण ने मैसेज किया है. लिखती है, डिफिकल्ट चॉइस टू मेक, बोथ आर इक्वली मेलोडियस. लेकिन आपने लिखा है, आई वुड स्टिल प्रिफर ये आवारा पन, इट्स द लेटेस्ट वन. थैंक यू सो मच. इसके साथ में वैभव, आपने भी मैसेज किया, डेफिनेटली ये आवारा पन. इसके साथ में सुनीता, आपका भी मैसेज आया है, आपने लिखा है, आई विल गो फॉर ये आवारा पन. तो चलो, आपकी चॉइसिस पर, आपकी डिमांड पर अगला गाना ये आपके लिए.
2: Hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

हम पर यह है लंच बॉक्स आपके साथ में, और जब आप हमारे साथ में जुड़े रहते हैं तो कई फायदे इसके रहते हैं, खासकर जब आप हमें हमारे हम फेसबुक पेज पर फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन जारी है अभी रक्षाबंधन के लिए ऑन हम फेसबुक पेज, जहाँ पर 28 अगस्त को ड्रॉ होगा और जो विनर ठहरेगा उसके हाथ लगेंगे $300 कैश इनाम। आपको सिर्फ क्या करना होगा, हेड आउट टू आर हम फेसबुक पेज और यहाँ पर एक कोई एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करता है, जहाँ पर आपके भाई ने आपको दिया होगा या फिर आपकी बहन ने आपको दिया होगा, उसी ऑब्जेक्ट को लेकर आप एक फोटो डाले इस फेसबुक पेज के पोस्ट पर, उसके नीचे 2-3 सेंटेंसेस लिखे कि क्यों ये आपके लिए स्पेशल है। उसके बाद में अपने सिबलिंग को टेक करें और टेक करते ही आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, जहां पर आप $300 का इनाम जीत सकेंगे।

0: हम पर, मैं हूं आपका साथी अवि और आप मुझे सुन रहे हैं लंच बॉक्स के साथ में ओनली ऑन 104.2 एफएम साथ में रोवा पर। क्या आपने मनी मेहम के बारे में सुना है? तो आपको बता दूं कि 4 या 13 स्टूडेंट्स जो हैं ओमिस्टन सीनियर कॉलेज से, इन्होंने अपने स्कूल बिजनेस प्रोजेक्ट को बना दिया है एक रियल वेंचर जिसका नाम है मनी मेहम। एक ऐसा गेम इन्होंने डिज़ाइन किया है जो बाकी बच्चों को हेल्प करेंगे बिटवीन द एजेस ऑफ 9 और 15 और उनको इंट्रोड्यूस करेंगे टू द रियलिटीज़ ऑफ मनी। और इस गेम को खेलने के बाद में कहीं ना कहीं ये भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे लाइफ में फाइनेंशियल डिसीशंस लेने के लिए। तो ये सभी कुछ इनका ऑब्जेक्टिव था जब इस गेम को इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो अगर जो आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं मनी मेहम के बारे में, या फिर अपने बच्चों को इस पॉडकास्ट को सुनवाना चाहते हैं जहाँ पर इनसे कहीं ना कहीं प्रेरित होकर आपके बच्चे भी कुछ नया सोचना सीखे, तो 5599 पर आप ड्राइव लिखकर भेजे, क्योंकि इनका पूरा कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द चैलेंजेस, ये सभी कुछ यहाँ पर इन्होंने खुल के बातें की हैं। तो ड्राइव लिखे 5599 पर अपना जो मैसेज है ये भेजे और आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप ये अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट सुन सकेंगे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हाँ।
3: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
4: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
3: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
4: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
3: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
4: सबसे बेस्ट 2 परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
3: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
5: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi, switch to Tower.
9: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
10: 3, 2, 1, rush! The rush is on at BP. Today only, save 20 cents per litre and get double points on fuel and shop. There's more to score at BP. Scan everyday rewards today and instantly save 20 cents per litre, max 50 litres. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
11: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grow-A Basin Mixers $149. American Standard Toilet Suite $349. Luxury Clashish Wall Vanities $399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
12: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
1: Non-stop Bollywood.
13: हम जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
14: इसके पीछे
15: हम टॉक
0: हम पर यह है लंच बॉक्स अभी के साथ में। और लंच बॉक्स में टिकटॉक में आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बता दे, AI के बारे में बता दे, जहां पर इसको इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा हुआ है। ब्रुक हेका है 15 ईयर्स की, ये स्वानसी इंग्लैंड से है और इसके बारे में BBC ने रिपोर्ट किया है। जबकि ब्रुक सेरेब्रल पॉल्सी की शिकार है, ऐसे में ये कभी चल ही नहीं पाई। तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक रोबोट को डिज़ाइन किया गया है जिसका नाम है एक्सोस्केलेटन, और इसके सहारे ब्रुक ने पहली बार 812 स्टेप्स लिए। और चलने के बाद में जो इनके पिता है एंड्रू हेका ने कहा है कि आप मेरे भावनाओं को आप शब्दों में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे बताया गया था कि मेरी बेटी मेरी डॉटर कभी चल ही नहीं पाएगी, लेकिन अब देखिए टेक्नोलॉजी के सहारे ये पॉसिबल हो गया है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के अच्छे फायदे भी हैं अगर जो इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया।
16: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI। लंच बॉक्स विद केतन।
17: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: हम पर अब आपके लिए लेकर आते हैं थ्रोबैक और इसी के साथ मेरा जाना बनता है यहाँ से, जबकि 12 से आपने हमारा साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक बार फिर हो जाएंगे आपके साथ में, लेकर आएंगे एक नया फ्रेशली पैक्ड हॉट एंड स्पाइसी लंच बॉक्स। लेकिन अभी यहाँ से आपका साथ देंगी सैंडी, और सैंडी का भी साथ देते रहिएगा, वो लेकर आएंगे आपके लिए कॉफ़ी ब्रेक। लेकिन इन द मीन टाइम आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डू टेक केयर, आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ अभी, मैं निकलता हूँ यहाँ से, टेक केयर, बाय।

0: या बीच को चाहते हो, या ब्रीज, मोर, एज, रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: For a limited time, ventilate three or more rooms in your home and you'll get one vent for free. That's right, one vent for free when you purchase a DVS home ventilation system. T's and C's apply.
2: Looking for a flash getaway? Fiji Airways flash sale is on now. Fly direct from New Zealand one way to Nandi from just $295. Or enjoy a stopover in sunny Fiji direct from New Zealand on your way to epic destinations like Tokyo from $675, Singapore from $699, and Hong Kong from $695. Flash destinations for not much cash. Fiji Airways flash sale on now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
4: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
7: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
8: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. An external review into the fatal Mount Maunganui landslide has found the tragedy could have been prevented. The probe was commissioned by Tauranga City Council, examining things like the timeline and decision-making processes beforehand. Author Paul Davidson KC says no one person was at fault, but there were wider issues with Tauranga City Council's preparations.
10: TC's failure to prepare for an extreme weather event and its failure to have an effective risk mitigation in place, despite that mitigation being twice recommended, reveals the existence of deeply systemic flaws in its organisation.
9: A particularly nasty flu is being seen as a big reason for a marked increase in school absences. New Zealand Principals Federation President Jason Miles says this winter's strain can take anywhere from 5 to 10 days to get over.
11: We're normally in the business of getting children into classrooms and learning, but their learning can't happen if they're not well and affecting others.
9: A man has been charged in relation to 7 alleged arsons in Hastings. They occurred in the early hours of Saturday across the Akina and CBD areas. Colombian pop star Shakira has made a surprise visit to her home country as it recovers from a devastating earthquake. She pledged to rebuild several schools and a university through her education-focused foundation. To sport, the losses continue for New Zealand netball. Former Silver Ferns captain Emiliano Iconacio is leaving the Central Pulse and heading to the West Coast Fever in Perth for next season. In the AFL, the Sydney Swans board has determined that 5 players have been suspended for the rest of the season. It's for their behaviour prior and separate to an alleged sexual assault incident in East Melbourne and is independent of the ongoing police investigation.
8: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 12.8 और आज ओवरनाइट 3 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है.
8: The beat of Bollywood.
13: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
8: Coffee break with Sandy.
14: Good afternoon, हम playing Bollywood's biggest hits. Hi Sandy, how are you doing?
12: Good afternoon, Ruzbe, कैसे हो तुम?
14: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. Coffee break या drive show, क्या कहना है इसको?
12: कॉफी ब्रेक में तुम्हारा स्वागत है.
14: कॉफी ब्रेक में स्वागत है मेरा. क्या बात है. थैंक यू.
12: वैसे कल का मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ.
14: अरे प्लीज बताइए क्या किया कल आपने.
12: टॉकिंग अबाउट खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स ना, अमेजिंग शो लगा मुझे. एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुली, यू नो, खादी जो है उसको कितने डिफरेंट वे से पहना जा सकता है एंड खादी का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी कल के फैशन शो में. सो न्यूजीलैंड फैशन वीक में दिस वॉज द ओनली शो जहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल, जो मेरे को लगता है हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन टेक्सटाइल को यहाँ पे रनवे पे प्रेजेंट किया गया है. बाकी कपड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन वेयर्स की अगर बात करें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. साड़ी, लहंगा, ये सब चीज़ें डिफरेंट चीज़ें होती है. लेकिन अब इंडियन टेक्सटाइल के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो कि वहीं पर बनता है, इंडिया में बनता है, जैसे खादी, तो वो पहली बार हुआ है.
14: That's right, yeah. और काफी बार यही परसेप्शन होता है ना कि इंडियन मतलब साड़ी हो गई या सलवार हो गया या यू नो जो भी.
12: It is much more than
14: but,
12: that.
14: Yeah, this is about the cloth.
12: It is about the cloth, exactly.
14: Yeah, the cloth that is used to make something. और खादी मुझे नहीं लगता आज भी, अभी वापस से आ रहा है वो ट्रेंड, वापस
12: trend
14: आ रहा
12: है
14: जहाँ पे खादी वापस है. बट हमारे, हम जब ग्रो अप हो रहे थे वो टाइम पे खादी नहीं था इतना.
12: खादी या फिर हमने इतना सुना नहीं था. खादी के कपड़े होते थे लेकिन इतना ज्यादा लाइक यू नो मार्केटिंग कह लो कि उसकी अवेयरनेस मार्केटिंग हम तक नहीं पहुंची.
14: इट वाज चीपर एंड इजीयर टू गेट अदर टाइप्स ऑफ लाइक कॉटन या सिल्क या यू नो जो भी अलग सिल्क भी नहीं एक्चुअली.
12: एंड व्हाइल ग्रोइंग अप बहुत सारे ब्रांड्स आ गए, बहुत सारी चीजें बाहर की आ गई.
14: क्या वो पॉलिएस्टर और वो सारी चीजें ने मार्केट को फ्लड कर दिया. आई थिंक दैट हैज हैपेंड इवन इन टर्म्स ऑफ द टॉय इंडस्ट्री. इंडिया में जो वुडन टॉयज होते थे वो हैंडमेड होते थे, वुडन टॉयज. एंड दैट यूज्ड टू बी मेड बाय हैंडीक्राफ्ट, लाइक नो पीपल वहां पे बनाते थे. बट देन वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आके पूरा मार्केट खा गए. नाउ व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर, हमने जब यहाँ के भी वो यूथ से बात की थी, जेन जी से बात की थी, जो यस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप देख रहे हो उन्होंने, उनके बोर्ड गेम्स जो उन्होंने बनाए वो प्लाई यूज किया उन्होंने.
12: या रिसाइकल्ड है सारी की सारी चीजें,
14: प्लाई यूज किया काफी, लाइक यू नो एकदम हेवी मटेरियल्स काफी यूज किए उसमें. इट जस्ट शोज दैट वी आर ब्रिंगिंग बैक
12: टू बेसिक्स,
14: ट्रेडिशनल थिंग्स
12: कहीं पे भी. इनफैक्ट वो जो तुमने बोला ना वुडन टॉयज के बारे में, मैंने कई जगह पे देखा है वुडन टॉयज मिलते हैं और वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं.
14: बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वुडन टॉयज डेफिनेटली, क्योंकि उसमें यार कारीगरी जा रही है ना. और वो होने भी चाहिए एक्सपेंसिव. द ओनली थिंग इज द रीजन व्हाई वी वेंट ऑन टू प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स इज बिकॉज़ इट्स चीपर.
12: इट इज चीपर, या.
14: बट या, इफ पीपल हैव मनी देन दे डेफिनेटली गो फॉर वुडन.
12: See, ऐसी चीजें रिफ्लेक्ट हुई है कल इस शो में.
14: मैं तो गया भी नहीं था शो में.
12: ये तो गया भी नहीं खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स में. सो अगर आप भी शो में थे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 5599 पर.

0: आप सुन रहे हैं हम कॉफी ब्रेक जारी है आपके लिए। आज सैंडी और उसबे साथ में कॉफी ब्रेक में भी आपके साथ, और हम लगातार आपके साथ रहेंगे 7 बजे तक आज।
1: यस, एंड हम बोर्डिंग कॉल वैसे आज आपके लिए 5 बजे के बाद प्ले होने वाला है। हम बोर्डिंग कॉल में होता क्या है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 5 बजे के बाद आपके लिए एक क्यूट कॉल प्ले होगा, और उस समय पर आपको क्या करना है, हमारे रोवा ऐप पे जाना है। वहाँ पे कंपटीशन पेज है हम बोर्डिंग कॉल का, उसके ऊपर क्लिक करो एंड वहाँ पे लिखा होगा बोर्ड नाउ 5 बजे के आगे। मतलब आपको लिखना है बोर्ड नाउ,
0: लिखना है आपको बोर्ड नाउ
1: एंड सबमिट करना है।
0: कभी है?
1: मैंने किया नहीं, मैंने देखा है।
0: अच्छा, आपने
1: मैं करूँगी तो वैलिड नहीं होगी एंट्री ना।
0: क्यों ऐसा?
1: मतलब इन हाउस है ना।
0: ओ, ऐसा होता है।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: तो यार ट्राई करके देख सकते हैं, दो उसमें ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता।
0: ट्राई करते आज 5 बजे के बाद हम साथ में करेंगे बोर्ड नाउ।
1: या लेट्स सी। सो रिमेंबर, हम बोर्डिंग कॉल यहाँ पे कभी भी आपके लिए प्ले हो सकती है। तो इसमें होगा क्या, एक्चुअली में आपको मिलेगा क्या, ये आपको बता देते हैं। तो आपको डबल पास आप जीत सकते हैं यहाँ पे, एक्चुअली में
0: डबल टिकट, दो टिकट्स जीत सकते हैं,
1: दो टिकट्स आप जीत सकते हैं, रिटर्न टिकट्स
0: वन आर टू के लिए
1: विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी।
0: क्या बात है।
1: Yeah, so hum boarding call, it is thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. Visit solomons.com.

0: You're listening to Humbling Bollywood's Biggest Hits 104.2 FM पे और Roa App के जरिए अगर आप सुन रहे हैं हमें even from Australia then welcome to the show.
1: Yeah, and आपके आसपास क्या हो रहा है ये भी हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करते रहते हैं. $20 million का लोटो प्राइस अभी भी अनक्लेम्ड है after 3 weeks.
0: Oh wow, 20 million.
1: Rizbe, it was sold at West Auckland store.
0: क्या आप बात कर रहे हो? Oh my God.
1: तुम तो नहीं हो गई?
0: West Auckland में?
1: Yeah.
0: यार, okay, अगर मैं 4 बजे के बाद नहीं रहा शो पे तो समझ जाना.
1: यही है. आज तुम्हारी मीटिंग होगी. West Auckland का स्टोर है. So, वहाँ पे 3 weeks ago, किसी ने चीजा $20 million का प्राइस, लेकिन इट इज अनक्लेम्ड.
0: बट इन्होंने बोला था ना बीच में रिसेंटली कि ये बताने नहीं वाले कौन से स्टोर में से टिकट खरीदी गई थी. विनिंग टिकट
1: अभी चालू नहीं हुआ है.
0: ओ, चालू नहीं हुआ. अच्छा. So, गुंडा बनेंगे रे लोग.
1: ये जैकपॉट था $40 million का, स्प्लिट बिटवीन 2 winners.
0: ओ, ऐसा है?
1: Yeah.
0: तो 2020 के 2 winner हैं.
1: Yeah, so half of the pot was won by a lucky young Auckland couple, leaving 20.1 million up for grabs. So, yeah, कौन है? नहीं चाहिए तो बताओ हमें.
0: Young couple.
1: $20 million, 5 million के population में चला गया.
0: कुछ नहीं मिलेगा.
1: बट भी गया अगर.
0: कुछ नहीं.
1: नहीं. अरे 1 million तो मिल ही जाएगा ना सबको.
0: ओ यार, नहीं, एक मिनट. क्या? 1 मिनट. 20 million.
1: 5 million की population है, right?
0: और 20 million है total.
1: और 20 million है total.
0: तो हाँ.
1: अगर ये बांट देते हैं, at least 1 million तो मिल ही जाएगा हर किसी को. कम से कम तो 1 million होगा हर किसी के पास. ज्यादा तो होगा ही. खैर
0: नहीं सैंडी, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो यार? आप कैलकुलेशन नहीं हो रहा, बैठ रहा है. 5 million की पॉपुलेशन है.
1: सॉरी.
0: कैसे हो? मैं खुद मैं कंफ्यूज हूं. मैं बोल रहा हूं ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रही है?
1: ओके,
0: नहीं हो रहा है.
1: वेरी डब मोमेंट तो. और ये भी सोच रहे मेरे साथ
0: कि क्या हो रहा है यार. Okay.
1: इसको कवर अप करने के लिए जितनी अनक्लेम्ड मनी है अभी तक की वो सारी कंबाइन कर दो. पता नहीं कितनी है.
0: वही तो. वो पहले फाइंड आउट करो.
1: वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा.
0: जाग गया.
1: देखो ना, 20 million को मैंने 5 million में 1-1 million करके बांट दिया. थोड़ा किसी को खुशी तो आई होगी इस बात पे.
2: ये तो वाकई बहुत बड़ी बात.
0: ये
1: तुम्हारा गूगल था.
0: इसको बोला है ना मैंने. सबका जाग गया होगा अभी. अच्छा, एनीवे, तो सैंडी,
1: या
0: वो 5 million तो रहने दो. 5 million लोगों में अगर आपको 20 million डिवाइड करने हैं तो कितना मिलेगा पर पर्सन?
1: पर पर्सन शुड बी $10 और समथिंग.
0: ओ, $10.
1: लेट्स गेट रियलिस्टिक. कौन इसका जवाब देगा बिना गूगल किए? 5599 पर मैसेज करके बताओ कि $20 million 5 million की पॉपुलेशन में अगर बांटने हैं तो हर किसी को कितना मिलेगा. सो जवाब लिख के भेजो 5599 पर. उसमें बताएगा थोड़ी देर.
0: बहुत बढ़िया किया सैंडी, लेकिन आपने यार. आपने अच्छा कैलकुलेट किया.
1: कौन सा, पहला वाला कि दूसरा वाला?
0: नहीं, दूसरा वाला ऑफ कोर्स. $10 वाला.

0: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
1: रक्षाबंधन कंपटीशन आपके लिए ये भी आज रहेगा। ड्राइव शो में सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू आपको देना है, अपने सिबलिंग के बारे में कुछ आपको शेयर करना है, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू देना है रिमेम्बर, एंड आप जीत सकते हैं यहाँ पे $250 कैश। मतलब लोग ना, मेरे को लगता है कि ज़्यादा अपने सिबलिंग्स के बारे में शेयर करना नहीं चाहते, बहुत कम एंट्रीज आ रही है इस बार इसकी।
0: हाँ, वो बहुत ओवर रेटेड है मेरे को लग रहा है। भाई बहन का रिश्ता
1: ओवर रेटेड तो नहीं है भाई,
0: तो ऐसे ही
1: अंडररेटेड है ये।
0: तो ये लोग ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं, इनको नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरे को लग रहा है $250 नहीं चाहिए किसी को भी। हम फालतू में ऐसा सोच रहे थे कि इकोनॉमी बहुत बुरी है तो $250 भी किसी को मदद कर सकती है, बट नहीं, मेरे को लग रहा है अब
1: $250 में क्या होता है कि अगर
0: 20 मिलियन चाहिए अभी
1: 20 मिलियन पे अटके हैं। जवाब क्या था इसका?
0: $4 ना सैंडी,
1: $4 था इसका।
0: 5 4 20
1: या
0: बाकी जीरोस कट हो जाते हैं ऐसा मेरे को लगता है।
1: तो $4 तो एक एक लॉटो टिकट मिल जाएगी सबको।
0: हाँ, एक एक लाइन दो लाइन जो भी है मिल जाती है। एक लॉटो टिकट भी $4 में मेरे को नहीं लगता मिलती है।
1: $4 की होती है, लिस्ट होती है।
0: अच्छा, होती
1: मैंने
0: है।
1: डाली है, मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रही, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट या होती है $4 की।
0: आप प्रमोट कर भी नहीं सकते हो अभी, क्योंकि जीती तो है वो नहीं, अब पैसे गवाई है तो कोई
1: और कैलकुलेशन भी सही नहीं कर रही हूं। तो मेरे को तो जीतना भी नहीं चाहिए।
0: तो ये
1: मैं जीत के बोलूंगी हर किसी को 1 मिलियन दे रही हूँ मैं। घाटे में चले जाऊंगी यार मैं तो,
0: हर किसी को 1 मिलियन।
2: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हाँ।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Hey, नेहा, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
4: Imagine having someone promoting your business around the clock without wages or weekends off. That's what Quality Signage does. At Speedy Signs, they design and install signage that turns heads, builds confidence, and helps customers choose you faster. If your current sign is blending into the background, maybe it's time for an upgrade. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
5: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
6: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
7: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: वैसे कॉफ़ी ब्रेक जारी है आपके लिए और थोड़ी देर में ड्राइव शो भी शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं अलग अलग।
2: आज भी एक नया पॉडकास्ट आपके साथ हम रिलीज़ करेंगे। सो हमने कुछ और स्टूडेंट्स के साथ भी बातें की है, यर 13 के स्टूडेंट्स के साथ। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया है, एक्सप्लोर के बारे में। नाउ एक्सप्लोर इज समथिंग जो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे लिए ये गेम बनाई है, नॉट जस्ट बच्चों के लिए बनाई है।
1: ये बहुत बढ़िया गेम है और ये गेम ऐसी है जो मुझे लग रहा है सैंडी की फेवरेट गेम होगी।
2: हाँ, मुझे तो लगता है, क्योंकि और मैंने बोला भी ये गेम मैं खरीदने वाली हूँ
1: जी। तो बेसिकली गेम में होता ये है कि आपको अलग अलग डेस्टिनेशंस न्यूजीलैंड में जो हिडन जेम्स है उनके बारे में आपको इसमें पता चलता है। एंड यू कैन प्ले दिस गेम अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स फैमिली एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन स्टार्टर एज वेल ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो कहीं पे, प्लान कर रहे हो, ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो कहाँ जाना है वो डिसाइड करने के लिए आप ये गेम खेल सकते हो।
2: वो डिसाइड करने के लिए, और जब आप वहाँ पे जाते हो तो ये जो कार्ड के ऊपर ये जो कार्ड्स है इस गेम में उसमें फोटोज भी है, तो एक्चुअली में वो फोटो के साथ वहाँ पे आप फोटो खींच सकते हैं, यू नो दैट वे काइंड ऑफ आई वाज देयर आई वाज हियर।
1: या वो वाला, नो आई थिंक इट्स अ वेरी कूल इनिशिएटिव एंड आई थिंक देयर हैज गॉट दे हैव गॉट सो मच स्कोप इन देयर। एंड यही मुझे बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से बात करके कि जो इनके अंदर का जो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है वो बहुत कमाल का
2: है। वो
1: लाइक एट दिस यंग एज दे आर यू नो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बींग द सीईओ या फिर फाइनेंस डायरेक्टर या यू नो लाइक मार्केटिंग एंड दे आर द ओनली वंस टेकिंग केयर ऑफ इट। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है,
2: बहुत अर्ली एज में ऐसी चीजें वो सीख रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट के बारे में आपके साथ और भी हम शेयर करेंगे थोड़ी देर में।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Keep calm because Punjabi swag is on.
2: On.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: What a beautiful day in our super city. Aaj bahut hi bright, beautiful sunny day hai. Waise kal cloudy hone wala hai din, lekin aaj because it's sunny day, it has to be extremely cold as well. तो आज आप 3 degree तक महसूस कर सकते हैं रात को. अभी आप महसूस कर रहे 12 degree.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
1: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Good afternoon, Drive Show. आपके लिए शुरू हो गया है. वैसे कुछ अलग तो नहीं हुआ है क्योंकि आज 3 बजे से ही आपके साथ हम यहाँ पे हैं.
4: A very very good afternoon. कैसे हैं आप और रुस्बे कैसे जा रहे हैं? So far your day?
1: Day is great, Sandy.
4: It is going great.
1: Great. I have no option, other option also, ना?
4: क्यों?
1: मतलब और क्या ही बोलूँ मैं? नहीं अच्छा जा रहा है तो उसमें क्या होगा?
4: उससे हम तुम्हारा रेंट पूछेंगे क्या है?
1: नहीं ऐसा कुछ नहीं है.
4: बोलेंगे यहाँ तुम करो वेंट आउट, क्यों नहीं अच्छा जा रहा है, शेयर करो हमसे.
1: बहुत बढ़िया जा रहा है डे.
4: वेरी नाइस.
1: आपका कैसे जा रहा है दिन?
4: नाइस. सो यहाँ पे हम बोर्डिंग कॉल जो है ये 5 बजे के बाद प्ले होने वाला है, क्यू टू कॉल. रिमेम्बर उसके लिए भी आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाली एंड बैंकॉक.
1: जी.
4: सो बाली एंड बैंकॉक दो कंट्रीज में हम जाने वाले हैं, मैं और रुस्बे, मार्च 2027 में. सो ईस्टर नेक्स्ट ईयर जो ईस्टर है उसके अराउंड हम जाने वाले हैं. सो द ट्रैवलिंग डेट्स आर 23rd मार्च टिल 2nd अप्रैल. तो जिसके बीच में ईस्टर वीकेंड भी आता है तो आपको कम छुट्टियां लेनी पड़ेगी.
1: 7 डेज की छुट्टी आपको बस लेनी है,
4: लेकिन टोटल 11 डेज का ट्रिप है.
1: 7 दिन 11 दिन इन.
4: या सो टू कंट्रीज हम ट्रैवल करने वाले हैं. हम बाली एंड बैंकॉक ट्रैवल करने वाले हैं और ये हम करने वाले हैं सन टूअर्स के साथ. एंड इमेजिन कि वन डे यू नो यू आर इन बाली जहाँ पे आप वाटरफॉल्स है वहाँ पे ब्रेथ टेकिंग बहुत वहाँ पे क्या है बीच वगैरह भी है एंड जंगल्स है वहाँ पे टेम्पल्स वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल है.
1: टेम्पल्स काफी सारे वहाँ पे प्लस दिस
4: यू बीन देयर ना बाली में.
1: या एंड देयर हैज बीन देयर सो मेनी लवली एक्टिविटीज. मेरे को एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है बाली की और ये काफी लोगों के साथ ही होता है कि आप एक बार अगर गए ना बाली तो आपको बार बार वहाँ पे जाने का मन करता है. इट्स दैट एडिक्टिव, वेरी एडिक्टिव.
4: और मैंने बहुत देखा है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, मैंने स्पेशली बहुत देखा है कि काफी लोग बाली के लिए निकलते हैं.
1: अभी मेरा एक दोस्त रिसेंटली जाके आया बाली, अब भी आया ही था वो फिर से मेरे को बाली के बारे में क्वेश्चंस पूछने लग गया. तो मैंने बोला भाई क्या अभी तो जाके आया ना तू? तो बोलता है नहीं अभी एक और बार फिर से.
4: ओह वाओ.
1: तो होपफुली या होपफुली जॉइंस अस बट या
4: फॉर दिस ट्रिप. ओके. सो या वहाँ पे बाली एंड देन नेक्स्ट इज अ बैंकॉक. बैंकॉक अपनी कलरफुल मार्केट्स, अपनी कलरफुल रंगीन दुनिया के लिए भी जाना जाता है. मेरे और रुस्बे के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं. क्या होने वाला है कि ये जो पैकेज डील बनाई है सन टूर्स ने, इट इंक्लूड्स योर फ्लाइट टिकट्स, यानी कि यहाँ से बाली, बाली टू बैंकॉक, बैंकॉक टू वापस ऑकलैंड, ये जो फ्लाइट टिकट्स है ये रहेंगी. 4 to 5 star अकोमोडेशन रहने वाली है, तीनों टाइम का खाना रहने वाला है इसके बीच में, एंड एवरी डे आपकी जो एक्टिविटीज़ है प्लस गाइडेड टूर जो है ये आपके लिए रहने वाला है.
1: एंड एक्टिविटीज में हम लोग काफी सारी चीजें करने वाले, जैसे कि वहाँ पे एक अलोहा स्विंग है.
4: ओ या बाली में,
1: बाली में काफी वो स्विंग के साथ काफी लोग पिक्चर्स लेना पसंद करते हैं तो वो स्विंग हम करने वाले हैं, दैट ऑल इज इंक्लूडेड. फिर बैंकॉक में एक और एक्टिविटी है ना जहाँ पे
4: सफारी
1: एक है,
4: मतलब इसके अलावा और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी है बाली में. सो एवरी डे देयर इज सम एक्टिविटी.
1: एंड प्लस वहाँ पे ऐसे अनिल जी से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे वहाँ पे कंपटीशन रखने वाले वो अलग अलग टाइप के, एंड ही इज गोइंग टू हैव प्राइजेस आल्सो
4: या
1: फॉर यू गाइस. सो हूएवर पार्टिसिपेट्स बेसिकली वो उनको प्राइजेस भी दे जीतने का मौका मिलेगा,
4: वो भी जीतने का मौका मिलेगा. एंड अगस्त के महीने में अभी कुछ दिन बाकी है अगस्त के, अगर आप बुकिंग करते हैं, बुकिंग मींस कि अगर आप $500 एज अ डिपॉजिट वहाँ पे देते हैं इस ट्रिप के लिए, तो यू विल रिसीव 1 free night अकोमोडेशन एनीवेयर इन न्यूजीलैंड. यानी कि मार्च से पहले पहले अगर आप न्यूजीलैंड में कहीं और जा रहे हैं, क्वींसटाउन में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो एक नाइट की फ्री अकोमोडेशन टू एनीवन हु विल बुक इन द मंथ ऑफ अगस्त. ऐसा नहीं कि इसका ड्रॉ है, जो भी बुकिंग कर रहा है. and this accommodation includes breakfast for two as well. Remember, limited seats हैं, तो अभी से अगर आप बुकिंग करते हैं तो क्या है कि आपके इंस्टॉलमेंट्स काफ़ी अच्छे वे से सॉर्टेड हो जाएगी टू डू द पेमेंट, बिकॉज यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस का उन्होंने बहुत बढ़िया आपको बताया है,
1: स्कीम
4: है उनके पास
1: जहाँ पे आप पार्टली पे कर सकते हो.

0: वेनसडे को हम आपके साथ यहाँ पे सिचुएशनशिप 5 बजे के बाद सिचुएशनशिप, जहाँ पे एक सिचुएशन में आपको डालेंगे और इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये आपको हमारे साथ शेयर करना है। 0800-004-866 नंबर को सेव कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में आपको यहाँ पे कॉल करके पार्टिसिपेट करने का मौका भी देंगे।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. वैसे ये साल काफी important year है न्यूजीलैंड के लिए at least, क्योंकि elections हो रहे हैं इस साल. November 7th को elections होने वाले हैं, general elections. And उसके लिए कुछ important चीजें, कुछ dates ऐसी है जो आपको याद रखनी है. जैसे कि जो enrollment है voting के लिए, ये आपको अब इस बार कुछ change कर रहे हैं. You have to get enrolled before the election starts.
1: यार पहले क्या होता था कि एंड तक होती थी एनरोलमेंट, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है. तो आई थिंक देयर इज अ डेडलाइन एज वेल ना.
0: सो बेसिकली 25th अक्टूबर यू नीड टू बी एनरोल्ड बाय मिडनाइट संडे 25th अक्टूबर, व्हिच इज 13 डेज बिफोर द इलेक्शन डे.
1: सो दिस इज नाइस. सो आप एनरोल कर सकते हैं इन केस यू वांट टू चेक कि आप एलिजिबल है वोटिंग के लिए, आपने कभी एनरोल किया था कि नहीं.
0: हाँ,
1: किया था, भूल चुके
0: हैं. कैसे चेक करते हैं?
1: तो अगर आपको चेक करना है vote.nz पे अगर आप जाते हैं, एनरोल और अपडेट ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करो एंड वहाँ पे है आई वांट टू चेक टू अपडेट और आई वांट टू चेक और अपडेट एंड चेक ऑनलाइन लिखा हुआ है वहाँ पे. जस्ट क्लिक ऑन चेक ऑनलाइन, फिल द डिटेल्स एंड यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन.
0: राइट,
1: कि आप एक्टिव हो नहीं हो, व्हाटएवर इट इज, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में वहाँ पे मिल जाएगी. अगर नहीं हो देन यू विल हैव अ चांस टू एनरोल योरसेल्फ उसी वेबसाइट पे जाके.
0: अच्छा,
1: इट्स वेरी इजी.
0: ओके, सो सैंडी आपने चेक किया?
1: मैंने, हाँ मैंने चेक किया हुआ है ऑलरेडी, मेरे को पता है मैं एनरोल्ड हूँ.
0: ओ आप एनरोल्ड हो?
1: हाँ हाँ.
0: अच्छा ओके, सो आई एम गोना सर्च नाउ एंड आई एम गोना चेक. अब मुझे बोल रहे हैं यस यू आर एनरोल्ड, मुझे भी आ गया है. So, बहुत इजी है, मतलब बेसिकली चेक करना मेरे को, लाइक लिटरली टुक लेस देन अ मिनट, 30 seconds
1: या 40 seconds रुस्बे को लगे चेक करने के लिए. एंड गाइस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वोट. आप इस कंट्री में रहते हैं, आप इस कंट्री में क्या चाहते हैं, अपने लिए क्या चाहते हैं, जो चॉइसेस आप करते हैं वही आपका फ्यूचर होता है. सो मेक श्योर कि आप वोट ज़रूर कर रहे हैं. एंड अगर आप एलिजिबल है नहीं एलिजिबल है वो भी आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके, देयर आर मेनी ऑप्शंस, आप जाके चेक कर सकते हैं.
0: एंड आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली ये भी जानना जरूरी है कि किसको वोट करना है ना, तो मतलब
1: स्टडी करना बहुत जरूरी है.
0: वो उनके बारे में भी जानना आप शुरू कर लीजिए. मुझे लग रहा है थोड़े टाइम में एक पैम्फलेट भी आ जाएगा आपके घर में.
1: Yeah.
0: सारे डिटेल्स के साथ, कौन कौन खड़ा है, क्या मतलब यू नो,
1: कि हर एक पार्टी की पॉलिसी क्या है, उन पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ो एंड देन यू कैन सी कि आपके साथ कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो सबसे ज्यादा जिसके साथ आप चाहते हैं अलाइन करते हैं. सो देन या उसी अकॉर्डिंग आप वोट कीजिए.
0: या देयर इज नो इन वोटिंग देयर इज नो राइट आंसर, देयर इज नो रॉन्ग आंसर.
1: या
0: इट्स बेसिकली each to their own, ऐसा होता है.
1: 100%.
0: सो आप भी जरूर इसके बारे में थोड़ा सोचिए, घर वालों से मतलब घर में बात कीजिए इसके बारे में, दोस्तों के साथ बात कीजिए, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज जानिए. एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस ऑल इज टू क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा क्यों. अगर कोई बोलता है कि अरे ये पार्टी आएगी तो ये तो अपनी वाट लगा देगी, अगर तो उनको पूछिए कि क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या रीजन है.
1: कई बार क्या होता है कि हमने जस्ट सुना होता है, किसी ने बोला है, तो हम उसके हिसाब से हम चल रहे होते हैं. खुद की रिसर्च करनी बहुत जरूरी है.
0: हाँ, खुद से मतलब खुद को आंसर्स मिलना बहुत जरूरी है बेसिकली. और वो आंसर्स मिलने के लिए या तो आप रिसर्च करो या तो आप लोगों से पूछो, लोगों के कान चबाओ, जो भी आपका वे है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आस्क दोस क्वेश्चंस कि व्हाई, बिकॉज इफ यू डोंट आस्क व्हाई यू विल नॉट नो व्हाई ना. तो वो पूछना बहुत जरूरी है. तो आप पूछेगा बेझिझक होके पूछेगा यार, ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने सवाल पूछा और कोई आपको जज कर रहा है कि अरे इसने ऐसा कैसा सवाल पूछ लिया, तो वो तो गलत जज कर रहा है आपको.
1: वो गलत है, देन आप गलत नहीं है.
0: आप गलत नहीं हो. सो या आई थिंक one thing that we'd want to achieve as a community is be able to ask questions. And that is what we've always been talking about. कि आप सवाल पूछो, लेकिन सवाल पूछना तो हक होता है डेमोक्रेसी में.
1: ऐसा बोलते हैं कई बार ना, बहुत सारे कन्वर्सेशंस में, मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में एक्चुअल में बोला जाता है कि नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन. ऐसा बहुत बार बोला जाता है. तो या सो नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, यू शुड आस्क.
0: क्या बात है. Daily dose of wisdom, wit and wild conversations. The Drive Show with Sandy and Rizbe. आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए.
2: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: Rizbe, tickets book हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की?
5: बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
5: बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
6: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
8: हेलो एवरीबॉडी।
9: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
10: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
9: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम।
11: Andy didn't think he needed a DVS system.
12: Nah, we're all right, aren't we?
11: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
13: Yeah, Dad!
11: So, Andy got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
14: The new Macca's Barbecue Hash Stack Burger.
15: Not new, Greg's made it before.
16: Yeah, Noah's made it.
17: Sam's made it too.
14: Oh, new for us, but you've been eating the hash brown for ages. Macca's Barbecue Hash Stack. T's and C's apply.
18: Please use your imagination for the following ad.
19: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy like... And once I'd calmed down, I'd actually do something like...
18: Imagine winning $15 million this Wednesday. Play in store or online.
20: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
21: Join the Tribe!
20: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
21: join our tribe!
22: Outdoor season is here at Freedom. Save up to $1,000 on outdoor furniture packages. From outdoor lounges to alfresco dining, save up to $1,000. Sale on now, only at Freedom.
23: TradeDepot.co.nz.
24: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grohe Basin Mixers, $149. American Standard Toilet Suite, $349. Luxury Clashish Wall Vanities, $399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
23: TradeDepot.co.nz.
25: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
26: Are you ready to go home?
9: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
27: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
0: Super Se Upar, 4 से 5 के बीच आपके लिए हम लेकर आते हैं. अभी 4:24 हुए हैं and एक sad news Mount Maunganui में हुआ है landslide. Mount Maunganui Holiday Park, ये जो है landslide, इसके बारे में काफ़ी बातें actually हुई है. अब कह रहे हैं कि ये जो tragedy है ये प्रिवेंटेबल थी.
1: ये हुई थी 22 जैन को एक्चुअली में
0: जी.
1: ये जो लैंडस्लाइड है बीच साइड हॉलीडे पार्क में हुई थी 22 जैन को,
0: जहाँ पे 6 लोगों की मौत भी हुई थी.
1: या
0: बट अब कह रहे हैं कि ये प्रिवेंटेबल हो सकता था, इसका रिपोर्ट जब बाहर निकला है.
1: बिकॉज हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन हुई है ना उसके ऊपर, वर्क सेफ ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है.
0: और कह रहे हैं कि कोई एक इंसान की गलती नहीं थी ये, बट ये एक सिस्टम का फेलियर था कि जो आइडेंटिफाइड रिस्क था, रिस्क टू लाइफ, उसको बेसिकली एस्केलेट नहीं किया, उसको मैनेज भी नहीं किया अच्छे से, ऐसा कहा जा रहा है. सो या देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर हैपनिंग.
1: सो द इश्यू इज कि जो नेचुरल डिजास्टर है डजंट नेसेसरली मीन कि अनप्रिवेंटेबल डिजास्टर है. मतलब ये एक रियली एक कन्फ्रंटिंग इशू वहाँ पे आया है. सो इट्स अबाउट एग्जामिन करना रिस्क असेसमेंट, वार्निंग्स, इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए, decision making before the slip as well. In sab cheezon ko actually mein examine karna.
0: And I think the problem again comes to that ki koi ek ownership nahi, kisi ne ownership nahi li hai koi bhi cheez ki. And that is where I think the root cause, the root problem is. But anyway, aur bhi baatein aapke liye hum lekar aayenge. Jo Tauranga ke mayor hai, ye इन्होंने भी कुछ कमेंट्स पास किए हैं इसके बारे में जो आप तक पहुंचाएंगे हम बस यू नो जैसे ही हमें और डिटेल्स मिलते हैं बट और भी बातें करेंगे बॉलीवुड में क्या हो रहा है इसकी बातें भी आपके लिए लेकर आएंगे क्रिकेट में क्या हो रहा है ये भी जानेंगे यार क्योंकि क्रिकेट में भी काफ़ी एक मैच चल रहा है सैंडी इंडिया का टेस्ट मैच विच आई वॉज नॉट वेरी अवेयर ऑफ श्रीलंका और इंडिया के बीच में मैच चल रहा है
1: ओह नाइस
0: इसके डिटेल्स भी लेकर आएंगे थोड़ी देर में
27: Most wanted.
2: Gundi khada. Ya seedha andar aao.
3: Main laun apna A game.
27: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 104.2 FM पे आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वैसे क्रिकेट की अगर बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच चल रहा है और ये टेस्ट मैच 15 अगस्त से शुरू हुआ जहां पे इंडिया ने पहले इनिंग्स में 462 स्कोर किए, उसके बाद श्रीलंका ने 284, फिर इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में 193 और श्रीलंका अभी है करेंटली 96 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब श्रीलंका को चाहिए सिर्फ 276 रन्स टू विन, ये सिर्फ लग रहे हैं लेकिन जो है मतलब डिफिकल्ट हो सकता है बेसिकली टू अचीव, बट एनीवे लेट्स सी, क्योंकि सिर्फ 6 ही विकेट बाकी है। बट एक एडवांटेज श्रीलंका के लिए वो है कि जो उनके इन फॉर्म प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले इनिंग्स में बहुत बढ़िया खेला था वो अब तक बैटिंग कर रहे हैं, मतलब वो आउट नहीं हुए अब तक। सो करेंटली बैटिंग कर रहे हैं धनंजय डिसिल्वा जो कैप्टन है 39 रन्स पे और सोनल दिनुशा जो 28 रन्स पे है, जिन्होंने पहले इनिंग्स में सोनल ने एक्चुअली में 100 भी स्कोर किया था।
1: ओके,
0: सो या इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टफ मैच, बट ये मैच शुरू हो जाएगा आई थिंक थोड़ी देर में, श्रीलंका में मैच चल रहा है तो मे बी इन अ फ्यू आवर्स ये मैच शुरू हो जाएगा फिर से।
1: और अभी आपके पास समय है यहाँ पे कॉल करने के लिए 0800 00 हम रक्षाबंधन के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने सिबलिंग का रिव्यू आपको देना है यहाँ पे, यानी कि अपने भाई या बहन के बारे में आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यू देना है, बिकॉज परफॉर्मेंस रिव्यू कई बार बड़ा ज़रूरी होता है, कंपनीज में तो होता है लेकिन इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो मेरे को लगता है कि एक दूसरे के बारे में शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तारीफ हो तो और भी अच्छा है।
0: तो बताओ आपके भाई का नंबर क्या है, कॉल लगाते हैं यहाँ पे भाई, आपके भाई से बात करते हैं,
1: कहाँ ही बात करेगा,
0: उनसे भी लेते थोड़ा परफॉर्मेंस रिव्यू सैंडी का
1: या
0: ये आपकी बहन से। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन दूं मैं कि एक किसी को ऑन एयर परफॉर्मेंस रिव्यू देना है आपके बारे में, तो भाई को कॉल लगाएंगे या बहन को कॉल लगाएंगे?
1: देखो अगर तुम परफॉर्मेंस रिव्यू पूछ रहे हो तो अच्छा रिव्यू तो चाहे सारी लाइफ उससे लड़ाई हुई है लेकिन भाई देगा,
0: भाई अच्छा रिव्यू देगा,
1: भाई अच्छा रिव्यू देगा लेकिन वो कॉल कभी नहीं उठाएगा। लेकिन सिस्टर माइट पिक द फूल लेकिन वो कभी अच्छा रिव्यू नहीं देगी।
0: अच्छा तो चलो यार सिस्टर से बात करते हैं।
1: आप बताओ आपको भाई की बात सुननी है मेरे या बहन की बात सुननी है?
0: मेरे को बहन की बात सुननी है, कॉल लगाओ अभी के अभी।
1: नहीं तो भाई से बात करो ना।
0: अरे भाई नहीं फोन उठाएगा, आपने बोला ना,
1: ट्राई करने में तो क्या ही जाता है। हाँ। बाद में जाके डांट ही खा लूंगी।
0: हाँ, चलो कॉल लगाओ।
1: वो बात अलग है। हाँ। मेरे को ये सब पसंद नहीं है, उसका ये कमेंट रहेगा।
0: तो फिर बहन को लगाओ ना कॉल आप, लेकिन बहन को क्यों नहीं लगा रहे हो?
1: ये भी वेरी बिजी राइट नाउ ना।
0: ये बहुत गलत है आपका।
1: वो नेफ्यू के साथ बहुत बिजी रहती है यार।
0: ये बहुत गलत कर रहे हो आप यार।
1: वही ना, तुम किसको चाहते हो कॉल लगाऊं?
0: मैं तो चाहता हूँ कि आप बहन को कॉल लगाओ।
1: पहले एक नंबर ट्राई करते हैं। और बात तुम ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ।
0: हाँ हाँ मैं ही करता हूँ।
1: या वैसे भाई बहुत बिजी होगा वो, बट लेट्स सी।
0: मेरे को नहीं लगता वो फोन उठाएगा सैंडी।
1: या
0: बट आप तब तक यहाँ पे कॉल कर सकते हो अगर आपको चाहिए।
1: किसी को लग रहे हो। बहन ने तो बात की है पहले रेडियो पे, भाई ने कभी नहीं की है।
0: तो आज शायद पहली बार हो जाइए। हेलो
2: एट द टोन।
0: अरे यार, यार ये सैंडी को पता था इसलिए सैंडी ने कॉल लगाया। एनीवे
1: नहीं पता तो नहीं था ऐसे। बढ़िया,
0: चलो बहन को कॉल लगा दो अभी, अभी इतना टाइम
1: क्या बात कर रहे हो,
0: किया ही है तो अभी बहन को भी कॉल लगा
1: दो। तो गाइस तब तक आप कॉल करो ना यहाँ पे, आप भी यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस रिव्यू दे सकते हैं।
0: आप भी दे सकते हो परफॉर्मेंस रिव्यू आपके भाई बहन के लिए।
1: या सो ओके, गलत ही सुनना है तो ये लो।
0: गलत गलत नहीं, सही सुनना है
1: वही तो। 1 2 तुम बात करो ना, मैं नंबर डायल कर रही हूँ।
0: हाँ, अरे मैं बात करूँ। हाँ मैं बात करता हूँ। तो फिर आप भी यहाँ पे कॉल कीजिए तब तक। 0800 00 4866 इज द नंबर, यू कैन गिव अस अ कॉल ओवर हियर एंड यू कैन आल्सो डू अ परफॉर्मेंस रिव्यू। इनका नंबर तो सेव्ड है यहाँ पे।
1: आई डोंट थिंक सो, मैंने सही नंबर डायल किया है क्या?
0: हाँ ये होगा, सही होगा।
3: हेलो
0: हेलो, हाय।
3: Yes,
0: मैं रुजबे बोल रहा हूँ, मैं सैंडी के साथ काम करता हूँ रेडियो पे। आप रेडियो पे हो अभी?
3: ओके हेलो
0: हाय कैसे हो आप
1: आप दी रेडियो पे लाइव हो अच्छा
0: हाँ
1: ध्यान से
0: नहीं नहीं ये इनकी बात है इग्नोर करो हम लोग अभी रक्षाबंधन कंपटीशन कर रहे हैं यहाँ पे तो okay. हम उसमें ऐसा कर रहे हैं कि हम सिबलिंग्स को बोल रहे हैं कि अपने सिबलिंग के बारे में परफॉर्मेंस रिव्यू करो तो हमने सोचा कि आप किससे बेटर कौन परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकता है सैंडी का
1: रिमेंबर वीकेंड पे हमें कहीं जाना था
0: मैं माइक ऑफ कर देता हूँ सैंडी का ठीक है आप सैंडी नहीं लेकिन आप मेरे को लग रहा है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रिव्यू करोगे सैंडी का
3: ओके ऑलराइट इन टर्म्स ऑफ व्हाट परफॉर्मेंस रिव्यू एज अ सिबलिंग
0: हाँ एज अ सिबलिंग एज अ सिस्टर के ऐसा पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू की क्या-क्या खामियां है सैंडी की
1: खामियां
0: नहीं नहीं मतलब देखो अच्छी हाँ. बातें लिमिटेड ही रहेगी ना वैसे तो
3: हाँ वो तो बात सही है घर के मुर्गे दाल बराबर होती है या हेलो सो आई मीन शी इज अ गुड सिस्टर अभी मैं क्या बोलूं यू पुट मी इन अ स्पॉट फोन करते और ये साथ में नहीं होते थे तो अलग बात थी ना
0: हाँ वो भी
3: अभी
0: है.
3: साथ में अभी मैं कैसे बोलूं
0: अभी कोई नहीं अभी आप झूठ बोल दो फिर कोई बात नहीं
3: No, she is an amazing sister. हाँ, like थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है उसको. और थोड़ा lazy भी है. But थोड़ा like हाँ अभी मैं क्या ही बोलूँ.
1: But अच्छी, amazing अच्छी sister.
0: वैसे
1: ये सही है.
0: वैसे तो बहुत अच्छी है बस आदत है उसकी खराब है.
3: हाँ थोड़ी सी बस और क्या है you know बस.
0: हाँ. गुस्सा बहुत आता है ना सैंडी को बहुत ऐसे चिड़चिड़ी ऐसे बहुत हो जाती है ना
3: हाँ वो बहुत हो जाती है क्रैंकी होती है तो हम लोग तो इधर उधर हो जाते हैं भाग जाते हैं कि आसपास ना ही
1: इतना भी नहीं बोलना था
0: मैं को अभी पता चला कि हमारे लिसनर्स कॉल क्यों नहीं कर रहे नहीं बट थैंक यू सो मच
3: ना बट शी इज एन अमेजिंग सिस्टर बहुत केयरिंग है ऐसी बात नहीं है and she obviously loves me a lot
0: बस बहुत अच्छा किया आपने
1: इतने ठीक
0: थैंक यू सो मच लेकिन यहाँ पे अपने फोन आंसर किया और शेयर किया
3: ऑलराइट एंजॉय रेस्ट ऑफ योर इवनिंग गाइस
0: या थैंक यू
1: बाय
0: बाय या नहीं अच्छा है सैंडी नहीं केयरिंग तो है सैंडी यार काफी
1: बहुत केयरिंग वो
0: बट बाकी सब बहुत सही किया एक्चुअली आपकी बहन ने रिव्यू और भी बातें करेंगे
1: खुशी मिल गई तुम्हें
0: मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अभी हम भाई को भी कॉल करेंगे थोड़े टाइम में कल परसों तक

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. और आज हमारा वेनसडे है और वेनसडे को हम हमारे एक एक्सपर्ट को यहाँ पे लेकर आते हैं जो मॉर्गेज के अराउंड हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ पे गाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. एंड आई थिंक दिस इज अ कमबैक काइंड ऑफ अराउंड.
1: सो स्क्विरल मॉर्गेजी से हम काफ़ी समय से बात कर ही रहे हैं, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम स्क्विरल मॉर्गेजी से हम वेणु जी से बात करने वाले हैं. हाय, गुड आफ्टरनून वेणु जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूं सैनी जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स.
0: तो वेणु बताइए, स्क्विरल में आप अब आपका फोकस क्या है, मतलब आप किस चीज के ऊपर हमारे लिसनर्स को गाइड करना चाह रहे हैं?
2: जी रजबा जी, अभी मैं पिछले 20 इयर्स से मॉर्गेजेस करते आ रहा हूं रजबा जी, और स्क्विरल अभी एक अपना एक सेपरेट यूनिट सेटअप किया हुआ है, प्रॉपर्टी फाइनेंस यूनिट. यहाँ पर हम स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फंडिंग करते हैं, जिनको घर बनानी हो, सब डिविजन करनी हो, कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो इस तरह से लोन्स में हम हेल्प करते हैं. और मैं ज़्यादा से अभी उसी यूनिट में शिफ्ट किया हूँ, एंड वी आर अग्रेसिवली डूइंग एट द मोमेंट. तो जिसको डेवलपमेंट करनी हो और वो फंडिंग के तलाश में है, तो स्क्विरल के साथ वो डेफिनेटली बात कर सकते हैं, क्योंकि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अभी हमने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया हुआ है. और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम अपना खुद का फंडिंग करते हैं और साथ में थर्ड पार्टी लोन्स भी कराते हैं. तो वी हैव गॉट वेरियस सॉल्यूशंस फॉर एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ सैंडी जी की, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है वो हमसे बात करे और डिस्कस करे, उसकी फीजिबिलिटी नंबर्स करे, और हम कोई ना कोई डेफिनेटली उसके स्मार्ट सॉल्यूशन निकाल कर हम उनके लिए ला सकते हैं.
1: तो जब ये आप डेवलपमेंट लोन्स के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, अगर मतलब कि लिसनर्स कुछ सोच रहे हैं तो यू नो टू क्लैरिफाई कि इसमें क्या क्या आता है?
2: बिल्कुल सैंडी जी, बहुत ही आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, व्हिच आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर क्विकली. स्पेशली जब डेवलपमेंट फंडिंग के लिए जाते हैं, जो मेन स्ट्रीम बैंक्स कहते हैं, तो वहां पर उनको प्री सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्यूएस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और समटाइम्स वो एज इफ कंप्लीट वैल्यू पे वो लोन नहीं करते हैं. तो इन सारे चीज को हटकर जो हम फंडिंग करते हैं, तो हमारे लिए प्री सेल्स की कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, और प्रोग्रेस वैल्यूएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और साथ में हम लोग कंप्लीटेड वैल्यू पे उनकी फंडिंग करते हैं, और हमें क्यूएस रिपोर्ट का भी जरूरत नहीं है. स्पेशली ये सारे चीजें मुझे लगता है जो डेवलपमेंट फंडिंग में तलाश में है या डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको सारी ये जो टर्म्स मैंने बताया शायद उनको काफी क्लियर है. बट जो लोग अभी नया डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, वो जरूर मुझसे बात करें, और मैं उनको पूरा स्टेप बाय स्टेप वन टू एंड तक उनको सारा सपोर्ट कर हेल्प करता हूँ.
0: That's awesome, Vinu. So, how do our listeners get in touch with you? What is the best way of getting in touch with you?
2: The easiest way is my mobile number, which is 0210-302-409, which is 0210-302-409. Yeah, wo mujhe email bhi kar sakte hain, venuvenu@squirrel.co.nz.
0: That's awesome, Vinu. Thank you so much for joining
1: thank
0: us.
1: Thank you so much.
0: And we hope to talk to you more often.
2: Thank you very much. Thank you, Sandy Ji.
1: Thank you, Vinu Ji. Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusbi, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Hum, accurate traffic.
2: Refreshingly juicy, yummy lemonade apples.
3: Traffic beginning to build out of the Auckland CBD, mainly sunny with some southerlies and a low of 3 in weather. Along the southern to Monaco, it's around 50 minutes, and to Drury, about an hour and 15. Very heavy from Newmarket to Sylvia Park. Reports there may be a crash just past Panama Road. And along the northwestern, it's okay, 25 minutes to Massey. Grey Lynn is looking all right, and heavy past the Great North Road interchange.
2: Hello Yellow, yummy lemonade apples. The yellow apple that's sweet and refreshingly juicy. Yummy lemonade.
4: Hey Neha, congratulations on your first home. Tune to kaha tha ki do banks ne loan dene se aur ek famous broker ne to case lene se hi mana kar diya tha. ये घर कैसे?
5: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
4: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया। नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
6: फर्स्ट होम बायर बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
7: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kid shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
8: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
2: वो indelible homes वाली कहानी सुनाओ ना।
10: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
11: And award goes to Indelible Homes.
10: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
12: Kahani of Indelible Homes.
13: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more? To bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry! Visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
0: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good evening, I'm Bridget Hastie with the latest at 5. An external review into the Mount landslide tragedy has found systemic failures with how Tauranga City Council managed risk. Multiple reports had identified landslide hazards and made recommendations to mitigate them, but were never properly escalated. Review author Paul Davison KC says more unified processes are needed to prevent a similar disaster.
15: This landslide risk sat across the administrative and legal boundary that exists between the mountain and the campground. Responsibility fell somewhere between the TCC teams responsible for each.
14: Mayor Mahi Drysdale says the review makes for grim yet necessary reading.
16: The findings of this review are clear and deeply confronting. Tauranga City Council missed multiple opportunities to manage and mitigate risk.
14: Some new changes to the incoming RMA replacement have been announced. The government says it will bring in a new independent officer on urban land prices and create a more practical system for food and fibre production. Changes have also been made to freshwater farm plans, so only high-risk activities will trigger the need for certification and auditing. Police are looking for a mystery man after several brass memorial plaques were removed from Central Christchurch. They were taken from Latimer Square and the Bridge of Remembrance areas overnight Tuesday last week. To sport the uncertainty surrounding New Zealand's domestic netball has seen former Silver Ferns captain Emilianne Iconasio quit the Central Pulse. The 35-year-old has signed with the Fever in Perth for next season. And to rugby league with Machinery House in a league of their own, the Warriors have released halfback Jet Cleary. The 21-year-old requested a release from the last year of his contract and is expected to sign with the Penrith Panthers.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, hamari good brands nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
18: Well, weather ka hal काफ़ी कमाल, फील्स लाइक 11 डिग्रीज, इट्स गेटिंग चिलर एंड चिलर, एंड आज रात को 3 डिग्री तक जा सकता है. फील्स लाइक तो मुझे लग रहा है जीरो होगा आज. सनसेट होगा 5:51 पे. कल का दिन मिला जुला सा रहने वाला है, विद अ हाई ऑफ 15. टुमारोज ओवरनाइट विल बी 7 डिग्रीज.
6: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive show with Sandy and Rusby.
19: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
18: 5:02 ड्राइव शो आपके लिए जारी है. पावर ड्राइव एट 5 में गुड इवनिंग, स्वागत है आपका. हाय सैंडी, गुड इवनिंग टू यू.
20: वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. आज हम सिचुएशनशिप खेलने वाले हैं एंड कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसपे आपको लगता है कि आप सिचुएशन में हो तो आपको आप क्या करते हो उस समय पर, आपको जवाब देना है यहाँ पे कॉल करके.
18: ठीक है, तो अभी करना ही है.
20: Yeah, we can start this.
18: We can start it now. Okay.
20: Yeah, we can start now because we have set of questions.
18: Give me 3 seconds.
20: Yeah.
0: Situationship.
18: Yes, it's time for situationship. जहाँ पे Sandy आपको एक situation देने वाली है, आप यहाँ पे call करें 0800-004-866 पे and share कीजिए आप क्या करेंगे ऐसे situation में.
20: आप अपना काम कर रहे हैं आराम से बैठे, ठीक है, चाहे आप घर पे काम कर रहे हैं या फिर office में काम कर रहे हैं, कोई भी scenario हो सकता है. देन आपके पास कोई आता है जो आपके करीबी है. दैट कैन बी योर क्लोज फ्रेंड, दैट कैन बी योर क्लोज कोलीग, दैट कैन बी योर पार्टनर, दैट कैन बी योर सिबलिंग या पेरेंट. नॉट पेरेंट, बिकॉज पेरेंट के ऊपर ये सिचुएशन फिट नहीं होती. सो या नॉट इवन सिबलिंग, फ्रेंड, कोलीग या पार्टनर, तीनों में से कोई एक आपके पास आता है और आपको बोलेगा या बोलेगी, वी नीड टू टॉक. ओके, एंड देन you're waiting for that talk thing, but then the person disappear for like 3 to 4 hours. What do you do? Whether 3 to 4 hours disappear or the conversation disappears. कि उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है. We need to talk के बारे में.
18: तो काम करने के इस पे बैठे वो उससे क्या है मतलब?
20: मतलब तुम मस्त हो अपनी चीज करने में.
18: अच्छा, तुम तुम्हारा काम कर रहे हो.
20: तुम बिजी हो, तुम अपनी चीज करने में मस्त हो.
18: इसमें आपने बोला पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं एप्लीकेबल है ये?
20: बिकॉज पेरेंट्स आके अगर बोलेंगे वी नीड टू टॉक, यू कैन एनीवे इग्नोर ना कि हाँ कोई बात नहीं कर लेंगे बात. कई बार इतना वो नहीं लेते हो.
18: नो नो नो नो नो, ऐसा नहीं, गलत है ये. नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करता.
20: इसलिए मैंने पेरेंट्स और सिबलिंग को आउट रखा था कि फैमिली मेंबर्स के साथ कई बार क्या हो जाता है कि इतनी टेंशन नहीं होती कि ठीक है कोई बात करनी होगी कर लेंगे.
18: नहीं यार, मेरे तो सबसे ज्यादा मेरे को टेंशन आता है.
20: हाँ.
18: दो लोगों का वी नीड टू टॉक मेरे को बहुत डर लगता है. तीन लोगों का तीन लोगों का वी नीड टू टॉक,
20: मम्मी पापा और वाइफ.
18: हाँ.
20: या
18: बाकी सब का वी नीड टू टॉक चलेगा. बॉस का भी डर लगता है.
20: या
18: मार्केट ही ऐसा है ना अभी.
20: बाकी सब चलेगा कि ठीक है, चलेगा.
18: या
20: काम के रिलेटेड होता है कि या वी नीड टू टॉक मींस समथिंग इज.
18: और सैंडी का मैंने देखा है, सैंडी भी बोलती है वी नीड टू टॉक, बट वो जो भी वी नीड टू टॉक बोलती है तभी कुछ तो भी रैंडम ही होता है,
20: फालतू निकलता है क्या.
18: हां, तो वो इसलिए उसका इंपॉर्टेंट.
20: मैंने कभी इतना बोला नहीं है वी नीड टू टॉक, ऐसा कुछ बोला नहीं है.
18: वी नीड टू टॉक, वी नीड टू डिस्कस दिस, ऐसा आपका.
20: हां, डिस्कस दिस बोला है ना.
18: हां,
20: इट्स अ डिफरेंट थिंग.
18: हां, तो आप क्या बोल रहे हो, तो ये वी नीड टू टॉक वाला जो है ऐसा बोल के
20: काफी देर तक वो इंसान आपसे बाद में डिस्कस नहीं करता है. वी नीड टू टॉक, टॉक नहीं होती है. व्हाट डू यू डू इन दैट सिचुएशन?
18: यू कीप आस्किंग ना.
20: या यू कीप आस्किंग, वही तो. आप क्या करते हो सिचुएशन में? डू यू कामली वेट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और लाइक डू यू लाइक चेज द पर्सन की क्या है
18: मैं पर्सनली छोड़ देता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, अगर जब भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं तभी बात करेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम मेरा ये है कि आई एम दैट पर्सन जो बोलता है ना जाके कि वी नीड टू टॉक.
20: हाँ, इसलिए
18: मेरे इस केस में आई एम मोस्टली द वन हु डज दैट. बट हाँ, मेरे को एक ही किसी एक और जो बोलता है वी नीड टू टॉक है, वो मेरी माँ है.
20: अच्छा.
18: हाँ, और वो मेरे को स्ट्रेस दे देता है काफी बार.
20: लेकिन वो जल्दी बात कर लेती है. वो
18: डिपेंड करता है.
20: ओके.
18: डिपेंड करता है. तो एक बार उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था यहाँ पे कि नहीं बात करूंगी लेकिन बाद में बात करूंगी.
20: वही ना.
18: तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, आई वॉज प्लेइंग कूल. हाँ ठीक है, कोई नहीं बाद में बात करेंगे. फिर वो अंदर से अंदर, मैं दिखाता नहीं हूँ कि मेरे को जानना है बहुत, अंदर मेरे को बहुत ऐसा होता है कि मेरे को जानना
20: क्या है, क्यूरियोसिटी होती है.
18: लेकिन आई विल नॉट एक्सप्रेस इट आउट. दैट इज व्हाट हाउ आई विल डू इट इन दिस सिचुएशन. हाउ वुड यू डू इट सैंडी?
20: आई वेट. वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है ना.
18: नहीं, आप बहुत पूछते हो. लेकिन
20: नॉट नेसेसरी, डिपेंड करता है.
18: आपके साथ भी,
20: करता
18: मैं आपके
20: है.
18: साथ भी बहुत बार करता हूँ ना ऐसा कि अरे अब मेरे को आई नीड टू टेल यू समथिंग.
20: लेकिन तुम्हारी टोन होती है ना, वो तुम्हें ऐसे कोई बात करनी होती है, कोई गॉसिप या इन अ फन वे कोई बात करनी होती है.
18: हाँ हाँ.
20: सीरियस वाला नहीं होता है ना. टोन के ऊपर मेरे को लगता है बहुत डिपेंड करता है वो. वी नीड टू टॉक.

0: मुझे लगता है उल्टा है ये.
1: नहीं, नहीं.
0: मुझे ऐसा लगता है कि शी गेट मोर फोन कॉल्स अबाउट रुजबे देन रुजबे गेट द फोन कॉल अबाउट हर फ्रॉम योर मॉम.
1: फ्रॉम माय मॉम. या या या दैट्स राइट.
0: सो या आप भी कॉल कीजिए यहाँ पे 0800 00 हम 0800 00 4866. दिस इज द नंबर टू कॉल राइट नाउ एंड टॉक इट आउट.
1: तो करिए कॉल. अब तब तक एक गाना सुन लेते हैं. सोनू निगम ही इज बैक इन द मार्केट. बैक टू बैक उनके बढ़िया से गाने आ रहे हैं. ये भी गाना जो है ये सोनू निगम और रिबले ने गाया इस गाने को अलॉन्ग विद सोनू निगम.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. वैसे यहाँ पे हमें कॉल भी आया है. हाय, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है.
1: गुड इवनिंग आप सबको.
0: कैसे हो आप?
1: हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है?
0: अरे एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही है.
1: अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि प्रोफेशनली तो नहीं हुआ मेरे साथ, पर 3-4 साल पहले मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसे किया था कि हमारे घर पे ईद हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हम लोग किसी के घर पे गए थे. मेरे भाई ने धीरे से मेरे को बोला कि आई नीड टू टॉक. अभी मेरे को पता है कि अगर उसने बोल दिया आई नीड टू टॉक तो वो तो प्रॉब्लम में है ही और मुझे भी ले डूबेगा. तो मैं उससे ऐसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि अब ईद है और सबके सामने वो बता नहीं पा रहा.

0: था, तो मैं उसको नेग कर रही थी कि क्या बात है, क्योंकि उसने मुझे बता दिया. अब मैं यही सोच रही हूँ कि हुआ क्या, किधर से मुसीबत आने.
1: और फिर आपका थॉट अलग जगह पे जा रहा है ना कि अरे कहीं इसके बारे में तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, कहीं ये तो
2: मैंने उस दिन क्या बोला था.
1: नहीं नहीं मैंने उस दिन नहीं, कि मतलब उनके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आएंगे ना कि क्या इसने क्या कांड कर दिया.
0: क्योंकि मेरे भाई को वो पता है कि अगर उसने मुझे बता दिया तो बताना ही होगा, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता, वो क्यूरियोसिटी होती है ना. तो फिर उसने क्या कहा, क्या किया, काफी पूछने के बाद उसने धीरे से मेरे को बोला कि इस घर के बाद मैं तुझे अपने गर्लफ्रेंड के घर पर लेकर जा रहा हूँ, पर तू प्रिटेंड करना कि तू उसको पहचानती है. वो बोलकर वो चला गया. अभी उसको ये तो पता नहीं है ना कि उसने मुझे ये बता दिया, पर मैं उसे पहचानूंगी कैसे, मैंने तो कभी देखा ही नहीं उसे.
1: हाँ, और नाम भी नहीं पता होगा आपको तो.
2: वाओ, फिर
0: नाम भी तो नहीं पता. तो मैंने कहा, ऐसे मूड हिला दिया, मैंने कहा कैसे तो पूछूं, कैसे फोटो देखी, क्योंकि फोटो तो शायद नहीं होगा या फिर होगा, मैंने से पता नहीं था. तो मैं ऐसे ही जब उतर गया लग उसके घर पे, वो लेकर चला गया, तो मैंने धीरे से पूछा कि नाम क्या है. फिर उसने मुझे नाम बताया. तो अभी हम अंदर जा रहे, अभी मेरे को पता नहीं, इतने सारे लोग थे उसके घर पे, मैं ऐसे ही किसी के पास जाकर उसका नाम लेकर उसको हग कर रही. उसने कहा बेटी ये वो नहीं है, ये तो यहाँ है. मैं ऐसे हंसने लगी, पता नहीं प्रैंक कर रही थी.
1: प्रैंक कर रही थी. ओह माय गॉड.
2: माय गॉड.
0: अभी मैं मुझे पता नहीं है, भाई ने अगर बोल दिया कि वी नीड टू टॉक तो कोई प्रॉब्लम है ही है.
1: कितने अच्छे से पहचानते हो आपके भाई को. मैं आपका नाम क्या है?
0: शेफाली.
2: ओके.
1: शेफाली, क्या बात है यार. तो फिर आपका फिर ऐसा आपके भाई के साथ वी नीड टू टॉक कितने बार हुआ यार?
0: बहुत बार. जब भी प्रॉब्लम में पड़ेगा मेरे को साथ में ही लेकर जाएगा. तो मुझे पता.
1: और आपने आपने कभी किया उसके साथ ऐसा
2: वी नीड टू टॉक?
0: ऐसे नहीं, पर इस सिचुएशन के बाद मैं उसको कान पकड़ के लेकर गई कि अगर कुछ बताना हो तो पूरी तरह बता. मैं ऐसी फुद्दू दिख रही थी उसके घर में, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं किससे मिलना था.
1: या वाओ, थैंक्स थैंक्स शेफाली फॉर शेयरिंग योर स्टोरी. या बहुत अच्छा लगा.
0: थैंक यू.
1: थैंक्स.
2: थैंक यू शेफाली.
1: हाय.
3: हाय
1: जी, नमस्कार, आपका स्वागत है.
3: थैंक यू. मेरा नाम रश्मीत है, मैंने कल भी आपको कॉल किया था.
1: अच्छा
2: जी,
1: बताइए.
3: एक्चुअली हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है. मेरे 3-4 महीने पहले की बात है, मेरे भाई ने मुझे फोन करके बोला कि मैं तुम्हारे घर के बाहर आ रहा हूँ और तुम जो है मुझे ना तुमसे बात करनी है. तो लाइक आई वाज जस्ट केयर कि क्या हो गया, इसके घर में सब कुछ ठीक है, मम्मी पापा के साथ सब ठीक है, या वाइफ के साथ सब ठीक है ना सब, या फिर मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम है क्या है. उसने हमें कार में बिठाया और ले गया और कहता मुझे ना तुम्हें आइसक्रीम खिलानी. तो हम उसे लड़ने लगे कि भाई तुमने इस बात के लिए मुझे बोला कि आइसक्रीम खिलानी, कहता नहीं कुछ और भी है. तो उसे पहले थोड़ा सा वो सरप्राइज रखा, मुझे लगा पता नहीं क्या बात है क्या करेगा. फिर उसने हमें बताया कि उसका बेबी होने वाला है, तो बहुत खुश था.
1: ओह वाओ,
2: क्या होने वाला है?
1: बेबी होने वाला है.
2: बेबी होने वाला है. ओह वाओ,
1: दैट्स सो कूल. या
2: या दिस वाज नाइस, वी नीड टू टॉक.
3: बहुत सी चीजें चल रही थी.
2: कभी हम ऐसे बोलते हो कि या थोड़ा हिंट दे दो किस चीज के बारे में.
3: हाँ, हमने उसे बोला कि भाई हमें हिंट तो दो. कहते हैं बस हमने कहा ना तुम बाहर आ जाओ और फिर हम चलेंगे साथ में, हमें तुमसे बात भी करनी और अकेले आना. मतलब मेरे बच्चों को भी बोल रहा था कि उनको मतलब उनको मत लाना. तो कहता है कि अकेले आना. हमने कहा ओके. तो काफी देर चलता रहा दिमाग में, लेकिन बाद में इट वॉज वेरी आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट.
1: That's so cool, yeah. नहीं, ये हमेशा ऐसा होता है कि जब भी we need to talk हम सुनते हैं ना, तो हमें negative thoughts ही आते मन में कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. फिर and I think वो इसलिए purposely आपके भाई ने वैसा किया था कि वो ना जब आपको वो good news दे तो वो great लगे.
2: Yeah, and आपके वो expression देख सके.
3: हाँ, exactly. वो बस वही चीज कर रहा था और कुछ नहीं.
1: Thank you so much. आपका नाम क्या बताया आपने? Sorry.
2: Rashmi.
1: Thank you so much for sharing. Yeah.
3: Thank you. Bye.
1: Bye.
2: Bye.
1: तो चलो आज आपके कॉल्स भी यहाँ पर आए गए, थैंक यू सो मच. एक गाना भी सुन लेते हैं अभी और उसके बाद याद रखिएगा हम बोर्डिंग कॉल कभी भी बच सकता है आपको. रोवा ऐप पे जाके उसको तभी जाके मतलब वो सब एक्टिवेट करना है जब वो बोर्डिंग कॉल बजे तभी. डिटेल्स जानना है तो BC लिखकर भेजिए 5599 पे.

ta-dum, ta-dum, ta-dum.

0: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
1: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
0: जहां सब चुप हैं, हम हैं जरा loud.
1: हम.
0: Are you ready? Chartbusters.
2: थोड़ा तो हॉल बना दे.
3: You're listening to Hum, playing Bollywood's biggest hits. Power Drive at 5 आपके लिए जारी है और हम यहाँ पे आपके लिए काफी सारी बातें लेकर आते हैं. इवेंट्स काफी हो रहे हैं हमारे सुपर सिटी में.
4: भजन जैम्स हो रहा है जहाँ पे फ्यूजन रहेगा भजन एंड कीर्तन का, जो कि इसी सैटरडे को रहने वाला है 7 PM ऑनवर्ड्स वैदिक सेंटर में, 32 ग्लासगो एफ पापाटोई में. टिकट सिर्फ $30 की है. अपने टिकट्स आप जाके खरीद लीजिएगा
3: जी. टिकट्स फटाफट ले लीजिएगा इसकी. और यहाँ पे याद रखिएगा स्नैक्स कावा भी बिका जाएगा एंड वैदिक सेंटर में होने वाला ही है. तो अगर आपको भी फ्यूजन भजन्स और कीर्तन्स पसंद है, एक इवनिंग ऑफ अपलिफ्टिंग डिवोशनल म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं, तो रवितेश दियो को लाइव उनके टीम के साथ परफॉर्म करते हुए देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए.
4: एंड रक्षाबंधन का कॉम्पिटिशन हमारे फेसबुक पेज पर भी आपको मिलने वाला है. हम के फेसबुक पेज पे पहुंचेगा. वहां पे हमने एक पोस्ट की है रक्षाबंधन की, उसे पिन पोस्ट में हमने रखा है. उसके कमेंट सेक्शन में किसी भी एक ऑब्जेक्ट की फोटो आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करनी है विच कनेक्ट्स यू विद योर सिबलिंग्स. उनकी याद दिलाते हैं आपको. राइट 2-3 सेंटेंसेज अबाउट द मेमोरी अटैच टू इट. टैग योर सिबलिंग एंड यू आर इन द ड्रॉ टू विन $300 कैश.
3: $300 आपके नाम हो सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू,
4: कोई खर्चा नहीं है, सिंपल फोटो डालनी है.
3: या गो एंड पार्टिसिपेट फेसबुक पे. हर कोई है फेसबुक पे आजकल तो यार. या कुछ है जो नहीं है.
4: फेसबुक एक टाइम पे मेरे को लगता है बहुत डाई आउट हो रहा था. लोगों ने कम करना यूज नहीं कर रहे थे ज्यादा. मैं भी ज्यादा यूज नहीं करती हूँ. इंस्टा ज्यादा यूज करती हूँ. बट अभी फेसबुक ने अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की है बाई पेइंग आउट ऑन द रील्स एंड स्टफ लाइक दैट, जो अभी बाकी सोशल मीडिया पे कम होता है. सो या दैट्स वन थिंग फेसबुक इज डूइंग.
3: मैं एक वीडियो देख रहा था सैंडी, यू नॉट बिलीव इट, इतने एड्स आए उस वीडियो में, इतने एड्स आए, बट मैं फिर भी मतलब मैं खत्म करके ही बैठा उस वीडियो को. क्योंकि मेरे को देखना था भाई कितने एड्स आ रहे हैं. ऑलमोस्ट एवरी 20-30 सेकंड्स एक ऐड दिख रहा था मुझे.
4: वाओ.
3: मतलब मैं बोला भाई ये कुछ
4: नहीं. सो दिस इज ऑन फेसबुक.
3: ऑन फेसबुक.
4: वाओ.
3: लंबे वीडियोस जो होते हैं ना वो वाले. और ऐसी भी नहीं है कि नई वीडियो है, मैं पुरानी देखी हुई वीडियो है. बट आई वाज जस्ट एंजॉयिंग इट, सो आई वाज लाइक चलो देखते हैं. बट एनीवे,
4: व्हाट डू यू यूज, मतलब आप क्या यूज करते हैं? फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, आप सबसे ज्यादा एक्टिव कौन से सोशल पे रहते हो?
3: अगर आपका फोन का वो स्टैट निकाले
4: या फिर स्नैपचैट.
3: Snapchat पे भी काफी
4: many people are very active on Snapchat as well.
3: Yeah, what is the app that consumes most of your screen time?
4: Yeah, मतलब socials में से Snapchat, Insta, TikTok और Facebook.
3: या WhatsApp.
4: ये मुझे जानना है.
3: WhatsApp पे भी आजकल बहुत लोग time spend करते
4: हैं. WhatsApp पे भी आजकल stories दिखते हैं ना वहाँ पे. हाँ
3: तो
4: मैं वहाँ पे तो stories देखती नहीं हूँ.
3: Very bad Sandy. You should watch.
4: So या बताइए यार, सो आप कहाँ पे एक्टिव है इन सब प्लेटफॉर्म में से? सबसे ज्यादा एक्टिव आप कहाँ पे है? मुझे लगता है मोर इंस्टा. व्हाट अबाउट यू?
3: इंस्टा. इंस्टा एंड फेसबुक आल्सो.
4: फेसबुक में बहुत कम, मतलब जाती हूँ मैं, एक दो बार चले जाऊंगी टू चेक एवरीथिंग.
3: या बट इंस्टा आई वुड आल्सो, इंस्टा वुड टेक ओवर आई थिंक. जो मुझे कम करना है यार, क्योंकि अभी ज्यादा रिलायंस हो गया है ना इंस्टा पे. रिलायंस नहीं, जियो आई मीन.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में?
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
0: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
0: Accurate traffic.
5: Innovative Interiors, your luxury wardrobe specialist.
6: Mainly sunny with some southerlies and a low of 3 tonight for Auckland. Traffic is patchy getting out of the CBD. To Constellation Drive, around 25 minutes along the Northern and 45 minutes to get to Silverdale. Busy from the Ornera Road ramp to Northcote Road. Along the Northwestern, 26-minute drive to Massey from the CBD. And further south along the Southern, 55 minutes to Monaco and about an hour and 10 to Drury.
5: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
7: Bunnings Trade is here to help trade customers with 134 Trade. Get quick quotes and pricing on a wide range of supplies, plus stock inquiries, delivery updates and more. Call 0800 134 872 or jump online and we'll help you get what you need fast. Bunnings Trade.
8: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
9: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
8: घर बेचने से पहले NZPMI के पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
9: पर डेवलपमेंट के पैसे
8: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4 NZPMI।
10: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
11: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
12: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 p.m. Vedic Center Papatoy. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds gift of life Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh Papatoy or Shu Prasad, Kelston.
13: This is a big one. Save up to $16,000 across the LDV Ute range. The biggest LDV sale yet is on now. LDV, helping Kiwis work harder every day. LDV distribution arrangements in New Zealand are subject to change. See ldv.co.nz for important information.
0: Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
14: Power Drive at 5.
1: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
15: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। वैसे हमने यहाँ पे पॉडकास्ट में काफ़ी बार मतलब एक बार एक टॉपिक यहाँ पे छेड़ा था अबाउट MBIE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्राइज। यहाँ से हमने एक जो कंसल्टेंट है उनसे बात की थी अभय कोल्हे के साथ अबाउट एम्प्लॉयमेंट राइट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। और हमने ये टॉपिक इसलिए किया था क्योंकि हमने काफ़ी बार सुना था अबाउट हाउ माइग्रेंट वर्कर्स गेट एक्सप्लॉयटेड और उसके बारे में इसलिए हमको बात करनी थी। एंड अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ भी देखा था जहाँ पे बे ऑफ प्लेंटी में एक हॉर्टिकल्चर के जो एम्प्लॉयर है इनके ऊपर एक केस हुआ था जहाँ पे इनके केस हुआ था टू दैट दे वर एक्सप्लॉयटिंग माइग्रेंट वर्कर्स। अब उसका डिसीजन भी आ गया है, दे हैव बीन ऑर्डर्ड टू पे अ कम्बाइंड $400,000।
4: सो बे ऑफ प्लेंटी की हॉर्टिकल्चर लेबर कंपनी जो है इंडो कीवी हॉर्टिकल्चर लिमिटेड और उनके जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं उनको ऑर्डर किया गया है टू पे अराउंड $400,000 फॉर इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स वर फाउंड टू हैव बीन एक्सप्लॉयटेड. सो इन्वेस्टिगेशंस में रुजबे पाया गया कि द वर्कर्स वर अंडर पेड, वेजेस एंड हॉलीडे पे वर विदहेल्ड, वर्कर्स वर चार्ज्ड अनलॉफुल एम्प्लॉयमेंट प्रीमियम्स, three workers paid more than $65,000 in premiums, and company was ordered to pay $176,000 in penalties.
15: Yeah, $176,000 penalties mein aur upar se $152,000 in wage and holiday pay arrears.
4: Aur jo owner hai was ordered to pay another $88,000
15: in penalties. Yeah.
4: So each of the four workers will receive $33,000 from the penalties. वेल ये फॉर्मर डायरेक्टर है बूटा सिंह टिल्लो इनका नाम है वैसे. सो द कंपनी वो सोल्ड इन अक्टूबर 2024 एंड इज नो लॉन्गर ऑपरेटिंग नाउ.
15: या इट्स अ टफ वन,
4: इट्स सैड मैन,
15: इट्स वेरी सैड. या
4: और एक्चुअली मैंने चीज़ों के ऊपर हमने बात की है, ये जो हमने पॉडकास्ट किया था MBI के यू नो जो एडवाइज़र है वहाँ पे जो सबको एडवाइस करते हैं कि राइट्स के बारे में एडवाइस करते हैं, इनके साथ हमने यही सारी बातें की थी जहाँ पे हमने डिस्कशंस की थी कि क्या क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें आप एड्रेस कर सकते हैं, कैसे एनोनिमस होके भी आप चीज़ें एड्रेस कर सकते हैं, एंड हाउ थिंग्स कैन चेंज फॉर यू.
15: या एंड आई थिंक द रीज़न फॉर शेयरिंग दिस न्यूज़ इज जस्ट टू शेयर कि भाई ऐसा सब हुआ है और उसके ऊपर देखो एक्शन लिया गया है,
4: एक्शन हो रहे हैं
15: और फिर पेनल्टी फाइंस ये सब लाइक यू नो काफ़ी कुछ हो रहा है. तो
4: सो ईच ऑफ द फोर वर्कर्स जो थे जो एक्सप्लॉयट हुए हैं they're going to receive $33,000 from the penalties.
15: Yeah, but what we are trying to say is that if you're being exploited, don't be exploited. There are things that you can take in your control and you can work around.
4: To start with, maybe just go anonymous. अगर आपको रिपोर्ट करना है, पता करना है, बिकॉज कई बार टेंशन होती है रुजबे कि जब स्टेटस किसी का वीज़ा स्टेटस जो है किसी का अभी तक नहीं सही होता है ना, तब तक टेंशन रहती है, सर पे तलवार लटकती है ना कि भाई बोल देंगे तो
15: और
4: जाएंगे.
15: वही टाइम होता है जब तुम एक्सप्लॉइट सबसे ज्यादा होते हो, जब तुम्हारे सर पे कोई तलवार अटकी होती है. सो या इट इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. बट MBI का जो हमने वो पॉडकास्ट किया था उसमें उन्होंने बताया था कि काफ़ी हेल्पलाइंस है जहाँ पे आप कॉल करके हेल्प ले सकते हो. तो आप ज़रूर वो पॉडकास्ट सुनिएगा अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुजबे. उसमें आप जो हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला एक पॉडकास्ट है उसको आप जाके क्लिक कीजिए और सुनिएगा ज़रूर, एंड यूल गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट. बट फॉर नाउ लेट्स लिसन टू सम सॉन्ग्स. 6 बजे के बाद एक बहुत ही बढ़िया सा शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं टुडे,
4: ट्रेंड मेकर्स.
15: ट्रेंड मेकर्स में इट्स गोना बी अ शाउट आउट टू अ वेरी टैलेंटेड यंग एंथुजियास्टिक एंड एंटरप्राइजिंग डायरेक्टर.
4: लेट्स गो
1: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: छह बज चुके हैं ट्रेंड मेकर्स आपके लिए हम लेकर आते हैं विद अ न्यू थीम एवरी डे. गुड इवनिंग सैंडी.
4: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग रुजबे. और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अयान मुखर्जी को.
3: अयान मुखर्जी का बर्थडे इसी हफ्ते गया या लास्ट वीक ही गया?
4: इसी एक्चुअली में इस वीकेंड पे गया था उसका बर्थडे. एंड अयान मुखर्जी हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिल्म मेकर बन चुके हैं, चाहे गिनती की ही मूवीज उन्होंने की है.
3: बड़े इम्पैक्ट छोड़ा है उनकी मूवीज़ ने.
4: इम्पैक्ट छोड़ा है. सारे के सारे मूवीज के गाने सावर में आप सुनने वाले हैं. गिनती की मूवीज है लेकिन इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहा है.
3: एक्चुअली मैं मुझे पता नहीं था इसके बारे में, बट अयान मुखर्जी अगर आपको नहीं पता तो ही इज मुखर्जी MUKERJI एंड ही इज फर्स्ट कजिन्स ऑफ विद एक्ट्रेस काजोल एंड रानी मुखर्जी.
4: या
3: सो ये काजोल और रानी के रिलेटेड
4: है. तनिषा मुखर्जी इन सब के रिलेटेड है. सो थ्रू ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू लेजेंड किशोर कुमार एंड फिल्म मेकर आशुतोष गवरकर.
3: अरे क्या बात है. सो क्वाइट कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड.
4: सो या फैमिली रूट्स इनकी वैसे मुखर्जी स्मार्ट फैमिली की है.
3: ब्रदर इन लॉ है.
4: या सो थ्रू मैरिज ही इज रिलेटेड टू लेजेंड किशोर कुमार. सो इस वजह से है. बट या करियर की ओर अगर इनको देखा जाए रुजबे, क्या क्लासिक मूवीज बनाई है. सो जिन मूवीज के अभी आप गाने सुनने वाले हैं, वेक अप सेड, ये जवानी है दीवानी, ब्रह्मास्त्र, वॉर 2, मतलब दीज आर द मूवीज जो अयान मुखर्जी का वर्क है.
3: सारे गाने सारे हिट रहे मूवीज के.
4: गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं
3: उनकी. एक्चुअली मूवीज सभी बहुत ही कमाल थी, एक्सेप्ट उनको थोड़ा सा फ्लैग मिला था फॉर ब्रह्मास्त्र. कुछ लोगों को उसके डायलॉग्स नहीं पसंद आए थे मूवी के, बट आई थिंक
4: मूवी वाज क्वाइट हिट.
3: बट मूवी वाज क्वाइट अ हिट मूवी. एंड वॉर 2 आल्सो वाज क्वाइट अ हिट मूवी, बट पीपल सम ऑफ देम डिडंट.
4: इट वाज अ मिक्स्ड रिव्यू.
3: मिक्स्ड रिव्यू वाली मूवी थी.
4: वैसे इन्होंने पहले काम किया है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर आशुतोष गवरकर के साथ स्वदेश मूवी में, एंड देन ही लेटर असिस्टेड करण जौहर एज वेल. कभी अलविदा ना कहना.
3: राइट. सो दिस आवर इज गोना बी ऑल अबाउट अयान मुखर्जी. बस उनके अपडेट्स, उनके मतलब उनके लाइफ स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे, उनके काम के बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे. बट टू स्टार्ट ऑफ, एक ऐसी मूवी जो उनकी पहली मूवी थी शायद, डायरेक्टोरियल, पहली डायरेक्टोरियल with none other than Ranbir Kapoor, and I think no one else but Ranbir Kapoor could have played the role of Sid.
4: Sari movies unke Ranbir Kapoor ke saath hai.
3: Oh, yeah.
4: Except War 2.
3: Yes. So unki first movie Wake Up Sid ka ye gana aapke liye title track. Enjoy kijiye.

0: आप सुन रहे ट्रेंड मेकर्स 104.2 एफएम पे या फिर रोवा ऐप के जरिए. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अयान मुखर्जी टुडे, जिन्होंने अपना डायरेक्टर डेब्यू किया था एट द एज ऑफ 26.
1: यस, काफ़ी न्यूज़ में भी ये रहे हैं जब एक ब्रह्मास्त्र के टाइम पे एक्चुअली में काफ़ी न्यूज़ में ये रहे हैं. जैसे ओरिजिनली इन्होंने अनाउंस किया था ड्रैगन, बट द प्रोजेक्ट टुक ऑलमोस्ट अ डेकेड टू रीच थिएटर्स. तो इतना ज़्यादा काम इन्होंने किया है ब्रह्मास्त्र के ऊपर,
0: काफ़ी उनको टाइम लग गया एक्चुअली. बट वही परसिवरेंस का गेम है ना यार, इतने टाइम तक वो लगे रहे लेकिन उस मूवी के साथ. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई थिंक ही कुडंट डू अ लॉट ऑफ मूवीज. उनकी एक मूवी जो है ये जवानी है दीवानी, आई थिंक दैट वॉज द मूवी व्हेन आई डिस्कवर्ड हिम एंड आई वाज लाइक ओ मैन दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मूवी.
1: या नेपोटिज्म की डिबेट से ये भी बाहर नहीं थे, मतलब इनको भी इंक्लूड किया गया था बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शंस एंड टॉप बैनर्स के साथ काम करना, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शंस NYRF के साथ. तो ये भी फोकल पॉइंट ऐसा बने थे वो, लेकिन इन्होंने अपने काम के साथ प्रूव किया है. यू नो, बीइंग पार्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, फैमिली का पार्ट होना एंड देन प्रूविंग अपने काम को, एक अच्छा वर्क जो होता है इनका, अगर इनका काम प्रोमिनेंट है, मींस कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नेपोटिज्म, ही इज डूइंग हिज वर्क.
0: या एंड आई थिंक वही तो है ना कि अगर कोई टैलेंटेड इंसान है फील्ड में, ऑब्वियसली उनको एक एडेड एडवांटेज मिलने वाला है कि वो उनकी फैमिली उस इंडस्ट्री से है. बट आई थिंक दैट्स कॉमन फॉर एवरीवन.
1: मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती है.
0: लाइक डॉक्टर्स के भी बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं काफी बार, क्योंकि ऑब्वियसली उनको एडवांटेज होता है,
1: बचपन से देख रहे हैं, टीचर बनते हैं. सो मेरे को लगता है कि वो बॉलीवुड को लेके काफी लोग थोड़ा ओवर हाइप कर देते हैं नेपोटिज्म को लेके. अगर आपको टैलेंट पसंद नहीं आता है एक्टर का तो आप मूवी देखने नहीं जाते हो.
0: That's right. और भी बातें करेंगे हम इनके बारे में, बट आप अभी के लिए एंजॉय कीजिए ये जवानी है दीवानी का ये बहुत ही सुपर हिट गाना.

0: Trend Makers.
1: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
3: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर।
4: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
5: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma. Save lives.
6: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स। सिलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए 3.9% फाइनेंस या $2,000 कैशबैक। प्रीमियम डिजाइन, टेक्नोलॉजी और जबरदस्त वैल्यू, सुपर हाइब्रिड

0: Bus. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev. Devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday, 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi, or Shri Prasad, Kelston.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: अच्छा
2: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
6: माँ, एक चपाती होती है ना?
7: हाँ, एक चपाती मुझे भी।
8: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
9: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
10: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: आप सुन रहे हैं हम बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. आज अयान मुखर्जी के गाने हम आपको सुना रहे हैं बैक टू बैक ऑन हम एक घंटे के लिए सिर्फ अयान मुखर्जी के गाने. ये जो गाना आपने सुना ऐ दिल मुश्किल, आई थिंक अनदर बहुत ही फाड़ू मूवी. Really good movie. I really enjoyed Ae Dil Hai Mushkil as well.
1: बहुत अच्छे वैसे वैसे
0: Ayan Mukherjee ने बनाई है. Typical Karan Johar movie actually. If you go to see.
1: Inspired है ना वो Karan Johar से.
0: हाँ क्योंकि उस movie में journey है उस मतलब character की journey है. उसमें fun moments like you know जो typical Karan Johar movies में होता था कि starting में character बहुत ही fun दिल पे.
1: End में मेरे को लगता है उन्होंने कल हो ना हो करने की कोशिश की थी. मतलब आई कुड रिलेट विद कल हो ना हो.
0: मुझे एंड अच्छा लगा, मुझे एंड अच्छा लगा था उसका.
1: अच्छा था बट फिर भी वो 10-15 मिनट थोड़े कम होने चाहिए थे उस सीन के. मतलब थोड़ा ज्यादा खिंच गया वो सीन. अब जाके देखो तो वो समझ में आता है कि यार थोड़ा खिंच गया वो सीन. पहली बार जब आप देखते हो रियलाइज नहीं होता है.
0: Maybe. Yeah.
1: क्योंकि पहली बार आप कहानी में होते हो ना. एंड इट वॉज अ गुड मूवी. It was really good movie.
0: And I think it was something that was not predictable at that point. जब ये देख रहे थे, बिल्कुल भी ऐसा predict नहीं किया था ये. और भाई वो जो last scene है ना, उसने तो रुला दिया था. याद है वो वहाँ पे उसका interview दे रहा है रणबीर कपूर और वो बोलता है मैं गाऊँ. और फिर वो गाता. Oh my God, I still like दो movies हैं जो मैं मेरे को बहुत पसंद है लेकिन मेरे को देखना नहीं पसंद है. ये जवानी है दीवानी. I love that movie, but I can't watch it. बिकॉज मैं जब भी देखता हूँ मुझे पता नहीं क्यों मेरे को बहुत रोना आता है वो मूवी देखते.
1: तुम भी उड़ना चाहते हो.
0: हाँ ये जो नहीं नहीं मैं उड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं खुश हूँ.
1: डायलॉग है ना. नहीं अरे वैसे बोल रही थी मेटाफोर वे. बट या बट इट्स अ नाइस मूवी एज वेल. ये जवानी है दीवानी में इट वॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम री यूनियन ऑफ रणबीर कपूर एंड दीपिका.
0: या
1: So but, after breakup, उनके ये पहली मूवी थी.
0: But more than that, it was like Bunny and क्या था उसका character name? दीपिका का कुछ तो भी बहुत बढ़िया ही नाम था.
1: Yeah.
0: Bunny. Bunny तो बढ़िया character था. But anyway.
1: But that was one of the highest grossing Hindi movie. मल्टीपल अवार्ड्स मिले थे ये जवानी दीवानी.
0: राइट सो अयान मुखर्जी के बारे में और भी बातें करेंगे लेकिन अभी के लिए कुछ गाने सुन लेते हैं. उनके गाने भी बहुत बढ़िया रहे यार. मूवी उनकी कुछ भी बोलो मोस्टली ऐसे मूवीज है उनके जिसके सारे गाने हिट हैं. एंड दैट्स व्हाई इट्स बीन अ वेरी टफ वन फॉर अस टू प्ले सॉन्ग्स टुडे बट आई होप यू लव दिस वन एज वेल.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: आप सुन रहे ट्रेंड मेकर्स, जहाँ पे आयान मुखर्जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हम, क्योंकि 15 अगस्त को उनका बर्थडे गया। एंड वैसे सैंडी, हम लोगों ने बात की इनके डायरेक्टोरियल्स के बारे में कि काफ़ी डायरेक्टोरियल्स इन्होंने किए हैं, बट इन्होंने थोड़े ऑन स्क्रीन कैमियोज भी किए हैं।
1: जैसे कि
0: पहले तो कभी अलविदा ना कहना में ये ब्रीफली क्राउड में दिखे हैं।
1: ओके।
0: फिर ये जवानी है दीवानी में उन्होंने एक छोटा सा कैमियो किया था ड्यूरिंग द सॉन्ग दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, तो वो एज अ गेस्ट बैकग्राउंड में बैठे थे। एंड उन्होंने होम डिलीवरी करके एक मूवी आई थी 2005 में विवेक ओबरॉय की, जिसका गाना हम अभी एक दो महीने में सुनना चालू कर देंगे। होम डिलीवरी का ही वो गाना है।
1: कौन सा वाला?
0: तेरे मेरे लिए हम सब के लिए हैप्पी दिवाली। सो उस मूवी में भी उन्होंने एक कैमियो अपीयरेंस किया था छोटा सा।
1: वाओ, इंटरेस्टिंग। वैसे इनकी आने वाली मूवीज जो है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 एंड देन ब्रह्मास्त्र पार्ट 3
0: ये भी आने वाली है क्या?
1: सो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 जो है ये प्री प्रोडक्शन एंड स्क्रिप्टिंग है इसका करंट स्टेटस, एंड ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 जो है टेंडम डेवलपमेंट में है। सो इसका प्लान है यार मुखर्जी का कि टू राइट एंड शूट पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बैक टू बैक एंड देन रिलीज विद अ मल्टी ईयर गैप।
0: ऐसा उनका जो ये सपना है ये पूरा हो और वो ऐसे रिलीज कर पाए, बट आई थिंक इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम यार। ब्रह्मास्त्र अब आके कितने साल हो गए?
1: ब्रह्मास्त्र काफी समय पहले आई थी। अस्ट्रावर्स इनका है ना, ये
0: एस्ट्रोवर्स उन्होंने वो डेवलप किया था ना पूरा उसके ऊपर, एंड 10 साल लगे उनको डेवलप करने के लिए। मेक सेंस यार, बिकॉज़ इट्स अ
1: 2022 में आई थी ये
0: 2022, तो देखो ऑलरेडी 4 साल हो गए, 4 प्लस साल, और अब तक ये प्री प्रोडक्शन में ही है।
1: सो पहली वाज शिवा, देन इट विल बी देव, एंड थर्ड का नहीं नाम पता है।
0: अच्छा, सो या इट्स गोना बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन, बट या लेट्स सी, होपफुली वी गेट सम गुड प्रोडक्शंस आउट देयर। बट अभी तो बस है रामायण को लेकर,
1: रामायण इज गोना बी आने वाले हैं रामायण के साथ।
0: बट एनीवे, टुडे वाज आयान मुखर्जी डे, एंड होप आपने भी उतना एंजॉय किया ये शो जितना हमने आपके लिए, मतलब ये लाते हुए हमने एंजॉय किया। विद दैट वी विल सी यू टुमारो,
1: बाय,
0: हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग, और मिलते हैं बहुत जल्द, बाय।

0: Happy Hour on Hum.
1: Madhur Naini Nar Albe.

वेलकम एवरीवन, नाइट कैफे मिडवीक मसाला में आपका स्वागत है, जहां पर बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें, लेटेस्ट अपडेट, मसालेदार गॉसिप और गपशप हमारे साथ होगी। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं और 12 तक हमारा साथ रहेगा, लेकिन ये सेगमेंट 9 PM तक चलेगा, एक घंटे के लिए। आवारापन 2 बिकम्स इमरान्स हाशमीज बिगेस्ट कमबैक, इस पर जानकारी। सनी देओल और शाहरुख खान का 60 साइलेंस और सयामी खैर ने रिफ्यूज़ किया टू बिकम ए फैक्ट्री मेड बाबी। सोमी अली एंटर्स गोविंद कंट्रोवर्सी। आवारापन 2 टर्न्स नॉस्टैल्जिया इनटू सीरियस मनी। किरण राव ने एक फैमिली पेट को खो दिया है एंड शी इज मोर्निंग हर डेथ। और बॉलीवुड्स बिगेस्ट ग्लोबल स्टोरी पर बातें करेंगे एंड विच मूवी इट इज।

0: तड़का मिडवीक मसाला ऑन हब
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला आप सुन रहे हैं और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं। शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा जो बॉलीवुड न्यूज़ है, अवारापन टू बिकम्स इमरान हाशमीज़ बिगेस्ट कमबैक। ये ह्यूज ओपनिंग वीकेंड इनका रहा है। फिल्म मेड अबाउट 98.1 करोड़ ग्रॉस इन इंडिया इन जस्ट 3 डेज, और ओवरसीज अर्निंग्स को लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 110.1 करोड़ वर्ल्ड वाइड ये फिल्म कमा चुकी है। क्लियर विनर ये रहा है ओवर सनी डियोल्स बंटवारा 1947। वहीं पर बंटवारा बहुत ही बेकार सा परफॉर्मेंस दिखा रही है बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर। आई एम श्योर बिकॉज इट इज़ बिकॉज इमरान हाशमी का फिल्म और उन दोनों का फिल्म क्लैश हुआ। एक फिल्म को तो जीतना था और वो इमरान हाशमी का अवारापन टू रहा है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और भी बॉलीवुड खबरें बहुत ही जल्दी।

0: वेंसडे का तड़का मिडवीक मसाला ऑन हब।
1: एक के बाद एक आपके फेवरेट बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स हम पेश कर रहे हैं, वहीं पर आज मिडवीक मसाला में आपके लिए बॉलीवुड खबरें भी हम लेकर आए हैं। सनी देओल और शाहरुख खान का 16 ईयर साइलेंस पर बातें करते हैं। सनी देओल ने रिविजिट किया द फेमस फ्यूड विद शाहरुख खान ड्यूरिंग डर 1993 के दौरान। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ और दोनों बात करना छोड़ दिया आफ्टर देयर डिसएग्रीमेंट। और सनी देओल नाउ डिस्क्राइब शाहरुख खान मोर एज ए कोलीग देन अ फ्रेंड। और उन्होंने कहा कि इनसिक्योरिटी बिटवीन एक्टर्स काफ़ी बड़ा टेंशन क्रिएट कर सकता है और डिस्कम्फर्ट भी लेकर आ सकता है ऑन फिल्म सेट्स। और यही हुआ है सनी देओल और शाहरुख खान के बारे में, जो 16 साल हो चुके हैं अभी इन दोनों के प्रॉब्लम्स को लेकर। और फिल्म डर 1993 में जो आई थी, तब से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुआ है। इसके अलावा मैं आपको और भी जानकारी देने जा रहा हूँ बहुत ही जल्दी। बॉलीवुड्स बिगेस्ट ग्लोबल स्टोरी क्या हो सकता है, बहुत ही जल्दी इस पर जानकारी।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: You're listening to Night Cafe Midweek Masala जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ Night Cafe Midweek Masala में Bollywood गपशप Bollywood खबरें आप तक हम लेकर आ रहे हैं Bollywood's biggest global story क्या हो सकती है कहा गया है कि धुरंधर द रिवेंज रिपोर्टेडली फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म रहा है जो 1,000 crore रुपीज़ को क्रॉस किया है नेट इन इंडिया द टू फिल्म फ्रेंचाइज ने रिपोर्टेडली जनरेट किया है मोर देन 3,100 crore वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़ा कमाई रहा है इस फिल्म का ये फर्स्ट फिल्म रहा है रिकॉर्डेड 37 मिलियन नेटफ्लिक्स व्यूज बिटवीन जनवरी एंड जून 2026 और इट हैज़ ऑल्सो रीच नंबर वन ऑन नेटफ्लिक्स फिल्म लिस्ट इन 22 कंट्रीज जिससे दिखाया गया है कि बॉलीवुड हिंदी सिनेमा कहाँ कितना दूर तक ग्लोबली फैल चुका है तो ये बिगेस्ट ग्लोबल स्टोरी बॉलीवुड का अगर देखा जाए तो इट इज़ धुरंधर जिसमें रणवीर सिंह ने काम किया है और दोनों मूवी बहुत ही मशहूर रहा है मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी खबरें बहुत ही जल्दी

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: 3, 2, 1, rush! The rush is on at BP. Today only, save 20 cents per litre and get double points on fuel and shop. There's more to score at BP. Scan everyday rewards today and instantly save 20 cents per litre, max 50 litres. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards-rush.
5: Of Bollywood.
6: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
5: Wednesday का तड़का midweek मसाला on Hum.
7: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. रात 12 तक हमारा साथ रहेगा. 9 पीएम तक ये सेगमेंट आपके लिए चलेगा. सोमी अली ने गोविंदा कंट्रोवर्सी में कुछ अपना कमेंट्स पास किया है. सलमान खान फॉर्मर पार्टनर सोमी अली ने पब्लिकली गोविंदा को डिफेंड करते हुए कहा है कि जो गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा का प्रॉब्लम चल रहा है और काफ़ी एलिगेशंस गोविंदा पर लगाया जा रहा है. तो वहीं पर अली ने कहा कि एज शुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट एन एक्टर ट्राइंग टू वर्क. इनका इंटरवेंशन ने अनदर सेलिब्रिटी वॉइस ऐड किया है. इंक्रीजिंगली पब्लिक फैमिली डिस्प्यूट जो हो रहा है अभी गोविंदा और साथ में सुनीता आहूजा के बारे में के को लेकर. बहुत ही जल्दी सयामी खेर ने कहा है कि शी रिफ्यूज टू बिकम ए फैक्ट्री मेड बाबी और किस तरह से बॉलीवुड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ वो कन्फर्म नहीं करेगी. इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं आपको दूंगा.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Midweek Masala jari hai aur hum antim padav par aa chuke hain. Ye last news mein aapke saath share karne ja raha hun from Bollywood. Of course, Bollywood news to aur chalta rahega aapke liye, hum pesh karte rahenge. Lekin Sayami Khair ne kaha hai ki she was pressured during early stages of her career ki unko apna appearance badalna hai. She was asked ki unko apna naturally curly hair ko change karna hai. Lekin inhone instead अपना इंडिविजुअलिटी को रिटेन करने का कदम उठाया और शी सेड शी इज़ नॉट गोइंग टू कन्फॉर्म टू बॉलीवुड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. और ये डिसीजन जो इन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी था फॉर हर आइडेंटिटी एंड करियर और शी डजंट रिग्रेट इट, क्योंकि उनको फैक्ट्री मेड बाबी नहीं बनना है, बॉलीवुड के सर्टन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करना है जो लोग डेडिकेटेडली और रिलीजियसली फॉलो करते आए हैं. इनको अपना इंडिविजुअलिटी पसंद है और आइडेंटिटी खुद अपने तरीके से बनाना चाहती है. बॉलीवुड खबरों में आज के लिए बस इतना ही. अगले घंटे पर मुलाकात होती है.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
6: In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say cero. In New Zealand, zero alcohol Corona, cero, is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona Cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.
7: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Good evening to you. With the latest at 9, I'm Jeff Bryan. Tauranga City Council's Chief Executive Marty Granville says current and former staff are haunted by the missed opportunities to prevent the loss of six lives in January's landslide on Mount Maunganui. An independent review has found that the deaths could, in all likelihood, have been averted. Workers' First Union wants more done to tackle rising levels of abuse and violence against employees. It recently conducted a survey which found understaffed stores were more than twice as likely to see safety incidents. Immigration Minister Erica Stanford has ordered a review into another Ministry of Business, Innovation and Employment IT project, the $330 million Our Future Services program, to make visa processing more efficient. In sport, a rumoured step up for Kiwi Formula One driver Liam Lawson at the Dutch Grand Prix this weekend. Lawson is reportedly back in Red Bull's senior ranks. Isaac Adjar has a wrist injury. Motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty. And a win and a loss now for the Tall Ferns at the pre-Olympic basketball qualifying tournament after losing 56-53 to Brazil.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
9: Night Cafe on Hum.
7: Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
10: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और आपका स्वागत है. आपको बता दूँ कि ग्रैंड थ्री कोना कीर्तन नाइट होने जा रहा है. ओकलैंड भक्ति सत्संग की ओर से ये प्रस्तुति होगी और अचुंदन नायर सिडनी ऑस्ट्रेलिया के हैं, नितिन गाउंडर ओकलैंड के हैं और अश्विन कुमार अप्पा लोटोका फीजी के हैं. ये ग्रैंड थ्री कोना कीर्तन नाइट होने जा रहा है 21 अगस्त को. ये होगा वैदिक सेंटर पापाटोए में. टिकट्स $20 में आप ले सकते हैं और स्पॉन्सरशिप और इंक्वायरीज के लिए आप अश्नील से बातें करें 021-066-7236 पर और 021-558-884 पर भी आप इनको संपर्क कर सकते हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना. अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilyservices.nz पर विजिट करें. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Cafe on Hum.
1: You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Imagine kijiye two countries, one epic adventure, zero stress. Sirf 12 spaces rahe gaye. Bali aur Bangkok getaway with Sandy and Rusbe March 2027 mein hone ja raha hai. Bali ka visit karna, Bangkok mein tuk tuk mein safar karna, majestic temples dekhna, bargains inke colorful market se lena, माउथ वाटरिंग स्ट्रीट फूड का भी मजा लेना, और वहीं बाली में वाटरफॉल्स, वॉकिंग थ्रू ब्रेथ टेकिंग राइस टेरेसेस, स्विंगिंग अबव लश जंगल्स, ये सभी कुछ हो सकता है. तो ट्रेवल विद सैंडी और रिज़बे, ये आपको लेकर जाएंगे ऐसे हॉटस्पॉट्स पर जिसका आपने जिक्र सुना होगा लेकिन कभी आप गए नहीं हैं. इट्स ऑल प्लान्ड, इट्स ऑल इंक्लूसिव. ऑल यू हैव टू डू इज पैक योर बैग्स. अर्ली बर्ड बोनस भी यहाँ पर दिया जा रहा है. अगर आप ट्रिप अगस्त के दौरान बुक करते हैं तो 1 free night अकोमोडेशन कहीं पर भी न्यूजीलैंड में आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर टू. सीट्स लिमिटेड है, बहुत ही जल्दी सीट्स भर जाएंगे. ड्राइव टेक्स करें 5599 पर फॉर दी ऑल एक्सक्लूसिव टूर प्राइस, या सन टूअर्स को कॉल करें 0800 4 Sun Tours, यानी 0800 4 7 8 6 8 6 8 पर, और बिफोर द स्पॉट इज गॉन आपको सिक्योर कर लेना है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
10: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good evening. With the latest at 10, I'm Jeff Bryan. An external review into the Mount landslide tragedy has found systemic failures with how Tauranga City Council managed risk. Multiple reports had identified landslide hazards and made recommendations to mitigate them. The controversial plan to turn a Canterbury golf course into housing has been declined fast-track referral. It follows a community petition of nearly 1,600 signatures. And the case of the so-called mushroom murderer Erin Patterson has been back in court in Australia, appealing her triple murder conviction. Her lawyer argues the fact members of the jury had stayed in the same hotel as a police witness and members of the prosecution undermined the fairness of the trial. In sport, the Formula One rumour mill has Kiwi driver Liam Lawson reportedly back in Red Bull's senior ranks this weekend at the Dutch Grand Prix. Isaac Adjar has a wrist injury. Motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty. And Northland could make Ranfurly Shield rugby history tomorrow. Before becoming Northland, the side played as North Auckland and most recently won the Shield in 1978.
0: Sports News.
10: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
12: वेलकम बैक एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू नंबर वन हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। क्रिश के साथ है। एक एक करके काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें मैं लेकर आया हूँ। रक्षाबंधन प्रमोशन भी जा रही है, जिसमें अपने सिबलिंग की तरफ आप बहुत प्यार बरसा सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं और इनाम भी हमारे साथ होकर जीत पाएंगे, तो इस पर भी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको बस समय सुनते रहना है। क्या कुछ सामाजिक सूचना है, क्या कुछ हमारे आसपास हो रहा है इवेंट्स में, और क्या कुछ फ़ायदेमंद बातें जो है वो भी आपके साथ शेयर होगी, तो इसके लिए बस आप हमें सुनते रहो। न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट तो लेकर आते हैं आपके लिए हर एक घंटे पर टॉप ऑफ द आवर पर, लेकिन उसके बाद तुरंत 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक भी रहता है, जो अमेजिंग सॉन्ग्स का लिस्ट हमारे पास है अभी आपके लिए पेश करने का टाइम आ चुका है। एंजॉय एवरीवन, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, स्वागत है आपका।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: फ्रॉम इंडिया टू मायामी टू द होल वर्ल्ड गो अहेड एंड स्लो इट डाउन गर्ल

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're with Krish on Hum, playing Bollywood's biggest hits. Raksha Bandhan ke dauran aap $300 cash jeet payenge. Hamare Facebook page par jaye. Sibling bonds ko expensive gifts se nahi dekha jata hai ya tola jata hai. In fact, ordinary objects aur extraordinary memories hi hamare liye kaafi hota hai. Jaise old cassette tape ho ya ek shared key ho, stolen t-shirt ho shayad. रक्षाबंधन पोस्ट हमने फेसबुक पेज पर डाला है, हम फेसबुक पेज पर. आप हमारे फेसबुक पेज पर जाए, एक फोटो अपलोड करें ऑफ वन मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट इन द कमेंट सेक्शन. दो तीन सेंटेंसेस आप जरूर लिखें अबाउट द मेमोरी जो इससे जुड़ी है, और टैग योर सिबलिंग. ड्रॉ में शामिल होकर $300 जीतने का मौका है. विनिंग स्टोरी को लाइव रेडियो पर पढ़ा जाएगा ऑन एयर ऑन फ्राइडे 28 अगस्त, और $300 कैश गिव अवे अनाउंसमेंट भी विनर को दिया जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West West side है ना, West side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua West में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's affordable floor makeover sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. T's, fees and credit criteria apply.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
0: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Night Cafe.
8: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। चार या 13 स्टूडेंट्स फ्रॉम ओमिस्टन सीनियर कॉलेज से बातें की गई अनफिल्टर्ड ड्राइव के दौरान। हम पॉडकास्ट आप ज़रूर सुने, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग विद सैंडी एंड रुज़बे। इन चार स्टूडेंट्स फ्रॉम ओमिस्टन सीनियर कॉलेज से जब बातें की गई कि किस तरह से इन्होंने एक स्कूल बिजनेस प्रोजेक्ट को इनटू रियल वेंचर में बदल दिया, जिनका नाम है मनी मेहम। Inspired by fun or competitiveness of the games like Monopoly, Money Mayhem design kiya gaya hai for kids aged 9 to 15 aur unko introduce karte hain to the realities of money or financial decision making through gameplay. किस तरह से ये टीनेजर्स इस आइडिया के साथ आए और किस तरह से इस गेम को बनाया गया है, ऐसा प्रोडक्ट को बनाया गया है और मार्केट किया गया है वाइल दे वर स्टिल एट स्कूल, और किस तरह से ये बोर्ड गेम बच्चों को रियली टीच कर सकते हैं हाउ टू मेक स्मार्टर मनी डिसीजंस, इन बातों पर इन मुद्दों पर बातें होगी इनफैक्ट। और रुज़बे और सैंडी ने बात किया है द टीम बिहाइंड मनी में है और साथ में येस यंग एंटरप्राइज स्कीम से to find out the challenges of starting their first business. So drive, aap text kare 5599 par, full audio aapko mil jayega unfiltered with Sandy and Rusbe. On Rove or Spotify par bhi aapko milega. Saath hi mein breakfast catch up ke liye, few bits and conversations with Vijay aur Pooja ke liye, the breakfast show podcast ke liye, aap BF text kare 5599 par aur link aapko mil jayega. Main Krish aapke saath de raha hun, sunte raho hum.

शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Hum boarding call is now open. Dream Island Escape jeetne ka mauka hai. It could be just one boarding call away. Do return air tickets to Vanuatu with Solomon Airlines plus $1,000 spending money jeetne ka mauka hai. Is tarah se aap enter kar payenge. Aap humko sune every weekday aur apne kaan ko khule rakhe for the special boarding call. 8 a.m. 11 a.m., 1 p.m. और 5 p.m. होगा. जैसे आप ये बोर्डिंग कॉल सुनते हैं, आपके पास 30 मिनट्स है टू हेड टू रोवा एंड एंटर बोर्ड नाउ. दैट्स इट. आपको बस बोर्ड नाउ लिखना है और आप ड्रॉ में शामिल होकर अनफॉरगेटेबल वनुआतू गेटअवे जीत पाएंगे विद सोलोमन एयरलाइंस. और अपना फ्लाइट ना मिस करें, बिकॉज दिस कुड टेक यू टू पैराडाइज थैंक्स टू सोलोमन आइलैंड्स फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतू. आप विजिट कर सकते हैं flysolomons.com पर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम.

0: Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Murphy on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: Welcome back, everyone. You're listening to number one Humpling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इस घंटे पर रक्षाबंधन ऑन एयर प्रमोशन के बारे में जानकारी देंगे. किस तरह से आप अपने सिबलिंग को रिव्यू करके ड्रो में शामिल होकर शानदार इनाम हमारे साथ होकर जीत पाएंगे. साथ ही में आज 19 अगस्त है, अगर आपके जन्मदिन है, वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से. बेस्ट विशेज हमारे ऑनलाइन लिसनर्स, आपको भी याद करते हैं. रोवा लिसनर्स, आपको भी शामिल करते हैं. आपको पता है रोवा सुनने से काफ़ी फ़ायदे आपको होते हैं, तो आप ज़रूर डाउनलोड करें अगर आपके पास रोवा अभी तक नहीं है. म्यूज़िक प्लस स्टेशन भी आप सुन पाएंगे रोवा पर. इस पर भी जानकारी अगर हमारे पास समय रहता है तो आपके साथ शेयर करेंगे. फिलहाल 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूज़िक फॉर यू. एन्जॉय एवरीवन.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं क्या मोड़ आया है कहानी में वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में

0: Bollywood. World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू. आपने जो एक्चुअल वर्क होता है उनका रिव्यू के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने सिबलिंग को रिव्यू करना ये भी एक टास्क है आपके लिए जो हम लेकर आए हैं. थिंक योर ब्रदर और सिस्टर डिजर्व्स अ ग्लोइंग रिव्यू और नीड्स अ सीरियस अप्रेजल. आप कॉल करें जब हमारे साथ ही आपको इन्वाइट करते हैं टू गो लाइव ऑन एयर और ऑफिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू आप उनको दे पाएंगे. रिव्यू में आप उनको मतलब इन चीज़ों पर इंक्लूड कर सकते हैं, बेस्ट और वर्स्ट सिबलिंग एवर, बोरोइंग योर स्टफ़ विदाउट आस्किंग, या हमेशा ट्रबल में होना, या आपका बिगेस्ट सपोर्टर बनना, या आपको अनॉय करना 24/7. आप अपने रिव्यूज़ को शेयर करें और ड्रो में शामिल होकर कैश जीतने का मौका है. 2 लकी विनर्स को $250 ईच दिया जाएगा. 28 अगस्त को ड्रॉ होगा और दो विनर्स को चुना जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: Cafe on Hum.
1: We gotta go. Are you ready?
2: Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
0: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
4: Let's go.
0: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
5: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
7: अच्छा
6: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33

0: Cafe on Hum. You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन इनवाइट कर रहे हैं कम्युनिटी को टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो 22nd और 23rd अगस्त को होगा बर्कनहेड स्काउट्स हॉल में. प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स को इन्वाइट किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट. रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल करें ऑन 021-090-85067 पर. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है कल थर्सडे नाइट, हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए रिदम एंड रोमांस, बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स का संगम हमारे साथ होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखें, कृष का बहुत सारा प्यार, गुड नाइट एवरीवन।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: Clyde on Hum.
1: हेलो बोलो. हेलो दादाजी.
2: हेलो.
1: अरे वाह, फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड.
3: क्या सीन है भाई, कुड़ी पसंद तो नहीं आ गई?

जानी तू टनाटन, मैं धनाधन, मैं दिल में तुझे बसाऊंगा और अपना तुझे बनाऊंगा, लंदन तुझे घुमाऊंगा, वहां पानी पूरी खिलाऊंगा, हनीमून करके आऊंगा, फिर शादी यहाँ बनाऊंगा। मैं रोमियो तू जूलियट, ना समझ तू मुझको इडियट, अरे हाथ छुड़ा कर चली किधर, वो यार मेड।

0: रे शेख चिल्ली,
1: चुप हो जा भूरी बिल्ली।
0: मैं आफत की पुड़िया,
1: तू भोली भाली गुड़िया।
0: मवाली,
1: मैं हीरो,
0: तू पागल,
1: तू जीरो,
0: आवारा,
1: तुम्हारा, समझ गए इशारा।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HAM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HAM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: HAM boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
0: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800 4 NZPMI. Night flight.

0: flight on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
7: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
8: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swad bhi, sehat bhi.
9: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health. Because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
10: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
11: Join our tribe!
10: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
11: join our tribe!
12: The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari koi branch nahi hai.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप. वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
5: दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
9: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा.
10: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल, Chef Alex?
9: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
10: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
9: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
10: 100% authentic and pure as mother's love.
11: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन. प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर, तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए. हरी, विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर, ऑकलैंड.
12: Playing Bollywood's biggest hit.

कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: Attention everyone, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
4: मुझे भी।
3: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
5: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स। सेलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए।

0: flight on Hum.
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
4: अब हमारा क्या होगा
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
2: तो क्या करें
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
7: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
8: पूरे शहर पे कब्जा होगा राज होगा
7: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
9: हम नाइट फ्लाइट

0: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस। क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं उसको.
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुजबे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Playing Bollywood's biggest hit.

0: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
2: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
4: And award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
9: Hum, time check.
10: Good morning, it's 7:06 बज रहे हैं.
9: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Tauranga City Council has been challenged to deliver on 10 recommendations to prevent another Mount Maunganui tragedy. This includes the Chief Executive penning a public report. Mayor Mahi Drysdale says he has until September 1st.
12: Identify measurable indicators of improvement and provide assurance that this event has driven an exhaustive review.
11: A police presence is likely to continue in Hamilton's Rototuna following a sudden death. It was reported yesterday with cordon set up. The death is being treated as unexplained and police say there is no ongoing risk to the public. A global study linking eating disorders with genetics could pave the way for new treatment. Researchers from Otago University helped prove they are not solely psychological. Associate Professor Jenny Jordan says it's a game changer.
13: Medication would be an obvious outcome of this, but that's a little way down the track. First, we need to understand the basics, and this is a really important basic finding.
11: The lawyers for Australian mushroom murderer Erin Patterson are calling for a retrial over a hotel blunder. They say jurors stayed at the same accommodation as the prosecution, police and media, calling it a catastrophic error in such a high-profile case. To motorsport with Megan Turbo's 80,000k tyre warranty, Liam Lawson's back with Formula One team Red Bull. The Racing Bulls driver has been promoted to the senior team for this weekend's Dutch Grand Prix, replacing Isaac Hadjar, who fractured his wrist. Sky Sport UK's Craig Slater is stoked for the Kiwi.
14: It's a nice eventuality for him because he was dropped after a couple of races last year.
11: And Aussie tennis star Nick Kyrgios has been provisionally suspended after testing positive for cocaine.
15: Sports News. brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
16: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस.
17: सूचित किया जाता है कि धन लक्ष्मी राव उर्फ सुबू के पति यानी रानी रेनू और देविका के पिता पापा टोयटोय के आदित्य विक्रम राव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. याद रहे धन लक्ष्मी राव उर्फ सुब्बू के पति यानी रानी रेनू और देविका के पिता पापा टोयटोय के आदित्य विक्रम राव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा.
16: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
15: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
18: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
15: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
0: 4.5 degrees temperature Auckland mein bhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 15, overnight kam se kam 7 degrees rahega. Din ki shuruaat theek thaak hogi lekin baad mein chalkar aaj badal chhayenge aur kabhi kabhar kuch halki barish ki sambhavna bhi hai. It's going to be a very chilly start to the day. Sunrise bas 6:58 AM par, sunset 5:52 PM par hoga.
19: Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
15: Breakfast catch up.
17: Hello, Kia ora. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Filhal 4 minute ho rahe hai, 6 bajkar, aur aaj hai Thursday, 20th of August. Aapko bhi a very good morning.
0: Good morning. And hope aap sabhi aaj bahut badhiya honge.
17: Bilkul, jahan par aaj Thursday, yani ki Brihaspatiwar ki subah ki shuruaat, ek saath hum kar rahe hain on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits, to 104.2 FM, ya Rover app ke zariye agar aap maare saath jude hue hain, sabse pehle to aapke keemti samay साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
0: और आपसे वादा किया था कि आपका साथ देने के लिए वापस आएंगे, तो आगे हैं और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपके साथ रहेगा ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
17: वैसे ब्रेकफास्ट कैचअप में जहां पर खबरों के बारे में बातें करने वाले हैं, तो दुनिया भर में काफी चीजें हो रही हैं और ग्लोबल हेडलाइंस में विल बी गेटिंग सम अपडेट्स ऑन दिस कि अभी फिलहाल व्हाट्स द सिचुएशन लाइक, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ये सारी चीजें आपके साथ हम शेयर करेंगे. एनीथिंग इन पर्टिकुलर दैट यू'ड लाइक टू डिस्कस कीजिए, इसके बारे में बात ही करेंगे.
0: यू नो, 6 महीने हो चुके हैं ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुए और अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि उनका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी अब खत्म हो चुका है. इससे आगे क्या हो रहा है ईरान की तरफ से, यूएस की तरफ से, इस पर डिटेल्स. और इंडिया में 30-year-old एक मुकदमा, इसका क्या नतीजा निकला है, इस पर भी डिटेल्स हम आपको देंगे.
17: सो देयर यू गो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी गोना टॉक अबाउट. और ऑफ कोर्स आपके फेवरेट गानों के साथ साथ काफी तरह के कॉम्पिटिशन्स भी रहेंगे जिसमें आप हमारे साथ पार्ट जरूर ले सकेंगे. कई कॉम्पिटिशन्स में इनाम भी जीतने के मौके. और याद रहे हमारा हम बोर्डिंग कॉल जिसके तहत देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप जीत सके टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुवातु विद $1,000 स्पेंडिंग मनी, ऑल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस. तो ये सारी चीजें होने वाली है आज के सफर में और उम्मीद है कि इसके लिए आप एकदम तैयार हैं.

అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే ఇండియన్ రిధమ్.

0: Sunnyside Up.
1: तो आज की सनी साइड अप स्टोरी जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, ये आपके साथ शेयर करने से पहले आपसे हम कहना चाहेंगे कि इट्स समथिंग दैट यू नो वी हैव एक्चुअली शेयर्ड अबाउट, और इसके बारे में कुछ बातें हमने जो है कि ऑलरेडी की थी ऑन द शो, और आई थिंक वेरी लेस पीपल नो अबाउट दिस स्टोरी, बट अगर आपने इसके बारे में सुना है तो शायद आपको पता होगा अबाउट दिस यंग बॉय जो गलती से गुम गया था. It's like a real story.
2: कहाँ पे?
1: India में.
2: अच्छा.
1: So what happened was कि एक 5 साल का लड़का जो अपने भाई के साथ I think train station पर था, और फिर somewhat some things happened और उसके भाई ने उसको बताया था कि तुम यहाँ से जाना मत, तुम यहीं पे रहना. But unfortunately he fell asleep in a train and then जब जागा तो उसको पता चला कि train चल पड़ी, और वो पता नहीं 15,000 kilometers away from home कहीं पर था. And he didn't realize कि वो कहाँ पे, only 5 years old. So इस तरीके से वो गुम गया. एंड उसके बाद चलकर व्हाट हैपेंड वाज इधर उधर सड़कों पर घूमता फिरता रहता, एंड देन बाद में चलकर उसको एक ऑफनेज में डाला गया था.
2: अच्छा.
1: जहां से उसको ऑस्ट्रेलिया के एक कपल ने अडॉप्ट किया. दिस इज लाइक अ रियल स्टोरी.
2: ओके.
1: ऑस्ट्रेलिया के कपल ने उसको अडॉप्ट किया, और फिर उसके बाद में उसको ऑस्ट्रेलिया लेकर चले गए जहाँ पर वो पला बड़ा, गॉट ऑल द लव, ऑल द एजुकेशन, एंड दैट वन थिंग केप्ट बोदरिंग हिम कि उसका जो एग्जिस्टेंस है, ऑफकोर्स इट वाज नॉट एन इंडियन कपल जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था, तो वेरी एविडेंट कि वो उनकी फैमिली में बायोलॉजिकली नहीं बिलोंग करते. और जब वो बड़े हुए तो उनको बस एक सवाल हमेशा परेशान करती कि उनकी फैमिली कहाँ पर है, लाइक व्हाट हैपेंड, हाउ डिड ही एंड अप एट द ऑर्फनेज, क्योंकि उनको धुंधला धुंधला सब कुछ याद था. 5 year olds don't actually remember a lot of things ना. फिर बाद में चलकर he always felt very restless कि what's the situation like, what has happened and what not, and all of a sudden he decided कि Google Maps पर वो अब ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे भारत में यानी कि इंडिया में उतने बड़े देश में अपना वो छोटा सा गांव ढूंढेगा जहां से वो है. He doesn't remember anything about that place. उसको उस गांव का नाम तक नहीं पता, वो गांव किस शहर में वो तक नहीं पता, किस स्टेट में वो तक नहीं पता. बट ही मेड दैट डिसीजन एंड अपेरेंटली ही स्टार्टेड डूइंग दैट. गूगल मैप्स पर उन्होंने वो करना शुरू किया, एंड देन केम दैट डे जहां पर उनको कुछ फेमिलियर सड़कें वगैरह जो है ये याद आने लगी ऑन गूगल मैप्स आफ्टर ही सॉ इट. एंड जब उन्होंने उस पर्टिकुलर गाँव को लोकेट किया तो उनके मन में बस एक ही सवाल था कि क्या उनकी फैमिली, उनकी माँ और उनका जो भाई है वो अभी भी जिंदा है या नहीं. एंड ही वेंट ऑन दिस जर्नी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया टू दैट पर्टिकुलर गांव टू फाइंड आउट. जब वो अपने गांव पहुंचे उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उनको पहचानेगा भी. एंड अपेरेंटली देयर वाज दिस लेडी इन द विलेज जो उनको पहचान गई जब उन्होंने अपना नाम बताया कि ये मेरा नाम है. एंड देन उस लेडी ने उनको उनकी माँ तक पहुँचाया, एंड ही फाउंड आउट कि उनकी माँ जिंदा है आफ्टर सो मेनी ईयर्स. 5 year old गॉट लॉस्ट 20 something उम्र हो गई थी उनकी, 20 plus something, एंड दैट्स व्हेन ही गॉट टू मीट हिज बायोलॉजिकल मदर जिनसे वो गलती से दूर हो गए थे. एंड दैट्स द टाइम उनको ये भी पता चला कि उनका जो बड़ा भाई है जो उस दिन उनको बोलकर गया था कि कहीं मत जाना ये रहना, आई जस्ट बी बैक, क्योंकि कुछ खाने पीने का कुछ सामान लेने गया था, अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी.
2: And that's so sad.
1: Yeah. But when he found out about his mother और अपने गाँव पहुँचे तो उन्होंने उसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी, एंड ही गॉट बोथ हिज मदर्स यू नो मीट ईच अदर, यस, जो जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था और उनकी बायोलॉजिकल मदर को. तो उनकी बायोलॉजिकल मम ने उनके अडॉप्टेड मदर को बहुत शुक्रिया भी किया कि उनके बेटे को इतना प्यार दिया, इतना एजुकेशन दिया, एक अच्छा इंसान बनाया ना, अपने अपने पैरों पर खड़ा है, सक्सेसफुल है एंड ऑल. फिर उसके बाद में इस लड़के ने एक कहानी लिखी, एक किताब लिखी अपनी अपनी पूरी कहानी की, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मूवी एक
2: कहानी
1: एक सॉरी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टोरी एक मूवी जो है ये बनाई गई थी, एक फिल्म बनाई गई थी. इट वाज समथिंग जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, एंड दिस पर्टिकुलर मूवी रिलीज्ड आई थिंक इन द ईयर 2016. जिसके बाद चलकर 2017 में जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई, लेकिन 2016 में सितंबर में ये TIFF के थ्रू जो है एक फिल्म फेस्टिवल के थ्रू जो है ये रिलीज हुई थी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. एंड बाद में चलकर इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेशन जो है कि मिला था. फिल्म का नाम है लायन. अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर देखिएगा. देव पटेल ने इसमें उस लड़के का किरदार जो ये प्ले किया है.
2: Dev Patel sounds a very familiar name.
1: Yeah, he was in Slumdog Millionaire.
2: Okay.
1: So it's a beautiful story. Reality mein hui hai ye cheez. A beautiful story. Why? Because whatever sad things happen in the life, usko side mein rakhte hue, at the end,

0: NZ. Offer ends August 31st.
1: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
7: Global headlines.
8: सुबह के मुख्य समाचारों में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगभग 6 महीने पहले शुरू हुई ईरान के साथ जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान ने अपनी अग्रेसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाए रखने का ऐलान किया है. तेहरान में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खुमैनी द्वारा सिक्योरिटी लीडरशिप के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ईरानियन बैक्ड ग्रुप्स ने सऊदी शिपिंग और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज कर दिए हैं. ईरान के मिलिट्री लीडर्स का मानना है कि वो यूएस से कंसेशंस लेने के लिए मजबूत स्थिति में हैं, जबकि खमेनी के एडवाइजर मोहम्मद मुखबिर ने चेतावनी दी है कि ये ऑफेंसिव दुनिया के बैलेंस ऑफ पावर को बदल देगा. भारत में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के एक क्लर्क और एक प्यून को ₹20 का घूस लेने के मामले में 30 सालों बाद बाइज्जत बरी कर दिया है, क्योंकि ब्राइब मांगने की कोई ठोस प्रूफ नहीं मिल सका. 1996 के इस केस में कोर्ट ने पाया कि बिना ब्राइब डिमांड के सिर्फ ₹20 की रिकवरी से गिल्ट प्रूव नहीं होता है, और एक स्टूडेंट के बयान में भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस थे. टॉप कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए पेयून की ये बात ज्यादा वैलिड मानी कि अगले दिन ईद होने की वजह से स्टूडेंट ने उसे ₹20 दिए थे. फिजी में लाउ और गामेया में 2 और सस्पिशियस पार्सल्स के कोकेन होने की पुष्टि हुई है, जबकि कल कोरो आइलैंड के एक किनारे पर और सस्पिशियस पार्सल बहता हुआ मिला. पुलिस

0: डिपार्टमेंट के ICP ऑपरेशंस कासियानो वुसोनीवाले वुसोनीलावे ने बताया कि पुराने दोनों पार्सल्स फॉरेंसिक लैब टेस्टिंग में कोकेन पॉजिटिव पाए गए, जबकि नए पार्सल्स को टेस्टिंग के लिए सुबह लाया जा रहा है। इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ प्रथम टेस्ट मैच को 165 रन से जीत लिया है। दोनों देशों के बीच अब अगला मैच जो है 3 दिनों बाद खेला जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच जो है ये शुरू हो चुका है। पहले टेस्ट मैच के पहले इनिंग्स में 22.5 ओवर्स में इंग्लैंड ने 2 खिलाड़ी खोकर 103 रन बनाए। अभी 48.1 ओवर्स में पाकिस्तान 171 रन पर है। इस मैच पर और भी अपडेट्स बाद में चलकर आपको हम देते रहेंगे।
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी घर जाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नेहा कक्कर और साथ में मीका सिंह की आवाजों में आपके लिए आज ये रिक्रिएटेड चैट बस्टर हम पेश कर रहे थे। वैसे तो प्यार किया तो डरना क्या उसी फिल्म का ये गाना ओरिजिनल गाना जो है ये होता है था, लेकिन पागलपंती फिल्म जो 2019 में आई उसके लिए इस गाने को रिक्रिएट किया गया था।
1: पागलपंती। अच्छा, वैसे बॉलीवुड में एक फिल्म की तैयारियां जो है ये चल रही है। इस फिल्म का नाम है प्रेम कीटाणु।
0: प्रेम कीटाणु?
1: हाँ,
0: कौन है इसमें?
1: प्रेम कीटाणु में काम कर रहे हैं वीर पहाड़िया और अपार शक्ति खुराना।
0: ओके।
1: अभी तक इनके बारे में पता चला है। इस फिल्म का क्या बोलते हैं टीजर जो है ये रिलीज हो चुका है और इस फिल्म के साथ आफिया सईद नाम की एक एक्ट्रेस जो है ये बॉलीवुड में अपना डेब्यू
0: कर रही है। हाँ,
1: और अपूर्व सिंह करकी ये इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में राकेश वेदी और निखिल विनय भी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्रेम कीटाणु, प्रेम कीटाणु जो है 3rd October को रिलीज होने को है और ये क्लैश करेगी अजय देवगन के दृश्यम 3 के साथ।
0: इंटरेस्टिंग, तो देखते हैं। एक और दृश्यम 3 जिसने ऑलरेडी अपना एक मार्क बना लिया बिकॉज ऑफ दृश्यम एंड दृश्यम 2, और दूसरी और ये नई फिल्म जिसमें कुछ नए कलाकार और साथ में कुछ जाने माने कलाकार जो है ये दिखने वाले हैं। देखते हैं क्या कमाल कौन सी फिल्म करती है ना
1: जी।
0: फिलहाल चलिए गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आपके आए हैं। जय साई राम, पूजा एंड विजय, हैव अ लवली मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे, साईज ब्लेसिंग्स ऑन ऑल। ये बॉबी मान जी ने सुबह सुबह हमारे पास भेजा है। थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके मैसेज के लिए। और इनके अलावा हमारे पास मैसेज आया है आज मिस्टर मारा माटा का, राम राम, जय साई राम, हैव एवरीवन हैप्पी थर्सडे, हैव अ ग्रेट डे, इन्होंने कहा है।
1: और उसके साथ गुड मॉर्निंग भाई विजय एंड पूजा, सल्लू लिसनिंग आउट फ्रॉम गल्फ हार्बर फंगा पर रोआ, हैव अ ब्लेस्ड डे, आपको भी ये सुबह मुबारक हो।
0: और कृणाल ने गुड मॉर्निंग जो है ये कहा है, साथ में बर्थडे ग्रीटिंग भी आया, तो अगले घंटे जरूर विश करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, राज ड्राइविंग फॉर आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट, एंजॉयिंग योर प्रोग्राम, हैव अ ग्रेट डे।
1: गुड मॉर्निंग एंड नमस्कारम विजय पूजा एंड ऑल लिसनर्स ऑफ हम, हैव अ हैप्पी डे। रविनेश मुदलियार की ओर से मैसेज आया है, रविनेश जी आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर मैसेज।
0: 25 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में। थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आएंगे आज का हमारा पहला सवाल, बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे गेस करना होगा आपको, और बातें करेंगे 20th August के बारे में।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: Get ready.
2: Passengers, stand by. The next humboarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
5: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Hum, accurate traffic.
6: Innovative Interiors, your luxury wardrobe specialist.
7: A high of 16, very cool morning, but should stay mainly fine all day. Into the city, just starting to slow down a little bit on motorways. Still quick, Northern Motorway 16 minutes in from Constellation Drive, half an hour from Silverdale, just slow Constellation to Sunnynook. Northwestern, a little bit of traffic on and off, but 18 minutes in from Massey is fast as well. Southern 22 in from Manukau, 40 from Drury, slow Papakura to Manurewa.
6: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
8: Reliance Ventilation System.
9: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
8: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
9: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
8: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
10: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
11: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
12: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
11: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और 2 और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
12: पर डेवलपमेंट के पैसे
11: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
13: Deal breaking news. Today is the Briscoe's one day sale.
14: That's right, Briscoe's lady, with up to 60% off store wide. Every single aisle is packed with deals. Today only. All stores open late. See online for TCs and store hours.
15: Weeknights you're flat out. And it's leftovers again?
16: Don't settle for meh dinners. Spice things up with HelloFresh.
15: Zesty laksa, viral tacos, or a juicy steak. Ready in minutes. Take back dinner time with HelloFresh.
17: Professional by
9: क्रेडेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
9: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 9846 9934 or search PFSL T's and C's lending and credit criteria apply

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: So, filhal samay ki aur dekhe, it's 22 minutes बाकी हैं और आज है थर्सडे 20th of August. हमने आपको याद दिलाया ना कि अगर आज आपका बर्थडे है हमें जरूर बताइएगा, बिकॉज अगले घंटे हम आपको विश करेंगे. बट बिफोर दैट, आज 20th of August को और क्या कुछ मार्क किया जा रहा है?
3: आज 20th of August को बहुत स्पेशल डे है. टुडे इज वर्ल्ड मस्किटो डे.
2: मस्किटो डे,
3: मच्छरों का दिन है आज. इसके अलावा तमाम और भी चीजें जो है ये मार्क की जा रही है, लाइक इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स और साथ में एक्सेसिबल एयर ट्रेवल डे, ये भी आज मार्क किया जा रहा है. यूनाइटेड स्टेट्स में आज के दिन को रेडियो डे मार्क किया जाता है.
2: okay.
3: कई लोग आज अगर देखें तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें. आपको याद होगा सुधा जी के बारे में कल हमने कुछ बातें की थी. आज एन आर नारायण मूर्ति जी अपनी सालगिरह मना रहे हैं.
2: अच्छा, एक दिन आगे पीछे इनका बर्थडे. अरे बहुत खर्चे होते हैं इनके ना.
3: नहीं खर्चे होते हैं, एक ही टाइम पर निपटा देते हैं,
2: 12 बजे रात को. एक का खत्म होने से पहले, एक का शुरू होने से पहले.
3: और साथ ही में आज रणदीप हुडा, ये भी आज अपना बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. और एक और पता नहीं आपने नाम सुना है या नहीं, जाकिर खान. ये भी
2: हाँ, बहुत पॉपुलर है. मुझे ना ये बहुत पसंद है. वैसे तो लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, ट्रू, हंसाते बहुत अच्छा है ये. बट आई थिंक ही इज मोर लाइक अ फिलोसोफर. ये हंसी हंसी में इतनी गहरी गहरी बात कर देते कभी कभी, एक्चुअली मेक्स यू थिंक एंड अप्रिशिएट लाइफ अ बिट मोर. सो ये आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें. आपको पता है ना इनके पिता बहुत ही कमाल के म्यूजिशियन है, तबला वादक है.
3: नहीं,
2: बहुत अच्छा तबला बजाते वो, और इन्होंने सितार जो है ये बजाना सीखा है. इट डजंट डू इट प्रोफेशनली बट या ही डज प्ले. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम जाकिर खान, देट इज Are we talking about the same Zakir Khan?
3: हाँ, comedian.
2: हाँ, then सही है.
3: वो आज अपना birthday celebrate कर रहे हैं. जैसे हमने कहा, आपका भी है कोई जो अपना birthday celebrate कर रहा है, so अपने messages हमारे पास आप जरूर भेजे 5599 पर.
2: Right, तो चलिए आज Bollywood movie of the day आपको guess करनी है. और आज की Bollywood movie of the day जो है ये आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जिसे आपको guess करना है और बताना है कि ये movie कौन सी है. मैं आपको दूंगी एक plot, बट आपको उसके बेसिस पर अनुमान लगाना होगा विदाउट मी गिविंग यू अ लॉट ऑफ डिटेल्स. तो ये जो फिल्म है, इस फिल्म में एक मैरिड कपल जिनका रिलेशनशिप थोड़ा ऐसे डामाडोल हो रहा है, दे डिसाइड कि वो एक हिल स्टेशन पर जाएंगे इन द होप ऑफ सेविंग देयर मैरिज. बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पीस, जो वाइफ है इस कपल में वो दरअसल कुछ स्ट्रेन विजन्स और मिस्टीरियस साउंड्स वगैरह जो है ये एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है होटल में. She soon realizes कि कुछ supernatural चीज़ें जो है connected है इस पूरी situation से.
3: okay.
2: And हो सकता है कि कोई आत्मा वात्मा है जो उससे communicate करने की कोशिश कर रही है. As the husband initially struggles to believe कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे उनकी past से related एक बहुत ही secretive चीज़ जो है ये सामने आ जाती है.
3: okay.
2: एक mysterious death, एक haunting presence और एक शॉकिंग कनेक्शन बिटवीन द कपल एंड दैट पर्टिकुलर स्पिरिट, जो बहुत ही जल्द इनकी सच्चाई जो है ये सामने लाती है. ये कौन सी फिल्म हो सकती है? मैंने ये फिल्म देखी थी. मैंने ये फिल्म देखी थी और मेरी तो हालत खराब हो गई थी इस फिल्म को देखने के बाद. जिसके बाद आई डिसाइडेड कि मेरे को ऐसी फिल्में देखनी ही नहीं है. क्यों देखूं मैं, क्यों पागल हूँ क्या मैं, मतलब ऐसी फिल्में देखूं पहले और फिर घटिया घटिया चीजें इमेजिन कर रात भर सोना. तो वो एक सिचुएशन मेरे साथ हुआ था. बट दिस वॉज वन ऑफ दोज बॉलीवुड मूवीज जिसके बारे में कह सकते हैं स्केरी मूवीज का जो दौर है वापस से इस पर्टिकुलर फिल्म ने शुरू किया था.
3: अच्छा,
2: मैं क्लू दे रही हूँ ना.
3: इतने सारे क्लूज मिल चुके हैं और
2: पुरानी मंदिर नहीं है ये, मैं ये बता दूं.
3: नहीं, पुराना मंदिर.
2: हाँ, पुराना मंदिर नहीं है ये.
3: हाँ.
2: मैं ये बता दूं अगर कोई पहले से यही जवाब सोच रहा हो या पापी गुड़िया सोच रहे हो क्योंकि ये फिल्म हमने देखी हुई है, बट इट्स नॉट दोज मूवीज. कौन सी फिल्म हो सकती है?
3: तो अपना जो जवाब है अब भेजे हमारे पास BF, अपना आंसर और अपना नाम.
2: डबल फाइव
3: क्या
2: मतलब डबल फाइव डबल नाइन पर आपको सेंड करना है हमारे पास. देखते हैं कि क्या कोई आज की बॉलीवुड फिल्म पहचान पाता है या नहीं. एक कपल है जिनकी शादी में जो रिश्ते हैं उनके कुछ ख़राब हो रहे हैं. दे डिसाइड कि वो हिल स्टेशन पर जाएंगे, थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे इन द होप्स ऑफ सेविंग देयर मैरिज. बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पीस, जो वाइफ है वो सुपरनेचुरल चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है द होटल दे स्टे. सोन उसको इस बात का एहसास होता है कि शायद कोई आत्मा है जो उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बातें करने की कोशिश कर रही है. द हस्बैंड विल बिलीव इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें सामने आती हैं जिससे एक मिस्टीरियस डेथ रिवील होता है, कुछ हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं और एक बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है बिटवीन द स्पिरिट एंड द कपल. कौन सी फिल्म हो सकती है? बी एफ यू आंसर यू नाइन 5599 पर बताएं. देखते हैं आप में से कितने लोग आज की बॉलीवुड मूवी पहचान पाते हैं.
0: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI. Your

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chupo jao, papi ho. Chupo jao. Ladies and gentlemen.
0: Unfiltered with Sandy and Rispe. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
2: Raja, mantri, chor, sipahi, sabhi aate hain.
0: Unfiltered with Sandy and Rispe. On Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
3: Hum, accurate traffic.
4: Fly Solomon Airlines.
5: A beautiful day coming after a chilly start. Fine and 16 hour high into the city. Southern motorway starting to slow. We've got a slow period from Papakura through to Papatoetoe. Maybe about Ellerslie as well. 26 minutes Monaco to the city. Northwestern 22 and from Massey. We're slow from Greyland to the CBD and building overall. Northern 22 and from Constellation. Slow there to Milford and at Esmond.
4: Auckland to Vanuatu from $925 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
6: Mover, tools, bikes. Ya fir sab kuch rakhne ke liye space chahiye? Find shed loads at Mytaton Mega Westgate and Henderson. Garden or lifestyle sheds ki great range ke saath apna perfect storage solution sort kare. Aaj hi baat kijiye with the team at Mytaton Mega Westgate and Henderson.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
8: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercenter, Cavendish Drive, Manukau.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, where your kids will learn in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, this is always you. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. So don't wait. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzoras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Breakfast Catch-Up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
10: Throwback ki baari aayi hai aur aaj ka throwback aapke naam karne se pehle let's have a look at the messages jo hamare paas abhi tak aaye hain na.
11: Krish hai, saath mein Sandeep hai, 3022-6602, Sandeep, 8407, Devika hai, Jessica hai, Fiza hai, Tanha hai, inhone bhi apna jawab bheja hai. Good morning to you both, 7508, aapne bhi apna naam nahi likha hai.
10: अच्छा तो कुछ लोगों ने नाम लिखा है कुछ लोगों ने नाम नहीं लिखा है आंसर्स जो है ये आपके आए हैं हमारे पास उसके लिए थैंक यू सो मच इधर चलिए हमने आपसे जो सवाल पूछा है बॉलीवुड मूवी आज की पहचानने के लिए उसके लिए कुछ अलग अलग आंसर्स भी काफ़ी आए हैं कुछ लोगों ने हमारे पास साया ये लिख कर भेजा है इस फिल्म के गाने बड़े खूबसूरत थे बाय द वे
11: साया के
10: हाँ
11: अच्छा
10: ये जोन अब्राहम और आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एक्ट्रेस तारा शर्मा मेरे ख्याल से थी
11: Yeah, she was a very good actress.
10: हाँ, was नहीं है. अभी यह active नहीं है.
11: हाँ.
10: But आपने देखी है फिल्म?
11: ना.
10: नहीं देखी है. इस फिल्म के गाने मुझे सच में बहुत पसंद हैं. तो 2003 में मेरे ख्याल से फिल्म आई थी. तो उसमें थोड़ा बहुत similar concept नहीं. I don't think so. But the supernatural bit I can say कि थोड़ा था. Not that much. जितना कि ये फिल्म जो है आज की हमारी Bollywood movie उतना नहीं था, but था. लेकिन कुछ लोगों ने जबकि ये फिल्म का नाम लिखा है एंड हमारे पास और भी मैसेजेस जो है ये आए हैं तो आपने कभी अब जवाब जो अपने भेजे हैं अभी क्या करना है जवाब यहाँ पे बताना है सही वाला कि थोड़ा और टाइम देना है
11: थोड़ा सा टाइम दे देते ना, ऐसा क्यों कर रही हो?
10: ठीक है, ऐसा करते हैं हम आपको जब तक की थ्रोबैक प्ले हो रहा है तब तक का टाइम और देते हैं। अगर आप भी, आपको भी लगता है कि फिल्म का नाम आज का हमारा साया है, तो आप अच्छे से सुनिए और दोबारा से अपना आंसर दीजिए। आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे में क्या होता है कि ये जो मूवी है ये एक मैरिड कपल के बारे में है जो अपनी शादी में कुछ यू नो डिसएग्रीमेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। टू मेक द रिलेशनशिप बेटर दे डिसाइड टू ट्रेवल टू अ हिल स्टेशन, जहाँ पर एक होटल में ये रहते हैं। द वाइफ है वहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है। बाद में चलकर उनको पता चलता है कि देर इज़ अ स्पिरिट ट्राइंग टू कम्युनिकेट, और इस स्पिरिट का इनके साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन है।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 1.5 डिग्रीज अभी आप फील कर रहे हैं, आज का है 15 ओवरनाइट, कम से कम 7 डिग्रीज। मौसम ठीक ठाक शुरुआत होगी, कुछ कुछ जगह पर फ्रॉस्ट आप एक्सपीरियंस करेंगे, बाद में चलकर बादल छाएंगे, कुछ हल्की बारिश हो सकती है। सनसेट 5:52 पीएम पर होगा।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.

0: Kia ora, good morning, namaste and welcome to Hum playing Bollywood's biggest hits. Filhal 4 minute ho rahe hain 7 bajkar hamare studios mein aur aaj Thursday 20th of August ki subah jahan par morning madness aapke liye hum lekar aa rahe hain. To aaj humne pichle ghante aapse kaha tha na Bollywood movie pehchanne ke liye आगे बढ़ने से पहले मतलब जो और चीजें हैं इसके बारे में बातें करने से पहले आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे रिवील करते हैं. सबसे पहले तो एक गुड मॉर्निंग मैसेज भी आया था 7508 आपकी ओर से, थैंक यू फॉर दैट. और आपने फिल्म का नाम गेस किया बॉबी मान जी, हर सुबह हमारे साथ ऐसी कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा ले लेते हैं. तो इन्होंने भी कल भी बताया था, कल इनका जवाब सही था, आज भी इनका जवाब सही है तो इन्होंने भी पार्ट लिया. रेशमी ने अपना जवाब भेजा, हरमिला फाइनली वन शॉट एंड ही गॉट द आंसर करेक्ट.
1: ओके एंड अविनाश पापाकुरा से थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए, आपके आंसर के लिए जो आपने भेजा है हमारे पास.
0: तो आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे वाज द मूवी राज जो कि आई थी 2002 में. डिनो मौर्या, बिपाशा बासु, मालिनी शर्मा, शी वाज द स्पिरिट इन द मूवी. और ये जो एक्ट्रेस है इस फिल्म से बहुत पॉपुलर हुई थी. अनफॉर्चुनेटली इसके बाद में चलकर इन्होंने ज़्यादा फिल्में की नहीं, बट दैट वन अदर पर्सन हु गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन इन दिस मूवी वाज आशुतोष राणा. उनका एक सीन है इस फिल्म में जो देखकर ना हालत खराब हो गई थी मेरी.
1: अच्छा.
0: हाँ, सो दिस इज द मूवी राज. अगर आपने नहीं देखी, 2002 में आई थी, कभी अगर आपको हिम्मत हो देखने की तो ट्राई कीजिए. आपने देखी है?
1: देखी होगी, अब कौन याद रखता है.
0: वो भी चीज है. एनीवेज, तो आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे काफी लोगों ने गेस की, थैंक यू सो मच. आफ्टर सम क्लूज वी होप इट वाज फन फॉर यू टू गेस, बट राइट नाउ आपके लिए एक बड़े फन खबर लेकर आए हम. ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए फन हो, कुछ लोगों के लिए थोड़ा क्वेश्चनेबल भी हो सकता है, बट ऑन दिस नोट वील ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट आर योर व्यूज आल्सो ऑन दिस आफ्टर शेयरिंग इट. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट जो है ये लगता है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वियतनाम में. और ये जो मार्केट है ये हर साल 26th एंड 27th डे ऑफ थर्ड लूना मंथ में लगता है, विच इज रफली जो अप्रैल या मई महीने में होता है.
1: हाँ, ठीक है. हाँ, मार्केट लगता है नॉर्दर्न वियतनाम में.
0: हाँ, और ये मार्केट जो इसकी खास बात क्या होती है कि यहाँ पर जो लोग हैं इसका हिस्सा बनते हैं, इट्स कॉल्ड द खाओ वेई लव मार्केट. और इस लव मार्केट में ये यूनिक कल्चरल फेस्टिवल जहाँ पर लोग जाते हैं अपने एक्स लवर्स से मिलने के लिए.
1: क्यों?
0: बस ऐसे ही मिलने के लिए, मिलने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए एंड यू नो बातें करने के लिए. इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस पीपल हु हैड क्वाइट गुड रिलेशनशिप्स प्रोबेबली दे माइट गो.
1: हाँ, वैसे तो नहीं जाएंगे ना.
0: जिनके बहुत बुरे हालात में रिश्ते खत्म हुए हैं वो कौन जाएगा. बट जैसे कि अगर यू नो एक्स लवर्स जो शायद एक दूसरे से यू नो अच्छा खासा रिश्ता था,
1: दोस्ती है,
0: हाँ, नहीं शादी नहीं हो पाई उनके साथ, बट दे स्टिल हैड दैट फीलिंग फॉर देम, किसी और से शादी हो गई तो वो यहाँ पर जाते हैं. एंड इन सम केसेस द हस्बैंड एंड वाइफ जो है ये दोनों एक साथ जाते हैं, बट दे सेपरेटली मीट देयर एक्स लवर्स विदाउट एनी जेलसी.
1: अच्छा.
0: या सो दैट्स द होल थिंग, दे स्पेंड टाइम, दे शेयर मील्स, दे लिसन टू फोक सॉन्ग्स और फिर बाद में जब द फेस्टिवल फिनिशेस दे गो बैक टू देयर ओन लाइव्स. तो ये एक फेस्टिवल है जो बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट होता है वियतनाम में. I don't know, as I said, कि मेरे ख्याल से तो शायद यही है कि अगर रिश्ता अच्छे नोट पर खत्म हुआ हो तो कई सिचुएशन में इवन आफ्टर द रोमांटिक रिलेशनशिप फिनिशेस एक नया रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप ये बिल्ड हो जाता है. बट इन सम केसेस जो करंट पार्टनर्स होते हैं वो शायद इस रिश्ते से ज्यादा खुश ना हो, कंसिडरिंग कि वो एक इक्वेशन रहा है पास में ना. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कि सब कुछ ओपन में है, सब कुछ सामने है. The current partners are aware of it, their partners are going to it, या फिर खुद उनके partners जो ये भी जाते हैं, इस festival का हिस्सा बनते हैं. And some people say it's a good exercise also of you know getting rid of those feelings and stuff. पर कुछ मामलों में what if अगर जो emotions हैं वो वापस से जाग गए तो, feelings वापस से जाग गई तो.
1: नहीं, मेरे पास इसका जवाब नहीं है.
0: I don't know, what are your thoughts? What do you guys have to say about this? अगर आपको कभी ऐसे market में जाने का मौका मिला to meet your ex, you know, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, would you go?
1: Nah.
0: You won't go?
1: Nah.
0: What about you? क्या आप जाना पसंद करेंगे ऐसे किसी मार्केट में, just to spend time, talk to your ex, you know, share some talking moments with each other, folk गाने जो वहाँ पर सुनना, but after that go back into your own lives, वो वाली चीज. Do let us know what are your thoughts on this. And as I said कि ये northern district of Vietnam में हर साल होता है as a grand festival जिसे यहाँ पर celebrate भी किया जाता है.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: She likes to drop it low, man.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Tubo jao, papi ho. Tubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: तो राशि वाइब्स आपके लिए, मतलब आज का दिन कैसा बीतेगा आपके लिए ये हम बताते हैं. लेकिन उससे पहले जो सवाल हमने पूछा था अबाउट दिस पार्टिसिपेशन इन खाओ वाई लव मार्केट, अगर आपको कभी मौका मिला तो वुड यू डू दैट, तो हमारे पास एक मैसेज है, इन्होंने कहा डेफिनेटली नॉट. पूजा, किसी ने लिखा है फॉर श्योर आई विल बी हैप्पी टू मीट हर, ये इन्होंने कहा
3: पाल पाल.
2: मैंने इनका नाम नहीं बताया था ना.
3: अरे उन्होंने लिखा है ना.
2: हाँ, नाम लिखा है शायद हमारे लिए लिखा होगा, बट एनीवेज या सो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली बिकॉज अच्छे रिलेशन, आई मीन अच्छे नोट पर रिलेशनशिप फिनिश हुआ होगा ना. बट एंड अभी आगे बढ़ते हुए दिन कैसा रहेगा आपके लिए पाल, अभी पता करते हैं.
3: मेष यानी एरीज आज कहा जा रहा है कि काम पर काफी एनर्जेटिक रहेंगे और काफी रफ्तार से काम करेंगे, विच विल मेक एवरीवन वेरी हैप्पी. जो हिस्से में आप काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उससे फायदा रहे. रिस्क भरा कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा होगा.
2: वृषनि टॉरस, आपके लिए कहा गया है कि मेहनत जो आप कर रहे हो स्पेशली अपनी नौकरी के मामले में, इसका एक पॉजिटिव प्रभाव जो है ये दिखाई देगा. व्हाटएवर हार्ड वर्क यू पुट इन, तो इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखेगा, एक इन्फ्लुएंस दिखेगा, एंड इट विल बी समथिंग दैट यू विल बी हैप्पी विद टुडे. बिजनेस में कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप में कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं, बातचीत चल रही है इस मामले में, तो ये फ्यूचर में चलकर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है. कीप द वर्क गोइंग, मन की बात मन में रखे आज के दिन.
3: मिथुन यानी जेमिनी, नेटवर्किंग और मीटिंग के जरिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है. जो लोग मार्केटिंग, सेल्स या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा है. कुआरे लोगों को शादी के लिए कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं और मेंटली आज काफी बिजी रहेंगे आप, और इसकी वजह से कुछ टेंस्ड सिचुएशंस भी हो सकती हैं.
2: वैसे आज करके ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि बड़े बड़े फाइनेंशियल रिस्क से आज आप बचने की पूरी कोशिश करें, स्टे अवे फ्रॉम इट. और पैसों का जो यू नो सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जो परवाह आप कर रहे हैं, ये आपके लिए सीमित रह सकती है आज के इस दिन. दूसरी ओर ये भी बताया गया है कि काम के मामले में थोड़ी ज़्यादा मेहनत आज आपको करनी पड़ सकती है, और साथ में थोड़ा आप अपसेट हो जाते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं, आप इतना एफर्ट लगा रहे हैं बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आज शायद वापस ये फीलिंग आप में आए. पर एडवाइजेबल इज़ नॉट टू बी टू निराश, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बेनिफिट्स, कुछ फ़ायदे आपके हाथ लगने में थोड़ा समय जो है ये लगे.
3: सिंह यानी अलियो, आज लीडरशिप क्वालिटीज आपकी निखर कर सामने आएगी, हालांकि काम का काफ़ी प्रेशर रहेगा आप पर. बिजनेस हैं तो यू नो जो बिजनेस के फाइनल डिटेल्स है उस पर ध्यान दें. बिजी रहेंगे जिसकी वजह से हो सकता है अपने पार्टनर को आप टाइम ना दें, और इसकी वजह से थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं आप.
2: कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी और भी ज़्यादा मजबूत होगी, और ये बहुत अच्छा समय है, आपने अपने हेल्थ पर इतना इन्वेस्ट किया है, यू विल सी गुड रिजल्ट्स टुडे. वैसे आपके लिए ये भी कहा गया है कि कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ सकती है, या फिर प्रोग्रेस जो है प्रोफेशनल लाइफ में, ये भी आज शायद आप नोट करें.
3: तुला यानी लिब्रा, कोलीग्स के साथ अगर कोई बातचीत कर रहे हैं, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, ताकि कोई गलत फहमी ना हो. यू नो आप बहुत ही शांत व्यवहार वाले इंसान हैं, और इसकी वजह से आपके रिश्ते जो है काफ़ी मजबूत रहेंगे. और खर्चों में जो या एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंस प्रायोरिटी है, इसका ख्याल आपको रखना चाहिए.
2: मिश्रिक ने स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि नौकरी के मामले में आत्मविश्वास बढ़ेगा, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो है ये बढ़ेगा आज. और आपके लिए ये भी बताया गया है कि बिजनेस में कुछ पुराने यू नो चीज़ें हैं, ये पुरानी चीज़ें जो आपने की थी उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है ये आज आपको मिल सकता है. पारिवारिक मतभेद जो है ये सुलझेंगे, एंड फाइनली यू विल फाइंड सम पीस.
3: धन यानी सेजिटेरियस, आज कोई ट्रेनिंग वगैरह के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, बिजनेस में सक्सेस हासिल करेंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक ठाक ही होगा.
2: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं आज, और इनसे अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो इसकी वजह से नुकसान होगा, इसीलिए टेक द चैलेंज हेड ऑन और उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करें आप. आज आपके लिए ये भी कहा गया है कि रिश्ते के मामले में कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप

0: के मामले में खास तौर पर अगर किसी को आप उधार दे रहे हैं, थोड़ा केयरफुल हो जाए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी रिस्की एंड आपको सोच समझ कर ये चीज़ें करनी चाहिए। आज आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि सेहत आपकी जो है ये थोड़ी गड़बड़ा सकती है, इसीलिए पे अटेंशन टू योर हेल्थ। सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स। उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ आपको हम ये भी याद दिला दें कि थोड़ी देर बाद आपको विश करने वाले हैं हैप्पी बर्थडे, और अगर अभी तक आपने ग्रीटिंग्स नहीं भेजे अपने तो भेज सकते हैं 5599 पर। प्लस अगले घंटे यानी 8 AM to 9 AM के बीच क्या होगा,
1: क्या होगा?
0: हम बोर्डिंग कॉल स्पेशल कॉल बजेगा।
1: हाँ वही, मैं उसी के बारे में सोच रहा था।
0: अच्छा, अभी बोले क्या होगा? तो जब स्पेशल बोर्डिंग कॉल बजेगा तो क्या करना है?
1: तो सुनना है उसको,
0: और फिर
1: उसके बाद भागो रोबा पर।
0: हाँ, वहाँ पे जाके क्या करें?
1: टाइप करो बोर्ड नाउ और सबमिट कर दो।
0: एग्जैक्टली, सो कीप लिसनिंग फॉर द स्पेशल बोर्डिंग कॉल जो आपके लिए अगले घंटे होगा।
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
4: Attention everyone, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं, और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
5: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
4: क्या आपकी

0: sibling ko milna chahiye ek zabardast appraisal. Raksha Bandhan on Hum, brought to you by Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Centre. Mover, tools, bikes, या फिर सब कुछ रखने के लिए स्पेस चाहिए? Find shed loads at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson. Garden और lifestyle sheds की great range के साथ अपना perfect storage solution sort करें. आज ही बात कीजिए with the team at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson.
1: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए हरी विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड
2: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
3: Deal-breaking news. Today is the Briscoe's one-day sale.
4: That's right, Briscoe's lady. With up to 60% off store-wide, every single aisle is packed with deals. Today only. All stores open late. See online for TCs and store hours.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
8: Celebrity Alarm. Hit it.
9: Yes, finally, celebrity alarm की बारी आई है on the breakfast show with Vijay and Pooja और आज की celebrity की आवाज के साथ I'm all set, all ready and very hopeful कि आज की जो celebrity इनको पहचानने में आपको होगी दिक्कत
10: अच्छा दिक्कत होगी
9: हाँ इसीलिए very hopeful see that's the whole point ना
10: अगर obviously that's the whole point
9: हाँ अगर हम आसान voice रखेंगे तो मजा क्या है उसमें जैसे कोई ना कोई guess कर ले वो

0: हो जाता है कि वो आवाज हम फिर नहीं लेकर आ सकते, लेकिन अगर एक आवाज मेरे को ना एक ऐसा मोमेंट चाहिए सेलिब्रिटी लैब में कि एक आवाज एक हफ्ते तक हम लेकर जाए और कोई नहीं पहचान पाए।
1: मैं ऐसी एक आवाज आपको दे सकता हूँ।
0: अच्छा हाँ। अभी
1: ना।
0: अच्छा कल काम कीजिएगा आप इस पे।
1: ना कल नहीं, जब मूड होगा तब।
0: चलो आज की जो सेलिब्रिटी है उनकी आवाज पहले मैं आपको सुना दूं, सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली।
2: आई थिंक रिटायरमेंट इज समथिंग दैट्स सुपर अर्नड एंड दैट पीपल वर्क रियली हार्ड फॉर एंड मे बी हैवंट वर्क्ड हार्ड एनफ, बट आई जस्ट फील लाइक I'm at an age where I definitely have a lot more to give and there's a lot more that I want to do and
0: तो ये कौन है आज की हमारी सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म जिनकी आवाज हमने आपको सुनाई? You just have to guess. अगर नाम आपने पहचान लिया तो फिर आपको हमारे पास इनका नाम अपने नाम के साथ टेक्स्ट करना होगा, BF space your answer space your name.
1: इस तरह से अगर मेरे सामने ये आवाज आए तो
0: नहीं पहचान पाएंगे ना आप।
1: साल लग जाएगा।
0: साल लग जाएगा।
1: हाँ, फिर भी नहीं पहचानूंगा मैं।
0: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग।
1: बगैर कोई क्लू के तो मेरे से तो नहीं होगा।
0: जरा भी नहीं होगा।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: चलो एक बार फिर मैं सुनाती हूँ आप सबको, अच्छे से सुनिएगा कौन है ये, क्या लगता है आपको?
2: आई थिंक रिटायरमेंट इज समथिंग दैट्स सुपर अर्नड एंड दैट पीपल वर्क रियली हार्ड फॉर एंड मे बी हैवंट वर्क्ड हार्ड एनफ, बट आई जस्ट फील लाइक I'm at an age where I definitely have a lot more to give and there's a lot more that I want to do and
0: तो जल्दी से अपने आंसर्स अपने नाम के साथ BF लिखकर हमारे पास भेजें on 5599.
3: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में नेशनल रोड कैरियर्स एसोसिएशन ने इलेक्शन कोल्स के तहत $59 बिलियन के सप्लाई चेन सेक्टर को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्टर ऑफ सप्लाई चेन अपॉइंट करने की मांग की है। एसोसिएशन के चीफ जस्टिन हम्बर्स ने ऑस्ट्रेलिया और यूके का हवाला देते हुए कहा कि न्यूजीलैंड में रोड्स, रेल, पोर्ट्स और एनर्जी सब अलग अलग पोर्टफोलियोज में बनते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन की कमी है। इनके अलावा एसोसिएशन ने स्मार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, टफर सेफ्टी रूल्स, फ्यूल सिक्योरिटी और ट्रक ड्राइविंग को स्किल्ड वर्क के रूप में मान्यता देने वाली इमिग्रेशन पॉलिसीज की भी मांग की है। सेंट्रल क्राइस्टचर्च के लेटिमा स्क्वायर और ब्रिज ऑफ रिमेम्बरेंस इलाकों से कई पीतल के मेमोरियल प्लाक्स चोरी हो गए हैं। क्राइस्टचर्च मेट्रो कमांडर सुपरिटेंडेंट लाइन टोड ने बताया कि ये चोरी 11 और 12 अगस्त के बीच हुई है। पुलिस ने मामले की जांच के सिलसिले में एक शख्स की फोटो जारी करते हुए आम जनता से जानकारी की मांग की है। OFC चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स कल खेले गए। ऑकलैंड सिटी की जीत फिजी के रेवा के खिलाफ 3-1 से हुई, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल कोस्ट ने गैलेक्सी FC को 3-2 से हराया। फाइनल का खेल इसी शनिवार को 3 बजे फिजी में ऑकलैंड सिटी और सेंट्रल कोस्ट के बीच खेला जाएगा। NRL का एक मैच आज 9:50 PM पर मेलबर्न स्टॉर्म और पेनरिथ पैंथर्स के बीच खेला जाएगा। इस वीकेंड पर वॉरियर्स टीम रैबिटोस का सामना करेगी। उनका यह मैच शनिवार की रात 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर NPC के मैचेस के अंतर्गत आज रात 7 बजे कैंटरबरी और नॉर्थलैंड के बीच एक जबरदस्त मैच होने को है। इस मैच पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunko, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: Final call for hump passengers. Your chance to escape to paradise is coming soon. Woo! Listen for the next boarding call and you could win 2 return air tickets to beautiful Vanuatu with Solomon Airlines and $1,000 spending money.
3: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Accurate traffic.
5: Curtain Studios birthday sale. Up to 50% off selected ready-mades.
6: A cool morning, a fine day, a high of 16 degrees. Northern Motorway, 22 minutes. Constellation Drive to the city, 42 from Silverdale. Slow at Silverdale, heavy at Constellation, slow patches to the bridge. Northwestern, half an hour in from Massey. Slow on and off there to the city. Heavy spots, Point Chef to St. Luke's. Southern, 37 in from Monaco. Slow Papakura on and off to the city. Heavy at Ellerslie. Southwestern, slow northbound at Whitty.
5: Huge savings store-wide. Visit Curtain Studio today.
7: Oh, I was just overtaking someone, officer. Could have only been a couple of k's over. But just for a second to get round them, you know? You're not going to ping me for that, are you? Surely just a warning. I've never even had a...
8: crash involving 3 injured parties. Reported speeding vehicle collided with an SUV at an intersection. 2 victims, stat 1. We've lost the driver. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
9: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2MONTHS. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
10: Make your space your own for lease at Mitre 10. Save $150 on a Robinhood 60cm dishwasher, now $449. And conquer the clutter with 30% off JobMate heavy-duty storage boxes. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
11: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
12: And if you're just joining us after the break, we're talking about... holy... $10 deals on Uber Eats? Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
13: Harrington
0: Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
2: The beat of Bollywood.
13: World's best, हमारी कोई branch नहीं है.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Birthday greetings.
14: Iska birthday, bhai?
15: Mera bhi birthday, chalo line mein aa jao.
14: Happy birthday to you.
1: आज सबसे पहले सतीश कुमार सिकरी जी हिल्सबरा में अपनी सालगिरह मना रहे हैं और हरमिंदर कौर डॉली फ्लैटबुश में आज आपका बर्थडे है. आप दोनों को ये स्पेशल डे बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.
16: और इसके साथ साथ आज हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं हम सानवी को. अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं सानवी, हैप्पी बर्थडे, यू आर टर्निंग 15 टुडे. तो आज आपके स्पेशल डे पर आपको ढेर सारा प्यार मिल रहा है. पापा है सुनंदो, मम्मी है आपकी पायल और प्यारी सी छोटी बहन ने आपकी आशवी, इनकी ओर से भी ढेर सारा प्यार. हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. सानवी हम विश कर रहे हैं.
1: और आज मिवान 6 साल के हो रहे हैं. अ वेरी हैप्पी बर्थडे. मेरे ख्याल से कृणाल के बेटे हैं ये, आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. सो मिवान, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.

0: is true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
1: 20 मिनट बाकी इस समय हमारे स्टूडियोज में 8 बजने में आज ही थर्सडे 20 अगस्त और आपके लिए आज का जो सेलिब्रिटी अलार्म ये हम लेकर आ रहे हैं. आवाज़ हमने सुना दी है, मैसेजेस भी हमारे पास आ गए हैं. सनी बिंग द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमारे पास अपना आंसर भेजा, फॉलोड बाय नेहा, जिसके बाद नजू का आंसर आया है, नीत ने जवाब भेजा है, सोनल गुप्ता का आंसर आया है, नम्रता पाटिल इन्होंने भी अपना मैसेज भेजा है, एंड देयर समवन जिन्होंने एक मैसेज भेजा है, आंसर नहीं भेजा बट इन्होंने कहा कि प्लीज आस्क अबाउट हिंदी सेलिब्रिटीज, दिस इज अ हिंदी चैनल नॉट इंग्लिश, डिड यू सी English radio guys ask about any Hindi celebrities or talk about Hindi related stuff. So we really appreciate your feedback.
2: Thank you so much.
1: Yes, thank you so much aapke message ke liye. We try and balance things out. Na kal humne Shreeshant jo hai inki awaaz ki thi, to hamari koshish ye hai, celebrity is celebrity for us, be it kisi bhi भाषा के हो. दैट्स वाई वी डूइंग दिस विद डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज एज वेल. और कहीं ना कहीं शायद इन्होंने मैसेज से इंडिकेट भी कर दिया कि आज की हमारी जो सेलिब्रिटी है ये इंडियन नहीं है. रीजन बीइंग क्योंकि हमारे पास नजू ने, नीत ने और मेरे ख्याल से नम्रता ने इन्होंने अपने आंसर्स भेजे हैं कि ये प्रियंका चोपड़ा की आवाज़ है.
2: सो नहीं है
1: क्योंकि हमारे ये जो एक लिसनर है जिन्होंने ये मैसेज भेजा है उनका मैसेज कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है. एंड इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, ये इंडियन सेलिब्रिटी नहीं है. एक क्लू मैं और आपको देना चाहती हूँ कि ये जो सेलिब्रिटी है ये एक्टिंग की दुनिया से पर्टिकुलरली रिलेटेड नहीं है. कल एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो बाद में एक्टिंग की दुनिया में आए. ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्टिंग करती हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर देयर वाज अ टाइम जब अपने फील्ड में, अपने स्पोर्ट्स के जिस फील्ड में, जिस पर्टिकुलर प्रोफेशन में है, ये दरअसल उसमें वर्ल्ड नंबर वन भी थी.
2: ओके, सो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन है ये और स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हैं. कौन है ये सेलिब्रिटी फॉर द लास्ट टाइम?
1: सुनिए इनकी आवाज.
3: आई थिंक रिटायरमेंट इज समथिंग दैट्स सुपर अर्नड एंड दैट पीपल वर्क रियली हार्ड फॉर एंड मेबी आई एम मोर टायर्ड ऑफ, बट आई जस्ट फील लाइक I'm at an age where I definitely have a lot more to give and there's a lot more that I want to do.
1: तो जल्दी से बताइए कि क्या आपने इनकी आवाज़ पहचानी? अगर हाँ तो हमारे पास आप मैसेज भेज सकते हैं अपना on 5599 BF space your answer your name और हमें बता सकते हैं कि आज की हमारी सेलिब्रिटी अलार्म में कौन है. फिलहाल आज का हमारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट मोहित चौहान की आवाज़ में लेकर आ रहे हैं. फिल्म आई थी बड़े कमाल की, आई डोंट नो हाउ मेनी हैव सीन इट, क्रिश 3 2013 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म का ये गाना इस बार मोहित चौहान एंड अलीशा चिनोई की आवाज़ों में आपके लिए हम पेश कर रहे हैं.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Time for our throwback इस घंटे के लिए. लेकिन of course throwback से पहले आज का हमारा celebrity alarm. आज मैंने सोचा था कि मैं खुश होंगी क्योंकि एक हफ्ते तक ये आवाज जो शायद मेरे को मिनो प्ले करने को मिले. पर सबसे पहले मेरे अरमानों पे पानी फेरा सनी और साथ में नेहा ने. Because these two guys were the very first people जिन्होंने सही सही आंसर जो है ये दिया था without us giving any clues. जिसके बाद सोनल ने सही आंसर दिया and then we gave some clues and then बाकी लोगों ने अपने अपने आंसर्स भेजे. जिसमें 6576 आपका आंसर आया. शानिया है, चरिशा है, विनील है, मनुरेवा से, स्वाति है, दिवनेश है, निक, साथ में प्रमोद, नंदनी आपका भी आंसर आया है. जिया ने कहा है गुड मॉर्निंग विजय भाई एंड पूजा जी, माई नेम इज जिया. और फिर उन्होंने अपना आंसर दिया एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Jia ne diya answer which was Serena Williams and others also gave the correct answer as Serena Williams.
3: So thank you so much aap sabhi ke answers ke liye jo aapne hamare paas bheje hain.
2: Kya aapko pata hai Serena Williams jo hai inhone world
3: number Venus Williams ki behan hai.
2: Ha behan to hai.
3: Ha mujhe pata hai.
2: Par inhone world number 1 ranking jo hai women singles mein 8 bar separate occasions mein hasil kiya tha ye title. 8 different times.
3: Very nice
2: career she had. Aur aise mein aaj ki hamari celebrity rahi Serena Williams.
3: By the way, आपको याद दिला दें कि इसी सैटरडे को कुछ बहुत ही स्पेशल होने जा रहे हैं वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोएटोए में. और यहाँ पर एनजेड कल्चरल ट्रस्ट की बहुत ही स्पेशल प्रस्तुति प्रेजेंटेड बाय साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड. भजन जेम्स लाइव होने जा रहे हैं. रवितेश देव और उनके साथ एक बहुत ही अमेजिंग लाइव बैंड जो है ये परफॉर्म करने वाले हैं. एन इवनिंग ऑफ डिवोशनल म्यूजिक, फ्यूजन भजन, कीर्तन, इन सभी का एक अलग फील के साथ आप मजा ले सकेंगे. और ये वैदिक सेंटर पर होने जा रहा है. टिकट्स ओनली $30. 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री एब्सोल्युटली फ्री. इवन ब्राइट से आप टिकट ले सकते हैं या जेस फ्रेश मार्ट पापाटोएटोए, वैली फ्रेश पापाटोएटोए, शिव प्रसाद एंड सन्स कैल्स्टन. या फिर आप जो टिकट्स है ये लेते हुए जरूर इसका मजा ले सकते हैं. स्नैक्स एंड कावा भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा. सो रिमेंबर दिस सैटरडे.
2: Yes, at Vedic Center, 32 Glasgow Ave, Papa Tui Tui. Bhajan Gems, bahut hi kamal ka ye devotional night with the fusion of bhajan and kirtan, but a contemporary concert-like environment mein. Something that you will surely enjoy. So be part of it and grab your tickets on time. Right now, 7 minute baki hai. 8 bajne mein agle ghante rush hour aapke liye hum lekar aane wale hain.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Right now, 6.2 degrees temperature hai Super City Auckland mein, high 15 expected baad mein
0: rush hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: So what's trending right now as far as Google Trends are concerned, ye to aap definitely bata hi sakte hai, but on the other hand, I can say ki filhal jo trend kar raha hai aaj ke is particular din in New Zealand or in Auckland, I would say, is the fuel prices. Kyunki aapko mil rahe hai 20 cents off per liter on fuel. Aaj bahut se petrol stations aapko ye de rahe hai amazing Thursday deal that you can definitely check out before you fill up.
2: So, आज ऐसा करते हैं, अभी नहीं बताएंगे कि दुनिया में क्या ट्रेंड कर रहा है. एक ऐसी चीज जो इंडियंस के बीच ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है.
1: अच्छा, ऐसा कुछ है?
2: हाँ, ऐसा कुछ है.
1: मतलब दुनिया के जिस किसी भी कोने में भारतीय लोग हैं उनके बीच ये ट्रेंड कर रहा है.
2: ये काफी ट्रेंड कर रहा है क्योंकि खास तौर पर जो पेरेंट्स हैं
1: उनके बीच,
2: हाँ उनके बीच ये ट्रेंड कर रहा है क्योंकि वो उनके बच्चे जब हिंदी बोलते हैं
1: हाँ
2: वो बहुत डिफरेंट होता है.
1: ओके,
2: तो एक क्या हुआ कि एक माँ जो है उन्होंने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर की.
1: ओके,
2: दे मूव फ्रॉम द यूएस बैक टू इंडिया.
1: ओके,
2: और वहां पर वो अपने बच्चे को हिंदी, बच्ची को हिंदी सिखाने की कोशिश कर रही थी. एंड इफ यू डोंट माइंड प्लेइंग दिस.
1: ओके, आई विल प्ले इट फॉर यू. लेट्स सी.
2: सो लेट्स सी.
3: The biggest challenge we are having after moving to India with my baby, who is an American and her accent is American, is guess what it is? Okay, the biggest problem is Ra. Tell?
4: Ra.
3: Chitra.
4: Chitra.
3: Chitra.
4: Chitra.
3: No, Chitra.
1: Chitra.
4: Chitra.
3: Bangalore.
4: Bangalore.
3: Bangalore.
4: Bangalore.
3: Bangalore.
4: Tell Bengaluru.
3: Bangalore.
4: Bangalore.
1: Bangalore.
3: Bangalore.
4: Bangalore.
3: Bangalore.
4: Bangalore.
3: Bangalore. Bangalore. How do I explain to her? It is R. It's not R. It's R.
4: Bangalore.
3: R. And that's why she's not able to write the spelling correctly.

0: because when she's pronouncing it, she's pronouncing chitte. And that's why she's not able to write the spellings correctly, because when she's pronouncing it, she's pronouncing chitte as chitte. Tell chitte.
1: Chitte.
0: The not te.
1: Chitte.
0: And so she writes it te. This is the problem I have.
2: This is the problem. And itne sare parents jo hai,
3: they relate to it.
2: Ab isse relate kar rahe hai ki bhai wo bhi difficulty ka samna kar rahe hai.
3: With this ra.
2: I mean, isme bachcho ke not only ra, alag alag log jo hai, alag alag cheeze jo hai, iska samna kar rahe hai. Ki aisa nahi hai ki wo nahi, lekin jab India se bahar ya apne country se bahar rehte hain, to jo universal language hai wahan par ya jo aam taur par jo bhasha boli jati hai, bacche wahi bhasha bolne lagte hain. And they get used to it now. And जिस तरह से वहाँ पर बोला जाता है,
3: जो accent होता है,
2: वही adopt कर लेते हैं. And then उनको वो Indianized करना या अपना अपने country का जो town है या जिस तरह से बोला जाता है, उसमें लाना बहुत difficult होता है.
3: True.
2: And that has been really trending in.
3: So a lot of parents kind of relate to it. Same pinch हो रहा है उनको भी.
2: आप आपको ऐसा कुछ हुआ
3: क्या? हाँ हाँ, रा से है. ये मैंने भी रा वाला नोटिस किया है. But कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि जब when they growing up, then there are certain words जो differently pronounce करते हैं. But धीरे धीरे when you are trying to help them learn the right pronunciation, वो पकड़ लेते हैं, and then they change it. पर कुछ situation में शायद वो एक साउंड हो या एक पर्टिकुलर लेटर का प्रोनाउंसिएशन हो, वो वैसा ही रह जाता है. इट डजंट चेंज.
2: सो दैट्स ट्रेंड पेट्रोल. अभी मैं आपसे कुछ बोलने जा रहा हूँ.
3: बोलिए.
2: लिसन वेरी केयरफुली. एच आई जे के एल एम एन ओ. एच
3: आई जे.
2: एच आई जे के एल एम एन ओ.
3: ओके, तो मैं क्या करूँ?
2: बताओ मैंने क्या बोला.
3: आपने अल्फाबेट बोला.
2: और भी जो आप सुन रहे हैं, बताइए मैंने क्या बोला.
3: आपने अल्फाबेट से बोला ना, बट बीच में से बोला, बीच में ही खत्म कर दिया.
2: आप जो लोग सुन रहे हैं, आप बताओ मैंने क्या बोला.
3: अच्छा, अगर आपको पता है कि इन्होंने क्या बोला, आप बताइए बी एफ लिखकर अपने नाम के साथ. देखते हैं कि क्या कोई और मुझसे अलग सोचता है या फिर मैं ही हूँ जो अलग ही सोचती हूँ. और थोड़ी देर बाद आज का वर्ल्ड से टेक टॉपिक ये भी लेकर आएंगे. सो कैन खुश, थैंक यू सो मच आपके गुड मॉर्निंग मैसेज के लिए.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Farmers' massive Red Dot sale ends Wednesday. There's now 60% off Red Dot clothing, 50% off Red Dot beauty, lingerie and men's underwear, 40% off Red Dot toys and 30% off Red Dot Lego. Farmers' Red Dot sale ends Wednesday. Conditions and exclusions apply.
4: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
5: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewellery making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewellery purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
7: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like New Zealand-grown loose pre-ripened avocados, a fresh deal at just 99 cents each. And Huggies Jumbo Nappies 64 to 108 pack, just $26.89 per pack. T's and C's apply.
8: Craving ho rahi hai. Us thick aur creamy dahi ki, jaise ghar pe milti thi, to milvate hain aapko Kashish Natural Yogurt se, jiska har spoon hai ekdam delightful. 100% vegetarian, gelatin and gluten-free. Perfect hai smoothies banane ke liye, tangy dips banane ke liye, paneer ya chicken marinate karne ke liye, ya bas seedha cup se khane ke liye, kyunki ye hai naturally delicious, always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoi and Hamilton.
2: ऐसा क्या ही पूछ लिया आपने जो मेरी तो समझ से बाहर है, पर जो लोग आंसर्स भेज रहे हैं उसमें भी I can't figure out what is the answer to your question.
12: हाँ तो क्या भेजा लोगों ने?
2: सबसे पहले 4527 इन्होंने कहा है H2O. Water, H2O. Good morning from Gunjan. Amrita ने कहा H2O equals water. Nilesh Dayal ने अपना एक थोड़ा different answer भेजा है और वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी. But there is another message 8189 की ओर से. इन्होंने कहा है HIJKLMNO equals water equals to H2O. Nitika ने कहा है water. Same like. नितिका ही है. नितिका ने पहले विदाउट द नेम मैसेज भेजा, फिर नाम लिख कर भेजा. पर मुझे नहीं समझा H2O कैसे है. H2O का फॉर्मूला तो H2O ही है, तो इतने सारे अल्फाबेट छोड़े ना है, तो ये कैसे हुआ आंसर. आई थिंक नीलेश इज करेक्ट.
12: यू थिंक नीलेश इज करेक्ट?
2: कलेक्ट नहीं, करेक्ट.
12: कलेक्ट
2: करेक्ट
12: करेक्ट. हाँ, क्या बोला नीलेश ने?
2: नीलेश ने बोला, विनय ने बोला, मतलब आपने, मतलब आपका नाम नीलेश, इनका नाम विजय, आई नो टाइपो हो गया होगा, तो उन्होंने कहा है कि
12: क्योंकि ही नोज मी पर्सनली.
2: हाँ, तो विनय क्यों लिखा?
12: तो एक्साइटमेंट में टाइप किया, मिस हो गया ना,
2: विजय के बजाय विनय आ गया. तो उन्होंने लिखा, विनय ने बोला, मैंने क्या बोला? बिकॉज आपने यही चाहे जाए के एल एमएनओ बोले के बाद बोला मैंने क्या बोला, तो दैट्स व्हाई आई थिंक ही इज करेक्ट.
12: अच्छा, यू थिंक ही इज करेक्ट?
2: मेरे को बाकी सारे गलत लग रहे हैं.
12: अच्छा, नहीं, he is not correct.
2: He is wrong.
12: बाकी सारे सही है.
2: अब H2O कैसे हुआ? मेरे को समझाओ अब जरा. साइंस वैसे मेरा बहुत घटिया है, पर फिर भी समझाओ.
12: जब घटिया है तो पूछ क्यों रही हो? समझ में तो आएगा नहीं.
2: आप कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू मी.
12: H2O. पानी का जो फॉर्मूला है ये क्या है?
2: H2O.
12: तो
2: आपने H2O थोड़े ना बोला था.
12: I said from H. मैंने अभी सेंटेंस को कंप्लीट करो.
2: बोलो बोलो पूरा, फिर से बोलो जैसे आपने बोला
12: था. I said from H. ओके. HIJKLMNO. I said from H. कंप्लीट.
2: 2O. ये बहुत प्रॉब्लम है यार. दिस इज नॉट राइट. अभी मैं भी बदला लूंगी. आई विल आल्सो प्रिपेयर समथिंग.
12: वेरी सिंपल, वेरी सिंपल.
2: आई एम गोना डू समथिंग द सेम वे आपके साथ एंड लेट्स सी क्या
12: करो. करो भाई.
2: आई एम 100% श्योर यू विल नेवर बी एबल टू आंसर माय क्वेश्चन.
12: हां वो तो है.
2: हां तो मैं अभी ना क्या करूंगी, बाहर जाके तैयारी करूंगी. ताकि व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग यार यू डोंट इवन लिसन टू व्हाट आई एम डूइंग. अदरवाइज सुनकर ही आप जवाब बता दोगे. एनीवेज 20 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर और अब बारी है.
12: आज का व्हाट्स योर टेक भी बाकी दिनों के मिलान में बहुत ही डिफरेंट है.
2: तोड़ दो.
12: हाँ तो कुछ नया आएगा ऑफिस स्टूडियो में.
2: आप सब तोड़ दो.

0: अलग,
1: एकदम अलग,
0: मुझे लगा सबसे बेकार,
1: जिसका बैस ऊपर हो।
0: नहीं वैसे थोड़ा ना होता है, भैंस कहाँ से ऊपर होगा। मैं आपको क्या क्या लगती हूँ मैं। तो मीनस मतलब सबसे डिफरेंट।
1: हाँ, वेलिंगटन के एक बेकर हैं, जो प्लेयर,
0: राइट,
1: इन्होंने इस कंपटीशन को शुरू किया है मीनस पाई का। एंड इसके पीछे सी द कोज इज वेरी गुड,
0: ओके,
1: दे आर ट्राइंग टू रेज फंड्स। इनको डायग्नोस किया गया है विद स्टेज 4 कैंसर,
0: the guy who started this.
1: Just after he opened his second shop,
0: right,
1: unhone bataya ki I found that in the time during the treatment the cancer society just absolutely looked after me, to unhone socha baad mein chalkar ki I'll help them raise some funds,
0: right,
1: to unhone is idea ko create kiya aur HB Pies yahan Auckland mein unke sath September mein hum ye challenge karenge,
0: okay,
1: to bakers jo hain inke paas opportunity hai to pick up to 9 ingredients from the 15 decided on by the organizers. 15 ingredients diye hain unhone, leek, bacon, miso, garlic, potato, feta, mustard, watercress, blackberry, onion, cheese, sesame, ginger, pork and tomato, plus salt and pepper seasoning jo hai ye allowed hai,
0: right,
1: there's so many possibilities, unhone open rakha, vegetarian bhi bana sakte hain. तो आपको इसका इस्तेमाल करते हैं। द वियर्डर द बेटर, वन ऑफ हिज ओन फेवरेट्स वाज बनाना सटे विद कैंडिड एलमंड, ये उन्होंने
0: ट्राई
1: किया, तो बेकर्स जो है ट्राई कर सकती। ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि एंड कीवीज जो है ये अपना फेवरेट पाए पिक करेंगे मेन पाए ऐप से, एक प्री एग्जिस्टिंग पाए रेटिंग ऐप है जिसे रीडिजाइन किया गया है for this challenge, or $1 from each pastry sold goes to the Cancer Society.
0: Nice.
1: Our Mean Pies app jo hai will not be taking a cut on this.
0: Oh, that's so sweet.
1: Haan. To ye, you know, अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, कुछ नया कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कभी आपने कुछ अलग पकाया या कुछ अलग खाया है, कुछ डिफरेंट एकदम?
0: नहीं, मैंने नहीं किया, बिकॉज मेरे को खाने के मामले में।
1: नहीं, आपने तो खाया है, ऑयस्टर्स खाए हैं आपने।
0: नहीं, बट वो अलग है, डिफरेंट थोड़ी ना है।
1: आपके लिए,
0: मेरे लिए था, कि मैंने कभी नहीं ट्राई किया था।
1: हर किसी के लिए अपना इंडिविजुअल जो है डिफरेंट होता, तो वही मैं आज जानना चाहता हूँ।
0: तो उस हिसाब से किया, बट कुछ अलग कभी पकाया नहीं है, टैलेंट नहीं है ना मेरे में। कुकिंग के मामले में मैं ऐसी हूँ, मेरे को बन जाए बस वही बात है।
1: खिचड़ी,
0: खिचड़ी इज बेस्ट। पहले फ्राइडे एवरी फ्राइडे इट यूज्ड टू बी माय मील, लाइक यही खाना है बस, और बहुत अच्छा लगता है मुझे खिचड़ी। बट नहीं, कुछ अलग तो मैंने कभी नहीं बनाया। एक बार मैंने कोशिश जरूर की थी।
1: क्या बनाने की?
0: चने बनाए थे मैंने, काले चने, और उसमें मैंने जो पुलाव मसाला है वो डाल दिया था। वो गलती वाली कोशिश थी मेरी, बट बहुत बेकार बने थे वो चने। किसी ने नहीं लाइफ पसंद किया। मेरे घर में एक शख्स है जो हमेशा मेरे खाने की तारीफ करते कि अच्छा बना है, नाइस है। उस दिन वो भी थक हार के बोल रहे थे, नहीं आज नहीं अच्छा यार, थोड़ा गड़बड़ है। तो मुझे पता चल गया था कि वो बहुत बुरा बना था।
1: लेट्स सी।
0: गुड मॉर्निंग सपना।
2: गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग विजय जी, कैसे
1: हैं? मैं ठीक हूँ, हम ठीक हैं।
0: आप कैसी हो?
2: मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ
0: जी।
2: यहाँ लास्ट 1.5 ईयर से मेरे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं खाने में।
1: अच्छा,
2: तो ट्राइंग समथिंग न्यू एवरी अदर डे।
0: ऐसा क्या आपने कुछ अलग ट्राई किया दैट हैज स्टेड विद यू?
2: यहाँ पे आके आई हैव ट्राइड शवरमा, आई हैव ट्राइड मेकिंग मनाकेश लेबनीज पिज्जा जो होता है वो।
0: आपने बनाया है?
2: राइस पे? हाँ हाँ, मैंने बनाया है, मैं सब घर में ही बनाती
0: हूँ। ओके,
2: डोंट ईट आउट।
0: अच्छा,
2: बिकॉज बैक इन इट वॉज क्वाइट इजी टू ऑर्डर, क्वाइट इजी टू गो आउट एंड ईट, बट यहाँ पर तो इतना वो लग्जरी नहीं है, तो सब घर में ही बनाती हूँ।
0: दुबई में कैसे आसान था ऑर्डर करना बाहर जाके खाना? लाइक महंगा नहीं था क्या वहाँ पे?
2: महंगा नहीं था, दुबई में बिल्कुल महंगा नहीं है।
0: न्यूजीलैंड आकर आपने
2: 20 मिनट्स,
0: तो न्यूजीलैंड में आके आपने ये भी चलो सीख लिया ना?
2: हाँ, सीख लिया, और सब बहुत खुश है, पता है मेरे घर में बनाने से कि सब घर में बन रहा है।
0: वेरी नाइस,
2: गिव कीप ऑर्डरिंग टू मी कि ये बना दो आज, ये बना दो आज, ये खाएंगे, तो वो मुझे भी अच्छा लगता है।
0: कोई न्यूजीलैंड की डिश आपने ट्राई की हो बनाने की या ट्राई किया?
2: आई डोंट लाइक, मुझे देसी पसंद है।
0: अच्छा, देसी पसंद है।
1: ये लेबनीज पिज्जा कब से
0: देसी होने लगा? शवरमा।

0: थोड़ी ना देसी,
1: मैं उसको बना देती हूँ ना चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के,
0: देसी बना देती
1: है बिकॉज इट इज पिज्जा ओनली, उसमें खूब सारा चीज डाल के और ज्यादा डाल के बनाते हैं, तो दैट इज यू नो
0: इंटरनेशनल क्यूजीन को इंडियनाइज तो हम सबने किया है, जैसे पास्ता को भी देखो ना अपने अपने अंदाज में कितना इंडियन बना देते हैं हम। कुछ लोग तो पास्ता में हल्दी भी डालते हैं बाय द वे,
2: दैट्स वेरी गुड, हल्दी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ,
0: एग्जैक्टली कला के लिए भी टेस्ट के लिए भी।
1: ये आप जो बोल रहे हो ये हमारी सिंधियों की एक डिश है अलग से, मैक्रोनी जो होती है ना मैक्रोनी, उसको हम लोग खूब टमाटर के वो प्योरी में भून के और कुकर में सीटी लगाते हैं, तो इट इज मतलब बहुत पुरानी डिश है, वो आज की नहीं है, वो हमारे यहाँ बहुत सालों से बन रही
0: है।
1: हाँ मकरोली, तो वो मकरोली होती है, हम लोग मकरोली बोलते हैं उसको।
0: अच्छा जी,
1: क्या बनाना है? मकरोली पटाखा, मकरोली आलू बनाएंगे। अच्छा,
0: इंटरेस्टिंग,
2: मैक्रोनी आलू के साथ?
0: मैक्रोनी नहीं रे, मकरोली।
2: हाँ वो ये बोल रही है, मैक्रोनी
1: मैक्रोनी विद आलू। हाँ मैक्रोनी विद आलू इज मकरोली पटाटा।
0: हाँ मकरोली पटाटा, वेरी नाइस, थैंक यू सपना, हैव अ नाइस डे,
1: प्लेजर।
2: कमाल है भाई, क्या नया सीखा हमने,
0: मकरोली पटाटा।
2: हाँ कोई और है?
0: नहीं कोई नहीं अभी
2: है, किसी ने कुछ नया पकाया नहीं,
0: इतनी देर से बातें कर रहे थे,
2: किसी ने कुछ नया पकाया ही नहीं, किसी ने कुछ नया खाया ही नहीं, कितनी बोरिंग दुनिया है ये,
0: बहुत यार हमारी तरह।
2: चलो अब आगे बढ़ते, क्या करते हैं
0: अभी,
2: अगर आप चाहें तो टेक्स्ट करके बता सकते हैं एज यूजुअल, और सुनते रहें, बीसी लिख कर भेज दे, क्योंकि इसी घंटे किसी भी टाइम पर हम बोर्डिंग कॉल जो है ये भी प्ले हो सकता है।
0: बिल्कुल, तो जल्दी जल्दी अपने मैसेजेस आप सेंड कर सकते हैं हमारे पास, एंड व्हेन द बोर्डिंग कॉल प्लेज तो बस जो ऑटो रिप्लाई में लिंक मिले उस पर क्लिक कर आपको उस स्टेप तक पहुंचना है जहां पर आपको एंट्री डालनी है आज के हमारे बोर्डिंग कॉल की, जो बोर्ड नाउ ये एंटर नाउ जहां पर लिखा होगा वहीं पर आपको बोर्ड नाउ जो ये टाइप करना है और सबमिट करना है, एंड दैट्स इट, विल बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ जहां पर आप जीतोगे टू रिटेन एयर टिकट्स टू वनुवातु विद $1,000 स्पेंडिंग मनी सोलोमन एयरलाइंस की ओर से, फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुवातु, और आप विजिट कर सकते हैं flysolomons.com, और डिटेल्स के लिए और टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिटेल्स के लिए आप hum.rover.nz विजिट करें।
3: Bollywood's most wanted.
4: Kundi khad rao ya seedha andar aao.
5: Main laun apna A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बादशाह की आवाज आपके लिए हम लेकर आ रहे थे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आज का हमारा ये चैट बस्टर जो है हमने आपके लिए पेश किया और आपने आशीष कौर जुबिन नौटियाल को भी सुना अलोंग विद बादशाह। वैसे आज थर्सडे है और थर्सडे को हम बातें करते हैं नन अदर देन गुरु कंडोला के साथ। आज गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गुरु, कैसे हो आप?
1: गुड मॉर्निंग पूजा, मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया, बस आप ही का इंतजार हो रहा था जस्ट लाइक एवरी थर्सडे। और आज तो आपसे एक जरूरी सवाल भी हमने करना है। अभी हमें याद है बहुत से आपके जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने जब हमसे बातें की थी, व्हेन वी वर यू नो टॉकिंग टू देम, दे वर गिविंग देयर फीडबैक, एंड समटाइम्स आपने कुछ ऐसे केसेस भी शेयर किए हैं वेयर यू हैव स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि कैसे किसी का जो केस अगर ऑलरेडी उनका डील कहीं पर डिक्लाइन हुआ एंड देन दे केम टू यू, और उनके उस डिक्लाइन डील को आपने कैसे पता नहीं क्या किया, क्या मेहनत की, क्या सोचा, उस डिक्लाइन डील को आपने अप्रूव करवाया। और आई रिमेम्बर वंस यू हैड मेंशन अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन जिनका आपने डिक्लाइन डील जो है अप्रूव करवाया एंड विद इन अ वीक उनके सारे चीज़ें सॉर्ट आउट होकर उनके लिए फर्स्ट होम उनका जो अपॉर्चुनिटी था वो पूरा कर दिया आपने। सो ऐसा कुछ रिसेंटली क्या आपने किया है या फिर एनी रिसेंट केसेस दैट यू लाइक टू टॉक अबाउट, बिकॉज बड़े दिनों से इसके बारे में बातें नहीं हुई है ना?
1: बिल्कुल पूजा, रीसेंट क्या, हमारा तो रोज का काम ही वही है कि जब गुरु के पास डील आती है तो वही डील कहीं ना कहीं से बेसिकली उसको यू नो ग्रीन लाइट नहीं मिला होता, रेड लाइट से होके आती है। तो दैट्स दोस काइंड ऑफ डील्स ही मोस्टली मेरे पास आती हैं जब लोग जिनका डील नहीं हो पा रहा है या फिर बैंक से डिक्लाइन हो गया फॉर व्हाटएवर रीजन, एंड देन आई हैव रिव्यूड इट। अगर वो मैं केस पकड़ता हूँ तो डेफिनेटली, अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर एक बारी मैंने केस पकड़ लिया देन यस डेफिनेटली फैसे यस देन आई विल गेट इट डन थ्रू यू नो, बट लेकिन अगर मैं पहले ही डिस्कशन में बता देता हूँ कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ये इट विल गो थ्रू देन आई नेवर टेक द केस एनीवेज। बट इन शेयरिंग द सिनेरियो, बड़ा दिलचस्प सिनेरियो अभी रिसेंटली, तो बेसिकली क्लाइंट के पास ऑलरेडी उनके पास प्री अप्रूवल था और वो बैंक के थ्रू उनके पास प्री अप्रूवल था, बट इट वाज नॉट थ्रू मी, वो खुद ही डायरेक्टली गए हुए थे। और बेसिकली प्री अप्रूवल के बेस पे उन्होंने किसी डील को अनकंडीशनल कर दिया, ऑफर डाला और उसको अनकंडीशनल कर दिया और उसको डिपॉजिट भी पे कर दिया बिकॉज दे थिंकिंग कि मेरा हमारे पास तो प्री अप्रूवल है। बट उन्होंने प्री अप्रूवल में जब वो वापस बैंक में गए कि हाँ भाई हमने ऑफर डाल दिया, तो प्री अप्रूवल में कुछ कंडीशंस थी और वो जो कंडीशंस थी बेसिकली जब इन्होंने वो बैंक को वापस कंडीशंस प्रोवाइड की एंड देन बैंक्स ने उनकी वो बैंक स्टेटमेंट देख के रीसेंट वाली जो थी उसको अनसेटिस्फैक्टरी कर दिया एंड दे सेड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, सो वी कांट गो अहेड विद दिस वन। और वो इतनी बुरी जगह में फंस गए कि बेसिकली नाउ दे हैव ऑलरेडी मेड द डील अनकंडीशनल और डिपॉजिट भी पे कर दिया 5% का, एंड इट जस्ट पैनिक मोड ऑन हो गया एंड दैट्स वेयर फिर उनको कहीं से गुरु का नाम याद आया कि गुरु ही बोलते हैं कि भी जब डिक्लाइन डील्स होता है तो हमारे पास लेके आओ ना, एंड दे जस्ट कॉल्ड मी डिस्कस द केस एंड बेसिकली केस में डेफिनेटली उनके आवाज में थोड़ा उदासीपन भी थी, तो व्हेन आई लिसन टू द केस की डेफिनेटली कुछ किया जा सकता है बट लेकिन जब तक वो मैं बैंक स्टेटमेंट नहीं देखता, उन्होंने मुझे बताया कि हुआ क्या है, क्या चीज हुई है, एंड देन आई रिव्यूड इट, सेंड मी दैट इन्फॉर्मेशन, लुक्स लाइक आई कैन डू इट बट जब तक मैं बैंक स्टेटमेंट नहीं देखता मैं बता नहीं पाऊंगा। व्हेन आई गॉट द बैंक स्टेटमेंट आई लुक्ड इनटू इट एंड इट वाज समथिंग व्हिच आई पिक्ड इट अप कि जो मैं मुझे लगा कि मैं फाइट बैक कर सकता हूँ बैंक के साथ टू कन्विंस देम, वही वाला उसी पॉइंट के ऊपर, बहुत छोटा सा पॉइंट था, उसी पॉइंट के ऊपर मैंने पूरा एम्फसाइज करके आई जस्ट गॉट दैट अप्रूवल एंड विद अनदर बैंक एंड ऑन द सेम बेसिस सेम इंफॉर्मेशन बट हैविंग अ गुड एक्सप्लेनेशन अबाउट दोस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि उसको डीप डाउन में जाके समझना और उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के पहले मेरे को उनसे निकालनी पड़ी क्लाइंट से और उसके बाद मुझे वो एक्सप्लेन करनी पड़ी बैंक को, एंड दैट same loan we got approved unconditionally and lucky we able to you know get them that satisfaction ki ab wo paisa jo unka wo duba nahi, they will be settling in another 3 weeks time, but these kind of things where jab main wo cheez karta hu I feel motivated myself as well ki basically kisi ko us jagah se nikal ke lana aur you know just put it into the satisfied position that gives me a big satisfaction. So Yeah, market mein definitely there's a lot of things people don't understand ki haan bhi pre-approval hai. So pre-approval hota hai, which is fine, but lekin pre-approval ke sath conditions bhi hoti hain. Conditional approval hote hain, unconditional approval hote hain. So I think there's a little bit of awareness jo market mein chahiye, aur agar you know, I think it's better to use the brokers. It is better to use the qualified brokers and the one with the experience. Aur ye abhi market mein there's, you know, there's lot of brokers coming in there, but lekin you need to pick up the right one with the right experience and then just stick with them and then go with it. And mera to yahi aapko salah rahegi har ek jo bhi listen kar raha hai ki basically because brokers, it's not going to cost you anything.
0: Right.
1: You know, mortgage brokers, it's always going to be on your side and then just work with you. Try to understand the situation and then present nicely to the bank so that wo approval jo hai, approve wo ke nikle, not decline.
0: Okay. Thank you so much, Guru, for sharing that, especially the fact ki ek doubt jo tha ki abhi pata nahi aap aise cases handle karte hain ya nahi karte hain, but you've definitely cleared the air that yes, agar aisa koi situation ho, then at least ek bar aap se salah mashwara kar dekhe, ho sakta hai unke liye wo cheez work out kar jaye. But if people are listening and they are interested in getting that thing done with you, talk to you, discuss their particular case with you, wo kaise aap se baate kar sakte hain?
1: Mujhe simple logic lagana hai. Logic Finance, आप गूगल पे अगर सर्च करोगे तो यू विल गेट माई नंबर एंड आर बिजनेस पार्टनर कमल्स नंबर. लेकिन अगर आपको डायरेक्टली मेरे से बात करनी है, यू कैन कॉल मी ऑन 0800 लॉजिक जी. जब आप 0800 लॉजिक जी टाइप करते हो, दैट कम्स टू मी, विच इज 0800-564-424. इज द नंबर टू गेट इन टच विद मी.
0: थैंक यू सो मच गुरु, टेक केयर, एंड नेक्स्ट वीक थर्सडे को आपसे और बातें करेंगे.
1: Sure, Pooja. Thank you. Cheers, bye.
2: Ladies and gentlemen, got airplane tickets with your name on them. This is the boarding call for Solomon Airlines flight number Hum 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Yeah. Please proceed to Rova and enter board now.
3: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Accurate traffic.
4: Milwaukee Packout Redemptions.
5: Coolbar clear today and got a high of 16 degrees. Coming into the city, we are starting to ease. Northern, 27 minutes Constellation Drive to town, 45 from Silverdale. Slow at Silverdale. Heavy Greville to Sunny Nook and slow to the bridge. Northwestern, 32 and from Massey. Heavy on and off from Tangata to easing past Point Chef. Southern, 40 Manukau to town. Slow at Manurewa and heavy patches from Motahuhu.
4: Don't miss the Milwaukee Packout Redemption offers. Available until the end of August. T's and C's apply.
6: Hey, Neha. Congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है.
8: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
6: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
9: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.

0: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
1: Bunnings has great value nailed across the store.
2: Get your garage sorted with a Stanley 17 compartment storage organiser, 1018, or a Command 1.8kg broom holder, just 998. Head in store or online for even more great value. Bunnings Warehouse.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
5: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton.
6: Let's go.
4: Straight from the heart.
7: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: driving you home? Drive show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Accurate traffic.
4: Tech deals at the warehouse.
5: Cool but clear today and got a high of 16 degrees. Coming into the city, we are starting to ease. Northern, 27 minutes Constellation Drive to town, 45 from Silverdale. Slow at Silverdale. Heavy Greville to Sunny Nook and slow to the bridge. Northwestern, 32 and from Massey. Heavy on and off from Te Aratu, easing past Point Chef. Southern, 40 Manukau to town, slow at Manurewa and heavy patches from Otahuhu.
4: Giant tech sale on now. Great deals on TVs, audio and more at the warehouse.
6: Professional by Ninjas has saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
7: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
6: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
7: Professional financial solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
8: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
9: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
8: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
9: पर डेवलपमेंट के पैसे
8: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
10: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
13: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
14: सबसे पहले तो याद रखें कि बोर्डिंग कॉल अनाउंस हो चुका है. यू हैव टू गो एंड एंटर बोर्ड नाउ. रोवर पर BC लिखकर 5599 पर भेजे फॉर द लिंक. दूसरी चीज, जल्दी से इन जो हमारा आज का व्हाट्स योर टेक, किसी ने मैसेज किया, इन माय फर्स्ट फ्यू डेज इन न्यूजीलैंड बैक इन अर्ली 2000s आई मेड ब्रोकली लाइक कॉलीफ्लावर विद पोटैटोज. इतनी घटिया बनी थी दैट आई डिड नॉट हैव ब्रोकली फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years.
1: Oh God!
14: Yeah,
1: I can only imagine.
14: और अब क्या है ना कि कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीद मारती है.
1: कैसे?
14: जब उम्मीद पूरी नहीं होती ना.
1: Okay.
14: और आज की दूसरी बात, जज्बात.
1: ओ भाई जी.
14: हाँ.
1: हम अभी 9 o'clock खत्म नहीं हुआ. आप दो बातें यहाँ की सुना रहे हैं.
14: क्योंकि मैं जा रहा हूँ ना.
1: What?
14: जज्बात उस OTP की तरह है जो वक्त गुजरने पर इनवैलिड हो जाते हैं.
1: When were you going to tell me कि आप 9 बजे नहीं रहेंगे यहाँ पे?
14: बता दिया.
1: गाना सूट नहीं कर रहा है अभी जो एनवायरनमेंट है.

0: Just chill.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Accurate traffic.
2: Experience fun at Snow Planet.
3: A high of 16, staying fine all day long. Coming into the city, Southern Motorway, 36 minutes, Manukau to town, 46 from Drury. Slow at Manurewa, clear to Otahu, but then heavy on and off from there. Northwestern, 27 in from Massey, slow at Te Aratu, then all the way from the causeway with heavy patches to Greyland. Northern, 27 minutes in from Constellation Drive, heavy gravel to Sunny Nook, slow patches to the bridge.
2: Ski, board, slide, tube, fun for the whole family at Snow Planet, not a million miles away.
4: Deal-breaking news. Today is the Briscoe's one-day sale.
5: That's right, Briscoe's lady, with up to 60% off store-wide. Every single aisle is packed with deals. Today only. All stores open late. See online for TCs and store hours.
6: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grohe basin mixers, $149. American standard toilet suite, $349. Luxury Clashish wall vanities, $399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: Kia ora. If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
8: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
9: Hey Neha, congratulations on your first home. Tune to kaha tha ki do banks ne loan dene se aur ek famous broker ne to case lene se hi mana kar diya tha. ये घर कैसे?
10: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
9: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया। मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
10: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
11: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
12: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
13: हम time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. It's hoped an inquiry into the fatal Mount Maunganui landslide will inspire change across the country. Tauranga City Council has accepted 10 recommendations. Local MP Sam Uffendale says it's a stark lesson.
15: If it happens in a big place like Tauranga with a lot of resources, then I imagine it's probably happening in other councils around New Zealand as well.
14: New data suggests the economy is shouldering the impacts of the Iran war better than expected. Infometrics reveals activity in the June quarter increase. Principal economist Nick Brunston.
16: We thought the disruption, the higher fuel prices was really going to knock back activity, but it seems that the economy was a lot more resilient, meaning that all of the regions recovered and just about all of the industries recovered as well.
14: Farmers will soon be able to put drones to work with less red tape. From mid-next year, they'll only have to notify the CAA ahead of time. Associate Transport Minister James Meagher says it's for all low risk work.
17: This will cover your routine operations such as spraying pesticides and herbicides, distribution of lime, seeds and manures across cropland and pasture, orchards, vineyards, market gardens.
14: Passenger numbers at Auckland Airport are on the up. They rose 1.6% in the year to June. Revenue rose 3%. To rugby with Shift 4, Northland can secure the Ranfurly Shield for the first time in 48 years tonight if they beat Canterbury in Christchurch. Taniwha fullback Jordan Trainers excited to play under the roof for the first time.
18: Well, I've watched a few of their games and they're getting great crowds and hopefully a few of our supporters can travel down and we get a bit of support.
14: Kickoffs at 10 past 7. Ivan Cleary will coach his 500th NRL game when the Panthers face the Storm in Melbourne at 10 to 10 tonight.
1: Sports News.
13: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
19: World's best, hamari good brands nahi hai.
13: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
0: तो याद रहे आज सुबह सिटी ऑकलैंड में वैसे तो कहा गया है फाइन वेदर रहेगा, बट लिटिल बिट ऑफ क्लाउड एंड अ लिटिल बिट ऑफ चांसेस ऑफ शावर्स जो है ये आज शाम के लिए बताए जा रहे हैं. सनसेट 5:52 PM पर होगा. टेम्परेचर राइट नाउ इज 9 degrees, हाई 15 एक्सपेक्टेड. बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर 8 degrees रहेगा.
13: ब्रेकफास्ट शो विद वीजय एंड पूजा
1: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज inspired furniture for everyday luxury living. What's going on? क्या बकते हो?
19: अरे कहना क्या चाहते हो?
0: तो आज की क्या बकते हो स्टोरी जो आपके लिए व्हाट्स गोइंग ऑन में हम लेकर आ रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. वैसे तो आपने ये सुना ही होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये एक मुहावरा जैसा बोलते हैं कि अगर कोई यू नो इस मुहावरे को समझ पाए अच्छी तरीके से, यू नो कि इट्स लाइक अ मुहावरा जो ऐसे सिचुएशन को एनालाइज करते हुए बोला जाता है, चोर की दाढ़ी में तिनका. बट ऑन द अदर हैंड, हैव यू एवर हर्ड समवन एक्चुअली पुटिंग समथिंग इन देयर दाढ़ी एज इन देयर बियर्ड? Apparently, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक शख्स हैं जिनका नाम है जोएल स्ट्रेसा, और इनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ऑफ पुटिंग द मोस्ट ऑब्जेक्ट्स इन हिज बियर्ड. इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स जो है अपने बियर्ड में स्टिक किए हैं, और अगर देखा जाए तो इसमें से कुछ चीज़ों का नाम अगर मैं आपको बताऊँ, उनमें चॉपस्टिक्स शामिल हैं, टूथपिक्स शामिल हैं, और कैंडी केन्स जैसे आइटम्स जो है ये शामिल हैं. और कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं जो बड़े बिजार होते हैं, इट मेक्स यू थिंक व्हाट इज दिस, ये सच में हो रहा है या फिर ऐसे ही कोई मजाक है. बट जोएल स्ट्रेसर जो है ये एक सीरियल रिकॉर्ड ब्रेकर है हु इज़ नोन फॉर गेनिंग हिज ओन रिकॉर्ड टाइटल्स, और ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, अपना रिकॉर्ड जो है तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं. हिज लेटेस्ट रिकॉर्ड इज़ फॉर द मोस्ट कैंडी केन्स जो इन्होंने अपनी बियर्ड में ये रखा हुआ है या इंसर्ट किया है, एंड ही अचीव दिस एस्टोनिशिंग रिकॉर्ड जहाँ पर इन्होंने टोटल ऑफ 187 कैंडी केन्स अपनी दाढ़ी में अटकाए. एंड दैट इज़ वन अनयूजुअल रिकॉर्ड, क्योंकि I don't know if anyone could do that, but he has apparently done that. Some of his other world records are most pencils in a beard in 1 minute, 59 pencils इन्होंने stick किए थे. Most pencils in a beard, जिसके बाद में चलकर इन्होंने अपना खुद का record तोड़ा और 456 pencils जो है ये अपने beard में रखे. Most paper straws in a beard, 534. फिर most chopsticks in a beard, 520. एंड मोस्ट फोर्क इन अ बियर्ड, इन्होंने 126 फोर्क जो है ये अपने बियर्ड में इंसर्ट किए. सो जोएल स्ट्रेसर बड़े ही कमाल के रिकॉर्ड होल्डर, अ बिट अनयूजुअल आई वुड से, बट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आज भी शामिल है, एंड ही अपेरेंटली हैज मेड इट टू हिस्ट्री. राइट नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन आपके लिए हम चुपके लेकर आ रहे हैं. थोड़ी देर बाद मौका देंगे हमारे साथ शामिल होकर आप पार्टिसिपेट कर सके आज के हमारे रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर आप भी अपने सिबलिंग के परफॉर्मेंस रिव्यू करते हुए ड्रो में शामिल होकर योर शेयर ऑफ $500 जीत सकते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड अपॉर्चुनिटी है आपके पास अगर आप हमारा फेसबुक पेज जो है ये विजिट करें. इनफैक्ट इफ यू गॉट एनी टाइम राइट नाउ तो मैं आपको गाइड भी कर सकती हूँ कि आपको क्या करना है. फेसबुक पर जो ऐप है अपना, ये ऐप ओपन करें और हमें सर्च करें हम 104.2 FM. अगर आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया है तो लाइक करें स्ट्रेट अवे, और फिर हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं ताकि जो भी अपडेट्स हो, कॉम्पिटिशन हो, प्रमोशन हो, ये जैसे जैसे आते रहे आप इसका हिस्सा बन सकें. एंड आप जब ये करोगे तो आप फीचर्ड फोल्डर में आपको पोस्ट दिखेगा अ लाइफ टाइम इन वन ऑब्जेक्ट, दैट्स अवर रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन पोस्ट. और उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लेनी है, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल हो, आपके भाई या बहन के साथ उसकी कुछ यादें जुड़ी हों. जैसे अलीशा अली ने, इन्होंने एक फ़ोटो जो है ये डाली है, और मेरे ख्याल से कल परसों इन्होंने अपनी एंट्री डाली है एक ऑब्जेक्ट की. उसके अलावा सुनील राज, इन्होंने एक एंट्री डाली एक ऑब्जेक्ट की. साक्षी आनंद जो है, इन्होंने एक ऑब्जेक्ट की एंट्री डाली है. तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट की फ़ोटोज़ जो है ये आपको कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करनी है, और फिर दो तीन लाइन में हमें ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट आपके लिए इतना मेमोरेबल, इतना स्पेशल क्यों है, और अपने भाई या बहन को आपको टैग करना है जिनके साथ याद इस ऑब्जेक्ट से जुड़ी है. वंस यू डू दैट, आपका नाम एक ड्रॉ का हिस्सा बनेगा जहां पर यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ एंड विन $300 कैश. तो ये हमारा रक्षाबंधन अ लाइफ टाइम इन वन ऑब्जेक्ट प्रमोशन है सोशल मीडिया पर, जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हुए इनाम जीत सकते हैं, $300 जीत सकते हैं. सो मेक श्योर विजिट आवर फेसबुक पेज, अंडरस्टैंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव टू मीट, बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ एंड विन सम कैश दिस रक्षाबंधन, ओनली ऑन हम

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: चलिए अब आपको बताते हैं व्हाट्सएप ऑकलैंड में कि हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ इवेंट्स जो है ये हो रहे हैं और कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। वैसे आपको याद दिला दें, ऑकलैंड भक्ति सत्संग द्वारा ग्रैंड थ्री कोना कीर्तन नाइट ये कल होने जा रहा है, विच इज़ फ्राइडे 21st ऑफ अगस्त, वैदिक सेंटर पापा टोयोटो में ये रहेगा। टिकट्स आर ओनली $20 और आप बातें कर सकते हैं अश्नील से 0210667236 पर और यू नो इंक्वायरीज कर सकते हैं अबाउट द टिकट्स। बट राइट नाउ आपको बता दें कि दे आर टिकट्स, सम टिकट्स अवेलेबल एट जेस फ्रेश मार्ट इन पापा टोयोटो, जहाँ से आप टिकट्स जो है ये डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इन्वाइट कर रहे हैं इनके फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट के लिए, जो इसी शनिवार को होगा। मतलब फ्राइडे को आप इस ग्रैंड थ्री की थ्री कोना कीर्तन नाइट में भाग ले सकते हैं। एंड देन सैटरडे एंड संडे को इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप बर्किनहर्ड स्काउट्स होल पहुंच सकते हैं 22nd and 23rd अगस्त को। यहां पर फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट होगा और जो कैरम प्लेयर्स हैं किसी भी लेवल के, किसी भी स्किल लेवल के हो, आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर कि डेडलाइन इनका किस दिन तक का है, बट अगर आपको डिटेल्स चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर पार्टिसिपेशन, आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है पंकज मोंगा, इनसे बातें करें 0210908 5067 पर और इनसे आप जानकारियां जो है ये हासिल कर सकते हैं। बाय द वे, सैनी एंड रूजबे ने अनफिल्टर्ड के एक एपिसोड में इनसे बातें की है और इनकी जर्नी जो रही है, द कॉमन मिथ्स सराउंडिंग कैरम, नेशनल टूर्नामेंट्स जैसे टॉपिक्स जो इन्होंने अपने इस कॉन्वर्सेशन में डिस्कस किया हुआ है और ये बात भी कही है कि क्यों ये ज़रूरी है कि ऐसे कुछ क्लासिक स्पोर्ट्स को आज भी ज़िंदा रखा जाए, उसमें जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके उतना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर इंटरेस्टेड CB लिखे, CB यानी कि कैरम बोर्ड, आप ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, CB लिखकर 5599 पर हमारे पास, आप 5599 पर अगर भेजेंगे आपको पूरा का पूरा जो ऑडियो लिंक है ये ज़रूर मिल जाएगा एंड यू कैन एक्सेस दैट एंड लिसन टू द कन्वर्सेशन। फिलहाल समय की ओर देखिए, 16 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर, थोड़ी देर बाद आज का हमारा रक्षाबंधन प्रमोशन आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू, इसमें आपको पार्ट लेना होगा, अपने भाई या बहन के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना होगा। टॉपिक भी हम आपको देंगे, उस टॉपिक पर आप बता सकते हैं कि आपके भाई या बहन उस मामले में कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं और फिर बदले में ड्रो में शामिल होकर आप जीत सकते हैं कैश इनाम। टोटल ऑफ $500 हम गिव अवे कर रहे हैं और 2 लकी लोग हमारे साथ इसे जीत सकते हैं।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, देखो हम आ गए।
0: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
4: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
5: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है।
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
7: हेलो एवरीबॉडी।
0: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
9: Hey, नेहा, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि 2-2 banks ने लोन देने से और एक famous broker ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था।
10: फिर ये घर कैसे?
11: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
12: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
9: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
0: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक।
13: Looking for a flash getaway? Fiji Airways flash sale is on now. Fly direct from New Zealand one way to Nandi from just $295. Or enjoy a stopover in sunny Fiji direct from New Zealand on your way to epic destinations like Tokyo from $675, Singapore from $699, and Hong Kong from $695. Flash destinations for not much cash. Fiji Airways flash sale on now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
14: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
7: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
10: If you're at the finish stage of a build, Bunnings Trade is here to help. Shop our wide range of paint and accessories, lighting and final fixtures from leading brands. Call 134 Trade on 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
15: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: तो आप जल्दी जल्दी हमारे पास कॉल कीजिए 0800 004866 पर, और आप हमें बता सकते हैं आज के हमारे सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू के

0: अच्छा लगता है. दूसरा लाइन है, गुड मॉर्निंग. हम
1: हेलो हेलो. हाँ जी
0: हाँ जी, किन से बात हो रही है?
1: द वोल्वो बस गाय केवल सिंह.
0: अच्छा केवल जी, आज अपनी बहन का मतलब आपके पास ऐसे लगते हैं स्टोरीज ही स्टोरीज है शेयर करने के लिए.
1: नहीं स्टोरीज नहीं, मेरे पास टाइम होता है बिकॉज मैं इस समय अपने बेटे को छोड़ने जाता हूँ किंडी. तो
0: यार ये भी बड़ा कमाल है, स्टोरीज नहीं है टाइम बहुत है.
1: टाइम मतलब स्टोरीज है. आप पूछिए क्या क्या क्या जानना चाहेंगे.
0: ठीक है, आज हम जानना चाहेंगे आपकी बहन के बारे में कि व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग, हमें बचपन से सिखाया जाता है ना शेयरिंग इज केयरिंग, और जब तक हम स्कूल ना जाए हमारे दोस्त ना बने तब तक तो वो सीख हमको मिलती ही मिलती है, थोड़ा लेट होता है. बट इफ यू हैव सिबलिंग्स जिनके साथ हम ये घर से ये रिश्ता शेयर करते हैं भाई बहन का फ्रेंडशिप का, तो उनके साथ हम अपने पहले शेयरिंग लेसन्स जो ये करते हैं कहीं ना कहीं. पर कुछ मामलों में भाई बहन ऐसे होते हैं कि उनको शेयरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं. व्हाट अबाउट योर सिस्टर, हाउ गुड और बैड शी इज व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग?
1: शी इज वेरी गुड इन शेयरिंग एवरीथिंग. हमारा शुरू से मतलब हम शेयर करते थे सारा कुछ. हमने ये हमको सिखाया नहीं गया, हमने ये खुद फैमिली से अपने मोम डैड से सीखा था. जैसे जैसे हम ग्रो अप हुए तो सारा कुछ शेयर करना एवरीथिंग. स्टिल अभी वी डोंट हैव मोम डैड, वी लॉस्ट देम एंड शी इज मैरिड, शी हैज अ टू किड, मैं यहाँ पे हूँ. तो अभी भी हम सारा कुछ जो है हम शेयर ही करते हैं. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के अभी जो हमारा इंडिया में प्रॉपर्टीज वगैरह है, लैंड है, उसका हमको रेंट आता है. एंड उसने कभी नहीं कहा कि मेरे को चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा मेरे को चाहिए. जैसा होता है हम कर लेते हैं. अभी मैं जैसे फॉर एग्जांपल आई वेंट टू इंडिया एंड शी जस्ट सेड मतलब भाई ये चाहिए, तो मैंने देखा कि उसको क्या चाहिए एंड आई गेव हर ना. तो ऐसा मतलब कभी ऐसे हमने वो मोम डैड की जो प्रॉपर्टी का रेंट आता है जो भी, वो सबसे बड़ी चीज है हमारे के लिए जो वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, पर हमने कभी उस पे वो हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ. उसको चाहिए होता है वो रख लेती है, मेरे को चाहिए होता है मैं रख लेता हूँ.
0: That's interesting.
1: ये हमारा सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग.
0: जबकि आजकल के जमाने में देखा जाए तो प्रॉपर्टी इज वन पर्टिकुलर थिंग जिसके वजह से ना जाने कितने रिश्तों में लड़ाई हो जाती है.
1: अरे वो तो बोलते रहते भाई तू रख ले, मैं बोलता था नहीं मेरे को नहीं चाहिए तू रख ले.
0: चलो थैंक यू सो मच केवल जी आपके कॉल के लिए एंड आपकी एंट्री के लिए. डेफिनेटली आपका नाम वैसे ऑलरेडी ड्रॉ का हिस्सा है ही, बट इवन आज के कॉल के लिए भी हम वापस से एक और एंट्री आपको दे रहे हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे.
1: यू टू, थैंक यू,
0: बाय. वैसे किसी ने हमसे पूछा है कि क्या जो हम बोर्डिंग कॉल का स्पेशल कोड अनाउंस हो चुका है या नहीं. जी वो तो कब का हो गया, पिछले घंटे हमने आपको बताया था ना कि जो बोर्डिंग कॉल है ये ब्रेकफास्ट शो में 8 AM टू 9 AM के बीच अनाउंस होता है, माई टाइम में 11 AM टू मिड डे के बीच में, और लंच बॉक्स में 1 PM टू 2 PM के बीच में, एंड ड्राइव शो में शाम 5 से लेकर 6 बजे के बीच में. व्हेन दीज बोर्डिंग कॉल्स आर बीइंग अनाउंस्ड तो आपको मिलते हैं 60 मिनट्स का टाइम. पिछले घंटे ये बोर्डिंग कॉल अनाउंस हो चुका था, आपके पास अभी थोड़ा टाइम बाकी है. सो अगर आपने अभी तक अपनी एंट्री जो है ये नहीं की है वो हम बोर्डिंग कॉल जहाँ पर 2 retainer टिकट्स टू वनुआतु और साथ में $1,000 स्पेंडिंग मनी जीतने का मौका है सोलमन एयरलाइंस की ओर से. Thanks to Solomon Airlines flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. आप Solomon flysolomons.com विजिट कर सकते हैं. Remember flysolomons.com विजिट कर सकते हैं more details के लिए इनके services के बारे में, and terms and conditions also apply जिसके लिए आप hum.over.nz विजिट कर सकते हैं. But if you want to take part in our hum boarding call to win this amazing prize of 2 retainer tickets and $1,000 spending money, तो आपको code enter करना होगा. और कोड एंटर करने के लिए रोवर पर यू नीड टू राइट बोर्ड नाउ BOARDNOW जब स्पेशल बोर्डिंग कॉल अनाउंस होता है तब. एंड एक और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपको नहीं पता है रोवर पर कहाँ जाकर आपको ये कोड एंटर करना है बोर्ड करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रमोशन में, तो आप BC बोर्डिंग कॉल का शॉर्ट फॉर्म BC लिख दे, फिर 5599 पर हमारे पास आप सेंड कर दो. यहाँ से हम आपको ऑटो रिप्लाई में लिंक भेज देंगे. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक और उसके बाद आप स्ट्रेट अवे उस पेज पर जाओगे जहाँ पर आपको बोला जाएगा एंटर कोड नाउ, एंड दैट्स वेयर यू नीड टू एंटर बोर्ड नाउ. टाइप करेंगे आप और फिर सबमिट पर क्लिक करने पर आपकी एंट्री जो है ये सबमिट हो जाएगी.
2: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम. ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड जब भी सुनते हैं बड़ा मजा आता है. एंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग नीति मोहन और साथ में अरमान मलिक की आवाजों में आपके लिए लेकर आ रहे थे. बार बार देखो 2016 में ये फिल्म आई. आई थिंक द फिल्म डिडंट डू क्वाइट वेल एट द बॉक्स ऑफिस. कटरीना कैफ एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा जिन्होंने पहली बार एक दूसरे के साथ काम किया. द सॉन्ग्स इन द मूवी यस क्वाइट अ बिग हिट. काला चश्मा भी इसी फिल्म का ही गाना है बट फिल्म जो है ये नहीं चली. थोड़ी देर बाद बाय द वे आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आज का हमारा डेली राउंड अप. सो बी रेडी फॉर दैट. सम अपडेट्स जो आपके साथ शेयर करने हैं, थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन न्यूजीलैंड पर्टिकुलरली आज सुबह से अगर देखा जाए खबरों के मामले में. बट बिफोर यू मूव ऑन एक और एक बहुत ज़रूरी बात जो है ये आपको बतानी है, विच इज़ जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की ज़रूरत नहीं है. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज़ को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट प्रोग्राम, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बातें करने का बढ़ावा देना. अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 0800-862-342 पर आप फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilyservices.nz पर आप विजिट भी कर सकते हैं.
1: Mornings made better.
2: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: दिया।
1: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
2: डिब्बा खुल गया
3: भरत भाई, टिफिन खुल गए छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
4: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया। हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: My mate Sam hurt his shoulder at basketball. He got sorted with a rehab plan and was doing his exercises, but he started feeling a bit down. So me and the boys made sure to visit him, and he helped with some coaching, so he still felt like part of the team. It meant he stayed active and on top of the injury. Then when he recovered, he was back to his awesome self.
6: If you've got a sprain or strain, staying connected to friends, whānau and things you love doing can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
7: It's spring season at Freedom. Get 20 to 50% off all sofas. That's all fabric and leather sofas, modulars and armchairs, 20 to 50% off. Hurry, sale ends Sunday, only at Freedom.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
2: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
12: You filled the pinata before I sealed it, right?
13: No, you did.
12: Oh, I thought you did.
14: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
15: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
16: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
17: And award goes to Indelible Homes.
16: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
18: Kahani of Indelible Homes.
19: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewellery making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन। प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर, तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए। हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर, ऑकलैंड।
20: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
21: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
22: What's going on?
23: तो जैसे कि हमने आपसे कहा था, मतलब मैंने कहा था, हमने कहा, तो आज का डेली राउंडअप आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एंड वी गोना टॉक अबाउट सम थिंग्स दैट आर क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस। सबसे पहले ऑकलैंड एयरपोर्ट को अब मतलब आने वाले दिनों में और भी बिजी जो है ये पाया जाएगा एंड इट्स वार्निंग दैट ऑकलैंड कान कीप रिलाइंग ऑन कार्स, बेटर बसेस, रैपिड ट्रांजिट रोड्स एंड फ्रेट कनेक्शंस, क्योंकि अर्जेंटली ज़रूरत है टू कोप विद मिलियंस मोर पैसेंजर्स और बिलियंस ऑफ मोर डॉलर्स ऑफ ट्रेड, ताकि इसकी सर्विसेज को और भी बढ़िया जो है ये किया जाए। व्हाई इज़ दैट बीइंग सेड? क्योंकि ऑकलैंड एयरपोर्ट में जैसे कि उन्होंने कहा सिग्निफिकेंटली नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड वर्कर्स जो है ये बढ़ रहे हैं। द एयरपोर्ट से We cannot keep relying mainly on cars. ये एक प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है क्योंकि ऑकलैंड एयरपोर्ट हैंडल्स अराउंड 19 मिलियन पैसेंजर्स अ ईयर। दैट नंबर इज एक्सपेक्टेड टू राइज 2020 या 2033 तक 24 मिलियन हो सकता है एंड 2040s में इट कैन रीच अप टू 38 मिलियन पैसेंजर्स बाय द लेट 2040s। एयरपोर्ट का कहना है कि जो सपोर्ट है दिस पर्टिकुलर आई मीन ऑकलैंड एयरपोर्ट बेसिकली इट सपोर्ट्स अराउंड 25,400 जॉब्स और कंट्रीब्यूट करता है $39.5 बिलियन इन एनुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी। So, agar log or goods can't easily get to and from the airport, it could become a major problem for Auckland and of course the wider New Zealand economy. So, let's see, is par kya solution jo hai ye kaam kiya jata hai aur kya kuch jo hai baatein hoti hain, kyunki the government, Auckland Council, Auckland Transport, NZTA and Auckland Airport, sabhi ko is maamle mein ek saath ekjut hokar kaam karna padega. They need to come up with a plan and work things out taki is problem ko tackle kiya ja sake. Dusri aur, ek aur ek khabar jahan par agle mahine yani ki सेप्टेम्बर में मेनली जो डिविडेंड ये इलेक्ट्रिसिटी डिविडेंड ये पे आउट होता है. अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी डिविडेंड क्या होता है, सो इलेक्ट्रिसिटी डिविडेंड इज एक ईयरली कैश पेमेंट या पावर बिल क्रेडिट जो हाउस होल्ड स्कोर और बिजनेस को मिलता है. इलेक्ट्रिसिटी डिविडेंड दिया जाता है बिकॉज द कम्युनिटी और कंज्यूमर ट्रस्ट जो है वो ओन करता है मेजर शेयर ऑफ द लोकल पावर लाइन कंपनीज और विद दैट यूटिलिटी जो बिजनेसेस हैं दे मेक अ प्रॉफिट और जो ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है द अर्निंग्स बैक टू द लोकल हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस जो पावर बिल्स पे करते हैं और या फिर उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं. इट कम्स फ्रॉम अ कंज्यूमर ट्रस्ट जो ओन करते हैं शेयर्स इन लोकल पावर लाइन कंपनी. और इन ऑकलैंड अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट डिविडेंड जो है ये पे करते हैं एलिजिबल रेसिडेंट्स को ऑन द वेक्टर नेटवर्क एवरी ईयर इन सेप्टेम्बर. कैसे ये काम करता है जिसके बारे में भी हमने आपको बताया है. और बिजनेसेस जो है ये प्रॉफिट जबकि शेयर करते हैं तो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है ये वापस दिया जाता है टू द अकाउंट होल्डर्स एज डिविडेंड्स. कौन क्वालिफाई करता है, यू मस्ट लिव इन स्पेसिफिक कवरेज जोन. जैसे ऑकलैंड में अगर आप सेंट्रल ऑकलैंड, ईस्ट ऑकलैंड या साउथ ऑकलैंड में रहते हैं फॉर इंटरेस्ट तो आपको ये डिविडेंड पे होता है. और आपका नाम जो है ये होना चाहिए ऑन द पावर बिल. You must pay power line charges through your regular electricity retailer. तभी आप qualify होंगे. और अगर payment options की बातें करें तो you can get the money sent straight to your bank account या फिर आप apply कर सकते हैं as a credit directly onto your power account. मतलब आपकी जो electricity bill आती है उससे ये cut pit कर आपको balance out कर देगा. And why we talking about this? Because Auckland का जैसे कि हमने कहा जो locations which is east, south and central Auckland में mainly होता है. West Auckland में ये dividend नहीं मिलता है. बट वेन इट कम्स टू होक्स बे इस साल कहा गया है कि पावर ट्रस्ट कंज्यूमर्स जो है इनको डिविडेंड मिलेगा ऑफ $275 एंड ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इन होक्स बे इज गेटिंग दैट. सो दिस इज वॉट हैज बीन डिस्कस्ड. कहा जा रहा है 5 ईयर्स अगो 2021 में ये डिविडेंड $230 था.
0: Let's go.
1: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZ PMI, your local

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: तो चलिए अब बारी है कि आपसे हम परमिशन ले जाने की जाने का समय जो हो रहा है. सबसे पहले तो आप सभी के साथ और समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सुबह 6 बजे से आपने हमारा साथ दिया आज के सफ़र में. थैंक यू वंस अगेन. और एक बार फिर से याद दिला दें कि कल आएंगे ज़रूर आपका साथ देने के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा अगेन शाम 6 AM द ब्रेकफास्ट शो लेकर ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. बट रिमेंबर जाते जाते बस इतना ही कहना है, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा. मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए आज का हमारा थ्रोबैक. एंड डोंट फॉरगेट हम बोर्डिंग कॉल का जो स्पेशल बोर्डिंग कॉल अनाउंसमेंट है, ये जैसे हो वैसे आपको रोवा पर जाना है और कोड बोर्ड नाउ BORDNOW बोर्ड नाउ ये कोड एंटर करना है. पर अगर आपको नहीं पता है कि रोवा पर कहां पर जाकर ये कोड एंटर करना है तो इसके लिए आप BC यानी कि बोर्डिंग कॉल का जो शॉर्ट फॉर्म है ये लिखकर 5599 पर हमारे पास सेंड कर देना और आपको लिंक मिल जाएगा. एंड देन जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स, कीप लिसनिंग टू द शोज, एंजॉय द म्यूजिक एंड हियर आउट फॉर द स्पेशल बोर्डिंग कॉल. वंस यू गेट दैट जस्ट क्लिक ऑन द लिंक और बोर्ड नाउ आप सबमिट कर दें एंटर कोड नाउ की जगह पर एंड बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ, क्योंकि आपको मिल रहा है मौका सलमान एयरलाइंस की ओर से जीतने का टू रिटर्न टिकट्स टू वनवाटू विद $1,000 स्पेंडिंग मनी.

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में आज जब भी इस समय 10:02 हो चुके हैं. एज आई टॉक 20th of August है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. वैसे एक चीज तो है, आप लोग जितना भी प्यार देते हैं ना, वो दिख जाता है, और ऐसे में ये प्यार की बहुत सारी बातें आप तक हम पहुँचा देते हैं. लेकिन अभी के लिए एक चीज़ जो आप तक मुझे पहुंचानी है, वो है कि अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, और ऐसे में अगर आपने अभी तक हमारे साथ रजिस्टर नहीं किया, तो बस मैं थोड़ी देर बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक बजाऊंगी, और उसके बाद मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप में से किसी एक की कॉल उठाऊं, या अगर दो भी आ गए तो वाई नॉट. तो कॉल उठाने के बाद मैं आप लोगों का नाम ड्रॉ में ऐड करूँगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक, क्योंकि यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है वेंट आउट करने का, आपको मौका मिल रहा है अपना प्यार जताने के लिए, जो आपने दबा के रखा है या आपके भाई या बहन नहीं है उनके बारे में कुछ बताने के लिए. सो थोड़ी देर बाद आई विल ओपन द लाइंस, और ये डिटेल्स मैं आप तक पहुँचाऊँगी. डोंट फॉरगेट, हमारा बोर्डिंग कॉल कभी भी हम बजा सकते हैं, यानी कि उसके ठीक बाद आपको बोर्ड करना है, रोवा पे जाना है, और उसके बाद आपके लिए ये एक रास्ता खुलने वाला है, जहाँ दो रिटर्न एटिकेट्स टू वनुआटू जो आपके लिए हमने रेडी किए हैं विद सॉलमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी. तो भाई आप भी चाहेंगे तो जाना, तो आई एम वेरी श्योर. लेकिन अभी के लिए एक काम करती हूँ, गाना बजाती हूँ और फिर आप तक वापस आती हूँ. याद रहे भाइयों और बहनों, आपको मुझे कॉल करना है, बस भाई और बहन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक मैं आपके लिए रेडी कर चुकी हूँ.
1: बचाओ के

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: मैं तो कहूंगी कि एक्सपर्ट आप हैं जो एक फेज से गुजर चुके हैं अपने भाई या बहन के साथ, और आपको लगता है कि आपके भाई या बहन, यू नो वी ऑल नो दैट हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, वो तो भगवान का रूप है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, उनका रोल जो है अदा करना शुरू कर देते हैं आपके भाई या बहन। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपके भाई या बहन ने आप के लिए वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो टेक ऑन कर ली है, और फिर आप उनकी परफॉर्मेंस अपने पेरेंट्स के साथ रिव्यू करते हैं, तो क्या लगता है आपको, ऐसा क्या आपके साथ कुछ हुआ है? चलिए मुझे बताइए, भाई या बहन जो भी हैं आप, उनके माँ हैं या उनके पिता अपने भाई या बहन के लगते हैं बनते हैं, तो डेफिनेटली आप, जैसे कल एक कॉल आई थी एंड इन्होंने कहा कि इनकी बहन कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई थी, और ऑफ़ कोर्स उनके भाई तो थे ही थे, लेकिन उनकी बहन जो थी वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुई थी। वैसे मैंने उनका नाम ड्रॉ में ऐड तो कर ही दिया है $250 ईच कैश के लिए, लेकिन ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कुछ अपनी दास्तान बयान करना, तो 0800 हम पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपकी एक ऑन एयर में 0800 004 866 पे कॉल लेकर आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूँगी। एंड आई हैव अ कॉलर हियर विद मी, गुड मॉर्निंग, मैं किन से बात कर रही हूँ?
2: गुड मॉर्निंग, पूजा बोल रही हूँ।
1: हेलो पूजा, तुमसा नहीं दूजा, बोलो बोलो।
2: ठीक है, आप कैसे हैं?
1: मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ?
2: बढ़िया, सब क्लास। हाँ जी
1: बोलिए, बताइए आप कुछ बताएंगी अपने भाई या बहन के बारे में?
2: भाई के बारे में बताऊंगी, लेकिन एक्चुअली मैं थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने आपका सुनना।
1: कोई बात नहीं, जो भी है बता डालो, आज दिल खोल के बोल डालो।
2: नहीं, मैं एक्चुअली टॉपिक मिस कर गई हूँ।
1: कोई बात नहीं, जो देखो भाई से रिलेटेड कोई टॉपिक हो या ना हो, लेकिन भाई के बारे में बोलना बहन के लिए बहुत बड़ी बात होती है, सम्मान होता है। जो आपके मन में आता है बोल डालो।
2: भाई तो देखो सबके पास प्यारे ही होते हैं, साथ सारे भाई प्यारे होते हैं। तो ये है कि हाँ, बचपन में तो बहुत लड़ते थे, लड़ाई झगड़े ये वो हर चीज, छोटी छोटी चीजों के लिए। और जैसे जैसे बड़े होते गए, मैच्योरिटी लेवल आ गया, फिर काफी डिस्टेंस हो गया था, हम मैं न्यूजीलैंड आ गई, वो इंडिया में, और अभी लास्ट 2 साल से वो मेरे साथ ही है यहाँ पे।
1: अरे वाह,
2: हम फिर से हो गए। लेकिन अभी ये कि अब वो है वैसे ही नहीं है, लेकिन वो उसमें फिर भी बचपना है। मैं तो फिर भी बोलती नहीं कोई बात नहीं, मेरा छोटा भाई है, वो कहीं कहीं बचपना शरारते कर जाता है कि मेरा साथ और खा लेता है।
1: ओके तो पहले ऐसा नहीं होता था?
2: नहीं, पहले ऐसा नहीं, जब हम दूर दूर थे तो थोड़ा सा था, बट अभी जब पास आ गया तो उसको वो हो गया कि हाँ, अब मैं इसकी फिर एडवांटेज देता, तो मेरी बड़ी बहन है ये।
1: ओह माय गॉड, तो यू हैव टेकन ओवर द यू नो द रिस्पांसिबिलिटी।
2: हाँ।
1: अरे वाह, क्या बात है। और क्या है आपके भाई का नाम?
2: उसका नाम है रिंकू।
1: रिंकू, अच्छा, he is here with family or alone?
2: No, with the family.
1: With the family, तो और मजे आते होंगे फिर तो।
2: हाँ
1: हाँ, चलो
2: great,
1: good। पूजा, आपका और रिंकू का नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर दिया है, एंड लेट्स प्रे कि अगले हफ्ते शायद आप $500 $250 उनके $250 आपके हो जाए, तो क्या बात है।
2: बिग फैन ऑफ हम FM, सारा टाइम सुनता है वो।
1: ओहो रिंकू,
2: मोबाइल पे, टीवी पर, गाड़ी में तो है ही है, मोबाइल पे ऐप लगा के इंडिया जाता तो वहाँ भी सुनता है अब तो।
1: हाय हाय, क्या बात है। अच्छा तो रिंकू अगर सुन रहा है तो प्लीज रिंकू आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको भी ऑन एयर लेना चाहूंगी, अगर आप कहीं से भी सुन रहे हैं इस समय।
2: वो अभी नहीं सुन रहा होगा, वो काम पे है। मुझे पता है वो काम पे, वो नहीं सुनेगा।
1: कोई बात नहीं, चलिए इनको शाउट आउट तो दे ही दिया है पूजा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, आपका नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर दिया है।
2: थैंक यू सो मच,
1: टेक केयर, बाय। कितने प्यारे से सिंपल तरीके से उन्होंने अपने भाई के बारे में बात कर ली, देखो कैसे टेक ओवर हो जाता है। मुझे भी लगता है ऐसा टेक ओवर डेफिनेटली होता है, लेकिन अभी के लिए टेक ओवर करना है आपने, यानी कि आपने मुझे ऑफिस शाउट आउट के लिए कहीं से भी सुन रहे हैं आप, जरूर बताइए कौन से ऑफिस से कि कहां से सुन रहे हैं, जरूर मुझे 5599 पे टेक्स्ट करें।
0: माय टाइम विद कशिका,
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप ही तो नहीं।
0: We gotta go. Are you ready? Come and take a trip with me.
4: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
5: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
5: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
8: डॉक्टर ने क्या बोला?
9: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
8: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
10: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम शोर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
11: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashurevan.co.nz. Northernville Advisory Limited Trading as Ashore One is a licensed financial advice provider.
12: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi, or Shri Prasad, Kelston.
13: Your business works hard. Your van should too. Right now, save up to $15,000 across the LDV van range. LDV, helping Kiwis work harder every day. LDV distribution arrangements in New Zealand are subject to change. See ldv.co.nz for important information.
14: At Macca's, you can get the new honey sriracha sauce on any breakfast. McMuffins, brekkie wraps, big brekkie burgers, hotcakes. Nah, that'd be weird. Honey sriracha, only for a limited time. T's and C's apply.
15: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
16: Deal breaking news. Today is the Briscoe's one day sale.
17: That's right, Briscoe's lady, with up to 60% off store wide. Every single aisle is packed with deals. Today only. All stores open late. See online for TCs and store hours.
0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
18: Office shout out.
1: सो एच आर ट्रेडिंग से आप मुझे सुन रहे हैं पापा टोई टोई से, एंड थैंक यू वेरी मच. आपका मैसेज आया है एंड यू आर इन्जॉइंग द सॉन्ग्स, एंड आपने एक पर्टिकुलर सॉन्ग की रिक्वेस्ट भी की है. डेफिनेटली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ वो गाना बजा पाऊँ. ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो मैंने आपको

0: अद्भुत।
1: चलिए एचआर ट्रेडिंग आपका गाना मैंने लगा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ एक गुड न्यूज भी देनी। एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चल रहा है पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ डेटा सेंटर्स जो न्यूजीलैंड में होने वाला है। लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कुड क्रिएट 5,000 जॉब्स और ये प्रोपोर्शन होगा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रेड। रिपोर्ट के अनुसार बाय बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप पता चल रहा है कि न्यूजीलैंड कुड कैप्चर 120 बिलियन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और ये अगले 10 सालों में बहुत क्विकली मूव करने वाला है।

0: वैसे ईट बेटर लिव बेटर, एक चीज तो है दैट ये 2.5 किलो का हाथ जो है ना, आपको इसके बारे में तो पता ही है, लेकिन इसकी कहानी और कैसे डेवलप हो गई है, क्योंकि कुछ सालों से राखी विद राखी, शेरा भाई, अब आ रहा है 2.5 किलो की राखी। अब ये कल्चरल मूवमेंट है जहाँ पे इंस्टेंटली लोग इमेजिन करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एक सिबलिंग के रिलेशनशिप को, है ना। और ऐसे में यू नो ये लेजेंडरी डायलॉग जो है, अब इट्स ऑन द इंस्टा मार्ट विद अ ट्विस्ट, ये एक सिल्वर का वाउचर इसमें ऐड कर दिया गया है जहाँ पे भाई के लिए एक वो रिटर्न गिफ्ट है। तो कल्याण ज्वेलर्स जो हैं इंडिया में, उन्होंने एक बॉन्ड सेलिब्रेट करने के लिए कुछ चीज़ों को उन्होंने ऐसे करके ऐड किया है कि जहाँ टाइंग ऑफ राखी, दे वॉन्ट टू गिव अ मीनिंगफुल रिटर्न गिफ्ट, जहाँ पे एक 10 ग्राम्स का सिल्वर वाउचर वो रिडीम कर सकते हैं एट द कल्याण ज्वेलर्स जो, और साथ साथ साथ में इंस्टा मार्ट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे इसे प्रमोट करी है नन अदर देन 2.5 किलो के हाथ वाले की बहन ईशा देओल। और बहुत से लोग जो हैं इसमें कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि 2.5 किलो की राखी, ओ माय गॉड, इजंट दैट समथिंग डिफरेंट। लेकिन इसके साथ साथ एक 10 ग्राम्स का सिल्वर वाउचर भी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक एड जो इनका बना है, इट लुक्स वेरी नाइस, आई हैव स्टिल नॉट सीन इट, बट I can visualize it right now, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक प्रोफेसर एक्सरे का इस्तेमाल करता है, फिर वो इक्वेशन क्रिएट करता है, फिर वो देखते हैं एक जायंट हैंड आता है और काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि अर्थ, शुक्र, शनि, ये सब कुछ आते हैं, उस पर पानी गिरता है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। आई एम रियली नाउ इनक्विजिटिव टू सी दिस एड जहाँ पे ये 2.5 किलो की राखी वाला एक कमाल का कॉन्सेप्ट जो है निकल कर आया है। लेट्स सी ये ट्विस्ट सबको कैसा लगता है, लेकिन अभी के लिए एक ड्रीम वाला ट्विस्ट आपके लिए आने वाला है जो कल हम बात कर रहे थे।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप, वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsaras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था,
7: फिर
6: ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
6: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक Guru.
8: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cash back or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
9: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus, save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
10: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island. Like whole chicken legs, $7.99 per kilo. Or Pam's stir-fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
11: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
12: Yeah, but nothing quite reaches my standard.
11: Well,
12: within my budget?
11: Zelo.
12: Zelo?
11: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes from 1 to 4 bedrooms with 1 or 2 bathrooms, all packed with premium inclusions.
12: Price?
11: $139,000 for a fully complete 1-bedroom home and $215,000 for a 3-bedroom home.
12: Zelo. I like the sound of that.
11: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
13: Maa, is this your dinner?
14: Haan, is this your dinner?
13: भी।
14: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
13: मुझे भी।
14: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
15: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
16: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
17: Award goes to Indelible Homes.
16: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
18: Kahani of Indelible Homes.
19: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: तो कल अहमद जी का फोन आया था, उन्होंने कहा था एक हमारी जो ड्रीम होती है नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार 2 to 3 seconds तक लास्ट करती है, एंड व्हाट हैपेंस यू नो दे से दैट इट इज देयर, बट एक यूजुअल ड्रीम अगर मैं देख रही हूँ, मैंने काफ़ी इसके बारे में मैंने अभी पढ़ा भी और देखा भी, जो आपकी REM होती है, रैपिड आई मूवमेंट होता है, हम ड्रीम करते हैं ड्यूरिंग दी रैपिड आई मूवमेंट, ये जनरली होती है डिफरेंट साइकिल्स में, और ये समटाइम्स इट लास्ट फॉर 90 मिनट्स, समटाइम्स इट कैन लास्ट फॉर द फर्स्ट REM स्टेज जो होती है इट लास्ट फॉर 10 मिनट्स, जो लेटर होता है उसके बाद वो एक घंटे के लिए लास्ट करता है। टोटल ड्रीम कैन लास्ट अप टू टू आवर्स एवरी नाइट, और आप अगर किस तरह से अपनी ड्रीम को याद रख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो देयर। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन इज 95% ऑफ योर ड्रीम्स यू नो यू ट्राई एंड रिमेंबर, लेकिन कभी कभी आपके पास छोटे छोटे पीसेज में भी वो याद आने शुरू हो जाते हैं। डीप स्लीप जो होती है उसमें शॉर्ट थाट्स होते हैं, आई थिंक दैट इज़ वेन आई थिंक अहमद जी आप उसके बारे में बात कर रहे थे, एंड वहाँ पे REM की जो स्टोरीज होती हैं बहुत कम होती हैं, क्योंकि आपका माइंड उस समय दौड़ नहीं रहा होता है। एंड एक सिंगल ड्रीम कैन लास्ट अप टू 10 to 30 minutes। अब पूरा का पूरा, दिस इज़ नॉट जस्ट AI, बट आई एम रेफरिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई गॉट ऑन टू रीडिंग अबाउट इट। तो ये एक एवरेज ड्रीम जो कहा जाता है स्नैपल के अनुसार 2 to 3 seconds का होता है, बट ऐसे में ही कहा जाता है कि ये ड्रीम जो होता है REM के अनुसार भी जाता है। अब इसके काफ़ी सारे अप्रोचेज हो सकते हैं, आपकी अप्रोच पता नहीं इसके ज़रिए क्या है क्या नहीं, लेकिन डेफिनेटली गो हैड हैव अ लुक के क्या होता है। देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप, और उस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप के दौरान आपकी ड्रीम जो होती है वो आ जाती है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, और ड्रीम्स मोस्टली हैपन जब ये REM का मूवमेंट होता है, एंड एज एक्सप्लेन्ड इट बिगिंस अबाउट 60 to 90 minutes आफ्टर यू फॉल अस्लीप। सो दिस इज हाउ इट गोज।
19: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI।
0: What a beautiful track, and KK की आवाज़ जब आती है तो एकदम nostalgic फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए एक इस ब्यूटिफुल से ट्रैक को हम सुनते हैं, एंड अब एक थैंक यू जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं। एक बात तो है, हम एक चीज़ का सामना करते हैं जब हमारे सामने कोई लोग आते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि एक सिंपल क्वेश्चन होता है दैट डू यू एक्चुअली नो समबडी हुज ब्रेथ इज मतलब नॉट गुड, उनकी ब्रेथ ठीक नहीं होती, क्या करते हैं आप उस समय? इससे चैलेंज, डू यू लुक अवे, या आप उनसे बोलते हैं कि आपका पेट ठीक नहीं है या कुछ नहीं है? चलो इसी के बारे में बातें करेंगे अगले घंटे में।

0: तेरे मुंह में ज़बान है कि रेस का घोड़ा है, पटपट पटपट चलती रहती है। हम
1: forget packing your bags for now. Just keep your ears open for the next hum boarding call. You could be boarding a dream trip to Vanuatu with two return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
3: तो अभी आपने सुना कि हमने अनाउंस किया है कि भाई कभी भी बोर्डिंग कॉल के लिए बोर्ड ना हो सकता है, तो ये कभी भी बच सकता है. तो ध्यान रखिएगा, जब ये आपके लिए बोर्ड ना आए तो आपको फटाफट अपने रोवा ऐप पे जाना है और क्लिक कीजिएगा सबमिट, और फिर आप बिल्कुल वो सबमिट कीजिएगा रोवा ऐप के ज़रिए. हम बोर्डिंग कॉल आपके लिए लेकर आ रहे हैं सोलोमन एयरलाइंस, जो हफ्ते में चार बार नॉन स्टॉप फ्लाई करते हैं ऑकलैंड टू वनुआटू. विजिट flysolomon.com के ज़रिए आप डिटेल्स हासिल कर सकते हैं. लेकिन याद, ये बोर्डिंग कॉल जब अनाउंस हो जाएगी उस समय आपका एक नाम जो है ड्रॉ में चला जाएगा टू विन रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआटू विद सोलोमन एयरलाइंस, और $1,000 कैश जीतने के लिए सुनहरा मौका. तो ध्यान से सुनते चले जाइएगा.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी ओल्टुगेदर ओकलैंड।
4: Make your space your own for less at Mitre 10. Save $150 on a Robinhood 60cm dishwasher, now $449. And conquer the clutter with 30% off JobMate heavy-duty storage boxes. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: डॉक्टर ने क्या बोला?
8: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
7: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
9: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
10: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Indian Advisory Limited trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
11: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
12: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
13: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
14: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. The police watchdog has ruled the fatal shooting of fugitive Tom Phillips last year was justified. The IPCA found the officer acted in self-defence as Phillips had turned and pointed his rifle at him and his partner when they arrived on the scene. They also accepted that he believed a fellow officer who was shot and injured was likely dead. The IPCA says appropriate care was given to Phillips afterwards. A man will appear in court in Hamilton today charged with murder. It follows the discovery of a body in Rototuna. The 21-year-old was known to the victim. A university professor believes more needs to be done now to mitigate future heatwaves. Research commissioned by Auckland Council suggests the number of hot days could double in the next 25 years. Otago Uni's Simon Hales says adaptability is key.
15: Changing the way we use energy, like changing our homes so that they're more resilient, and maybe changing the way we grow crops.
14: And Prince Harry and his family are moving back to the UK. The Duke and Duchess of Sussex intend to relocate from the US to a non-royal residence outside of London. The couple's children are even enrolled to start at a British school next month. In rugby with Shift 4, the All Blacks and Springboks will play for a new prize when the four test series kicks off Sunday morning at Ellis Park. A pointy silver trophy has been unveiled featuring two halves connected by hidden magnets. Former South African captain Gary Teichman was at the launch in Johannesburg and is confident the world champs will secure the series.
16: They really are a phenomenal team. They've given South Africa a lot of joy, so we just hope we can keep it going.
13: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
17: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
18: सूचित किया जाता है कि धन लक्ष्मी राव उर्फ सुबू की पति रानी रेनू देविका के पिता पापा टोय के आदित्य विक्रम राव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑन-साइट क्रिमेशंस में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप इनके ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑन-साइट क्रिमेशंस आज पहुंच सकते हैं. सूचित किया जाता है कि धन लक्ष्मी राव उर्फ सुबू के पति रानी रेनू और देविका के पिता पापाटोय के आदित्य विक्रम राव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑन-साइट क्रिमेशंस वीरी में किया जाएगा.
17: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: So it feels like 12 degrees, but the highs of 15 overnight, temperature of 8. आज का फोकस बताया जा रहा है. क्लाउड जो हैं डेवलप होते चले जाएंगे. एक आध बार किसी इलाके में बारिश भी पड़ सकती है. सदली शाम तक कम हो जाएंगी. 5:52 पर सनसेट बताया गया है.

0: Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Mid-morning Mazza.
2: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithe, kyunki aa rahi hai.
1: My Time with Kashika.
3: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए माय टाइम लेकर मैं कशिका आ जाती हूँ 10 से 12 बजे तक हमारा और आपका ये सिलसिला बना रहता है. और अभी अपने थोड़ी देर पहले बोर्डिंग कॉल भी सुन ली है. और आपको अगर थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है कि आप रोवा के ज़रिए किस तरह से उस जगह पहुँचे उस पे या जहाँ क्लिक करना है सबमिट बोट नाउ, तो आप एक काम करें, आप 5599 पे BC लिख के भेजें और वो कंपटीशन के पेज पर या लिंक पर आपको लेके चली जाएगी. याद रहे हम बोर्डिंग कॉल. अ बिग थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस जो चार बार हफ्ते में फ्लाई करते हैं नॉनस्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू. एंड विजिट कीजिए आप इनकी वेबसाइट यानी कि flysolomons.com के ज़रिए. और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप समझ सकते हैं अगर हमारी वेबसाइट पर या रोवा पे आप चले जाएंगे. याद रहे तो रिटर्न है टिकट्स जीतने का सुनहरा मौका बिल्कुल मत खोइएगा थ्रू सोलोमन एयरलाइंस, जहां वनुआटू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन जहां आप अपनी हॉलीडे स्पेंड करना चाहेंगे पीस में, ग्रीनरी में और अमेजिंग अमेजिंग एनवायरनमेंट में. और $1,000 आपको कैश जीतने को भी मिलेगा. ठीक है, चलिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, आगे भी बढ़ते हैं. बजाओ क्या? अच्छा
4: बजाओ क्या

0: ईट बेटर लिव बेटर, मैं इतना ही कह सकती हूँ. ऐसा कई बार होता है दैट समबडी यू नो सम पीपल गेट ऑफेंडेड बट सम पीपल डोंट. अब क्या होता है, द बैड ब्रेथ कैन बी द कॉज बाय डेंटल या हेल्थ प्रॉब्लम्स. और कभी कभी पॉइंटिंग इट आउट आई डोंट नो इफ यू रियली केयर अबाउट समबडी बींग ऑनेस्ट. आई एम श्योर शुरू में ऑकवर्ड लगता है बट इट्स अ जेन्युइन एक्ट ऑफ काइंडनेस. पता नहीं वी शुड से इट और नॉट बट इट्स समटाइम्स एम्बैरसिंग या किसी की कॉन्फिडेंस लेवल को आप डैमेज कर देते हैं. इट को टेम्परेरीली ये हो सकता है कि उन्होंने कुछ अभी खाया हो या पिया हो एंड देव नॉट यू नो जैसे कहते हैं ना रिंस नहीं किया है माउथ, कुल्ला नहीं किया कहते हैं ना. तो समटाइम्स ये काइंड चीज़ें जो होती हैं ना, ना बोलने से अच्छा बेटर कि कीप योर माउथ शट, ऐसा भी होता है. अब ये कई बार चैलेंज होता है लेकिन जब आप किसी के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, क्लोज हैं, आप उनसे कभी ये बात कर सकते हैं. डू यू थिंक यू कैन और यू कांट यू नो टेक अप समथिंग लाइक दिस? यूजुअली इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट आई डोंट नॉट नो. आई मीन मोस्टली पीपल लुक अवे, इधर मुँह कर लेते हैं उधर मुँह कर लेते हैं बट वो बैड ब्रेथ जो आती है आती ही है यार, क्या कर सकते हैं. सेम चीज़ अगर मैं कहूँ आपको कि कुछ लोगों के बॉडी में से एक अलग सा ओडर आता है, एक अलग सी यू नो स्मेल या बदबू या जो भी कुछ है उनका पसीना होता है तो वो अंडर आर्म से ख़ास तौर पे आने लग जाता है. एस्पेशली व्हेन यू आर हगिंग समबडी और वो आपको फिर वो आता है, ओ माय गॉड. बट आई एम वेरी श्योर कुछ जिनसे आप बहुत क्लोज हैं उनके साथ आप ये बातें कर सकते हैं, उनको ज़रूर बता सकते हैं दैट यू नो कल को ऐसा ना हो क्योंकि उनको किसी को बॉयकॉट कर दिया जाए. आई न्यू अ फ्रेंड जिन्होंने मुझे बताया कि उनके ऑफिस में क्या हुआ कि वो काम करते थे और उनके बॉडी उनके जो कपड़े होते थे वो कपड़ों में से उनके हमेशा एक स्टिंक आती थी, अलग सी स्मेल आया करती थी कपड़ों में से. और जब वो कमरे में उनके ऑफिस में आया करते थे तो वो एक स्टिंक जो थी पूरे रूम में उनके फैल जाती थी. They really did not know what to do. और फिर उन्होंने कंप्लेन करना शुरू किया टू दी बॉसेस एंड फिर उन्होंने HR ने बोला. दो तीन चार पूरे पाँच छः महीने तक ये चलता रहा कि उनको जब पता चला कि ये आइडेंटिफाई किया कि ये एक नहीं सारे ही उसके बारे में कंप्लेन कर रहे थे, उनको लगता था उस कमरे में बैठना मुमकिन नहीं है. तो दे अल्टीमेटली हैड टू कम अप टू हिम एंड टेल हिम दैट जो उनका HR डिपार्टमेंट था कि आई एम रियली सॉरी टू से बट दिस इज द काइंड ऑफ फीडबैक हमें मिल रहा है. अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने कपड़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे, वी आर गिविंग यू दिस मच ऑफ टाइम टू रिव्यू टू यू नो इम्प्रूव इफ यू कैन. तो उनसे कहा गया और उसके बाद शायद वो मे बी प्रॉबेबली दैट पुअर पर्सन कुडंट हैव फिगर्ड इट आउट, वो अपने आप ही जॉब से एम्बैरस होके उन्होंने छोड़ दी. बट यस सर्टन थिंग्स लाइक दिस कैन बी वेरी ड्रास्टिक, है ना. ओके लेट्स गेट बैक. सिक्स वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट.
1: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुस्बे टिकट्स बुक हो गए
3: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा, आपको मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
7: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
8: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
9: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
8: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
7: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
11: डॉक्टर ने क्या बोला?
12: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
11: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
13: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
7: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे। कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashore1.co.nz। नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अशोर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर। Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
0: So, six word story जो है आपने मेरे साथ definitely share करी है. And I'm looking for the text. ये जिस समय मैंने रक्षाबंधन के ऊपर बातचीत की थी तो आपका टेक्स्ट आया था कि थैंक यू सो मच, वी हर्ड द स्टोरीज एंड येस वेरी नाइस एंड दैट 2.5 किलो का राखी वॉज ऑल्सो नाइस थिंग. तो इन्होंने कहा ग्रोइंग अपार्ट देन कमिंग बैक, ग्रोइंग अपार्ट देन कमिंग बैक. अरे तो 5 वर्ड्स में ही आपने इसको पूरी अपनी सारांश मैं कह सकती हूँ दे दी. और मैंने रेडी किया था इनफैक्ट समथिंग वाइल यू हैड यू नो टेक्स्टेड, तो मेरे माइंड में भी कुछ आया. मेरे माइंड में भी मैंने कहा मैं 5 वर्ड्स में कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी. तो मेरी 6 वर्ड स्टोरी में मैंने उसे 5 वर्ड स्टोरी बना दिया. साइलेंट सपोर्ट अक्रॉस लॉन्ग माइल्स. क्योंकि मेरे भाई बहन सब दुबई इंडिया यू नो हैं, तो इसीलिए यू नो वो कह सकती हूँ मैं कि साइलेंट सपोर्ट अक्रॉस लॉन्ग माइल्स. ऑल राइट, ये तो आपके लिए यहाँ तक बात हमने पहुँचा दी है. बाय द वे, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कल बहुत इंटरेस्टिंग एक ऑकलैंड भक्ति सत्संग जो है ग्रैंड 3 कॉर्नर कीर्तन डाइट करने वाले हैं. वैदिक सेंटर में $20 की टिकट है, ज़रूर इसको जाके आप खरीद सकते हैं. जन्माष्टमी का सुनहरा अवसर आने वाला है, उसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक द केव कैवेंडिश ड्राइव मैनकाओ में 7:30 बजे दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट लेकर आने वाले हैं. रामकृष्ण मंदिर और ऑनस्लो एवेन्यू मैनकाओ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक राम मंदिर ऑनस्लो एवेन्यू में 7:30 बजे से इसका आयोजन भी करने वाले हैं. नॉट टू फॉरगेट द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहे हैं 22nd एंड 23rd अगस्त को एट द बर्कनहेड स्काउट्स हॉल.
2: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

हम। वैसे कुछ जबरदस्त हिट्स जो हैं और भजन, कीर्तन, फ्यूजन्स, इनको अगर आप इस डिवोशनल म्यूजिक को सुनना चाहते हैं कि अपलिफ्टिंग शाम आपके लिए बस दो दिन के बाद तैयार कर रहे हैं रवितेश देओ विच इज़ क्यूरेटेड बाय एनजेड कल्चरल ट्रस्ट और दिस इज एन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फीजी और इसे प्रेजेंट कर रहे हैं साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड। ये 7 बजे वैदिक सेंटर में होने वाला है। $30 की टिकट है और एड भी आप सुन रहे हैं, क्या कमाल का गाते हैं रवितेश जी। सीरियसली इनको लगता है रात भर आप बैठ के सिर्फ सुनते रहें, इनकी इतनी मधुर आवाज है। टिकट्स खरीदने हैं तो eventbrite.co.nz के जरिए जाकर आप ये टिकट्स खरीद सकते हैं।

0: शिकार।
1: वाह,
2: हाँ।
1: अद्भुत।
3: अरे भाई, अद्भुत बात तो मुझे आपको बतानी है। ऑकलैंड एयरपोर्ट ने पोस्ट किया है अ प्रॉफिट ऑफ 309 मिलियन, अ स्लाइट ड्रॉप एक्चुअली देखा जाए तो फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर ऑफ लास्ट ईयर। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है ये ट्रैवल हब में हैज जंप टू ओवर 19 मिलियन। ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं 12 महीने के 30 जनवरी को सबमिट हुए और आज रिलीज किए गए। तो रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज 3% $1,036 बिलियन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू। तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज माना जाएगा। टोटल देखे तो 5% हो गया। सो ऑपरेटिंग अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन ऑल दोज थिंग्स इज वॉज 724 मिलियन, विच वेंट अप फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब ये एक स्टेटमेंट आज सुबह जब एयरपोर्ट की तरफ से आया है। अब ये हमें भी पता है कि एक मिडल ईस्ट का एक इतना बड़ा इम्पैक्ट जो ईरान एंड उसका जो एविएशन सेक्टर पर पड़ा है उसकी वजह से शायद ये इफ़ेक्ट इतना बढ़ा होगा। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फेयर्स बढ़ गए 14% से और 3.5% पर कहीं पर हुआ। बट इवन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस फ्यूल यू नो सिचुएशन भी हुई थी और उसके साथ साथ एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर वाज सो मच टू इट, बट इन स्पाइट ऑफ इट ऑल आई थिंक वी आर शाइनिंग। एंड आई एम श्योर अगर ऐसा कुछ और भी होता तो हो सकता है कि हमारा आगे प्रॉफिट और भी बढ़े। ऑल राइट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन,
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
5: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं।
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
6: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
7: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
8: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
9: Blood and plasma donors are always precious, but in wintertime, with sickness about, NZ Blood needs even more donors to fill the gaps others leave. So, if you're well right now, we'd love you to step up and help us out. When you become a donor, you're giving a priceless gift to someone in need. You could help them get better and make yourself feel good. Just head to nzblood.co.nz and book in a time to donate today. Give blood, give plasma, save lives.
10: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
11: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली delicious, always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish, natural yogurt.
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
3: Eat better, live better. But इससे पहले कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, daylight saving जो है, last Sunday of September शुरू होती है और फिर first Sunday of April ख़त्म होती है. अब देखो, लगभग एक महीना बचा है और उसके बाद फिर ये daylight saving जो है 1927 से चलती चली आ रही है. बट यू नो, बहुत सारे लोग इस बात के लिए कह रहे थे कि इसे एक्सटेंड कर देना चाहिए. जो हम लोग सिस्टम चेंज करते हैं ना, कई बार यू नो, ये ठीक नहीं रहता. ओके, सो आर दी डेज गेटिंग लॉन्गर? क्योंकि इफ़ यू रियलाइज, ये सदर्न हेमिस्फीयर में अभी देखो आप कितना उजाला होने लगे, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, अच्छा खासा उजाला होने लग गया है ना. ओके, ना इससे पहले कि मैं भूलूँ कि मुझे क्या करना था, क्या करना था, मुझे पता है मुझे क्या करना था. लेट्स ट्राई एंड डूइंग दिस.
0: रेस्क्यू मी, रिसाइकल मी.
3: तो रेस्क्यू मी, रिसाइकल मी, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ. कुछ स्टेक प्लांट्स होते हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कई बार जब तोड़ लेते हैं, जब सूखे हो जाते हैं, वो डंडियाँ हम उठा के फेंक देते हैं. आइडियली इन्हें फेंकने के बजाय अगर आप इनको एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करें फॉर क्लाइंबिंग वेजिटेबल्स एंड रोजेस, यू विल नोटिस कि आपके प्लांट्स कितने स्टेडी रहेंगे. कोशिश करो कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको भी बताती हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग कभी कभी पूरी कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते. बट हाँ, ये फ़र्क पड़ जाता है. छोटी छोटी यू नो, याद नहीं रहता कभी. मुझे को देख लो, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जब गार्डन क्लीन करवाया था, उस समय मैंने वहाँ से वो डंडी वंडी हटा दी. बट जब मैं आज सुबह प्रेप कर रही थी तो मैंने बड़ा मन करा, यार मैंने ऐसे कर दिया, क्यों किया, मुझे वहाँ पे लगा देना चाहिए था. अब मैं जब समझ आने लगेंगे, स्प्रिंग आएगा, मैं टमाटर बना उगाने शुरू करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, तो मुझे वहाँ पे अपनी लौकी के लिए भी, बेल के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए होगा. आई शुडंट हैव थ्रोन इट. एक्जैक्टली, सो अभी मैं आपको भी बता रही हूँ मेरा थॉट क्या था. मेरा ख्याल ये है कि अभी इन डंडियों को रोक लेना चाहिए, संभाल लेना चाहिए, किसी कोने में गार्डन शेड में रख देना चाहिए.
2: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: तो बस इसी के साथ साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में लंच बॉक्स में अभी आपका साथ निभाने वाले हैं। लेकिन इतना ही कहना चाहती हूँ, बहुत सारे ये मौसम बदल रहा है, बहुत लोग ठंड की वजह से बीमार भी पड़ रहे हैं। योर इनटेक ऑफ वाटर, वार्म वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो एक चीज़ लेती हूँ इनटेक में, वो लेती हूँ विटामिन सी। डेफिनेटली इसका इनटेक आपके लिए अच्छा रहना चाहिए बिकॉज ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। सो डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिएगा। सो कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, आप जो भी इसे कहना चाहें। लेकिन मैं अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे मिलती हूँ, क्योंकि मैं आऊँगी वापस लौट के सुबह 10 बजे विद शुक्रवार का बुखार। एंड ये जो TGIF का जो मूड होता है, बहुत बढ़िया होता है। दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज। लुक आफ्टर योरसेल्व्स एंड स्टे सेफ, स्टे वार्म।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Ginny Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
1: तो क्या करें?
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
8: South Oakland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoy. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Oakland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoy or Shri Prasad, Kelston.
9: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
10: डॉक्टर ने क्या बोला?
11: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
10: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
12: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
13: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashurevan.co.nz. नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अश्योर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर. Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
14: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. A police officer was justified in shooting wanted man Tom Phillips last year during a volatile confrontation. Nigel Yolden with more.
16: The IPCA says the officer acted in self-defence as Phillips had turned and pointed his rifle at him and his partner. He also believed a fellow officer who was critically injured was likely dead. The shooting officer fired 5 shots, 3 hitting Phillips, who fell to the ground. The IPCA says there were some shortcomings in command and control of the incident, which police acknowledge.
15: A man has been arrested for the murder of Lower Hutt's Nathaniel Sturmey, who was found dead with a gunshot injury. Police took in the 25-year-old this morning after multiple search warrants. They also arrested a 46-year-old woman accused of being an accessory. Sturmey died at a property on Malone Road in April. Free school lunches could be back on the menu under a new Green Party policy. They're promising to restore, expand and permanently fund the program if elected. Co-leader Marama Davidson says the plan would also support local jobs and food producers. And the Duke and Duchess of Sussex are leaving the US in what some are dubbing a reverse Megxit. Prince Harry and Meghan are returning to the UK for an extended period and have even enrolled their 2 children in schools. They'll remain non-working members of the royal family. And in rugby with Shift 4, former All Black Sean Fitzpatrick knows what it takes to beat the Springboks in South Africa. Speaking at the series launch in Johannesburg, the victorious All Black skipper from 96 says the current side will need to be at their best at Ellis Park Sunday morning.
5: Everyone needs to play well. You're going to have one lapse moment, one bad scrum, one bad line out, because it will end up costing you the game.
15: The All Blacks reveal their team for the match at 10 o'clock tonight.
14: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: आज है थर्सडे 20th of August और अभी का टेम्परेचर कुछ 15 डिग्रीज तक है और साथ में सनसेट एट 5:52 PM और मिनिमम टेम्परेचर्स ओवरनाइट 6 डिग्रीज तक रहेंगी. वेदर जनरली फाइन विद सम लाइट विंड्स बताया गया है.